0: Special. Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी,
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
3: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
2: Log on to eventsmyteamof2.com.
4: जी जनाब, इवेंट बाई टीम ऑफ टू डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है। आप याद रख लीजिए, 5 days का वर्ल्ड लार्जेस्ट 26th ईद उल अज़हा फेस्टिवल होने जा रहा है मैपल बैंकट हॉल में सागा में, 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख को। मैपल बैंकट हॉल 1325 इंग्लैंडन एवेन्यू ईस्ट में सागा में है। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। एग्जीबिशन, प्रमोशन, सेल्स, स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए शैला जाफरी साहब से आप रब्ता कर सकते हैं 647-273-2393। बिजनेस एक्सपो है, वैरायटी ऑफ स्टॉल्स होंगे, शॉपिंग, मेहंदी, फूड, फैमिली एंटरटेनमेंट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। दोपहर 1 से लेकर मिडनाइट तक आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स होंगे। शैला जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। शैला साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो। जी शैला साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जनाब, दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा करते हैं, एक कमर्शियल चलाता हूँ इस दौरान में, ताकि मैं दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट कर लूँ। स्टे ट्यून।
5: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
5: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
5: दैट्स वंडरफुल।
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा।
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: जी जनाब, दोबारा रब्ता हो गया है। मैंने सारी डिटेल बताई, उसके बाद जब आपसे बात करने लगे तो कॉल डिस्कनेक्ट होगी। तो चलिए, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
7: थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। तमाम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वालों को हमारी तरफ से, यानी कि द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की जानिब से बहुत सारा सलाम, दुआ और प्यार। अरशद,
4: बहुत शुक्रिया। कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है?
7: बस देखें, हमेशा की तरह कोशिश ये होती है कि पहले से ज्यादा कुछ किया जाए और पहले से ज्यादा कुछ नया भी किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो जब आप वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे हर दिन का एक इंटरटेनमेंट, एक से कई इंटरटेनमेंट हर दिन, लोगों की दिलचस्पी के ख्याल रखते हुए तमाम लोगों को उसमें शामिल करने के लिए ये किया जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी पे क्या रखें, वीकेंड पे क्या रखें, सैटरडे क्या, संडे क्या, और चांद रात और दो दिन जो चांद रात के हैं उस पर कैसे लोगों को एंटरटेन किया जाए और यानी कि फेस्टिवल मनाया जाए। और इसके अलावा अरशद देखें, फूड फेस्टिवल है वहाँ पर, फूड स्ट्रीट है वहाँ पर।
4: अच्छा।
7: आपको कई खाने मिलेंगे और बहुत मजे मजे की चीजें मिलेंगी। और अभी ही जो है हमारा एक तमाम ठंडे मशरूबात और आइस कॉफी और क्रीम कॉफी और इस तरह की चीजें लगी हैं, यानी कि कोई चीज मिस नहीं करेंगे आप। सब कुछ आए वहीं, अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की दावत करें। अब इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हमारा फेस्टिवल में जो, जैसा कि हमेशा हम आखिर वक्त तक ये कोशिश करते हैं कि नहीं बस इतने स्टॉल लेने, लेकिन माशाल्लाह काफी बुकिंग हो गई है और अब डिमांड पर हमने और बूथ खोले हैं।
4: ठीक है।
7: तो इसका मतलब है कि कुछ खुशकिस्मत लोग जो हैं वो अभी बुकिंग करा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वेरी सून इट विल बी सोल्ड आउट अगेन। तो हर किस्म के बिजनेसेस वहां पर, आपके प्रोफेशनल सर्विसेज भी वहां पर आ सकती हैं और वहां पर तमाम बिजनेसेस को प्रमोट और एग्जीबिशन और सेल के लिए वहां मौका दिया जाएगा।
4: जी।
7: इसके अलावा देखें, हमारे पास अफगानी एग्जीबिशन बहुत खूबसूरत लग रहा है वहाँ पर,
4: जबरदस्त।
7: तो लिहाजा ये एक नई चीज हमने, मैंने कहा चले कुछ तो रिवील कर ही दूं।
4: जी बिल्कुल सही, सही।
7: अफगानी ज्वेलरी और अफगानी ड्रेसेस बहुत हसीन कलेक्शन वहाँ पे पहुंच रही है। तो मतलब ये कि मैं तो लिस्ट बहुत लंबी है अरशद, मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में हमेशा की तरह होने जा रहा है, और ये ईद फेस्टिवल वर्ल्ड लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल 26th एनुअल ईद उल अधा फेस्टिवल है, और इंशाल्लाह ताला हमारी आप सबसे मुलाकात होगी। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, मतलब बच्चे बड़े सब के लिए वहाँ इंतजाम किया गया है, हर उम्र हर एज के लोग एंजॉय भी करें और फायदा भी उठाएं इस एग्जीबिशन से। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू हमेशा की तरह आप ही लोगों के लिए। आपको पता है हमारा प्रोफेशन तो रीमैक्स है, रियल एस्टेट है, लेकिन ये मैं कम्युनिटी के लिए करती हूँ, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी डालने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर हमारा ये सफर बहुत अच्छा होगा। 5 दिन का May 22nd को शुरू होगा, फ्राइडे को, दूसरे दिन सैटरडे है, आप इंजॉय करें फ्राइडे नाइट भी, फ्राइडे शाम भी, और बच्चों के लिए भी कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ बच्चों को क्या क्या क्या और फराहम कर सकते हैं हम खुशियाँ। तो इंशाल्लाह 22 मई से शुरू होगा, रोजाना लगेगा, हमेशा की हमारी रीत है, और वो चांद रात यानी कि May 26th तक हम वहाँ होंगे। रोज आए, सुबह आए, शाम आए, आपके लिए हम वहाँ 1 बजे से 12 बजे तक मौजूद रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के थ्रू बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होगी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे जरूर बताएं कि आप रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से सुन के आए। अरशद आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मौका देते हैं हमें लोगों से बात करने का और मैसेज देने का। 6472732393 पर कॉल करके आप हमसे बुकिंग स्पॉन्सरशिप की या स्टॉल की करा सकते हैं। इसके अलावा eventsbyteamoftwo.com पर जाके भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
4: राइट जी, नंबर नोट कर लें, अभी कॉल कर लें 6472732393। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करें। शैला जी थैंक यू
7: सो मच, अल्लाह
4: फिर। 6472732393 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ कि वजन कम करने के बाद इसे बरकरार रखने के लिए रोजाना 8,500 कदम चलना काफ़ी है। ये तादाद आम तौर पर बताए जाने वाले 10,000 कदम से कहीं कम है। यूरोपियन कांग्रेस ऑन एबेसिटी में पेश की गई तहकीक के मुताबिक हफ्ते में तकरीबन 59,500 कदम चलने वाले अफराद वजन कम करने के

उन्होंने मजीद कहा, अगर कोई सादा हिकमत अमली लोगों को वजन रखने में मदद करे तो तबी लिहाज से बहुत कीमती होगी। ये तहकीक जो की गई इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च इन पब्लिक हेल्थ में शाई हुई है। साइंसदानों ने 18 ट्रायल्स का जायजा लिया जिनमें 1987 मरीजों को लाइफ स्टाइल प्रोग्राम्स में शामिल किया गया, जबकि 1771 अफराद सिर्फ डाइटिंग के या बगैर इलाज के थे। लाइफ स्टाइल प्रोग्राम में खुराक की हदायत और रोज़ाना कदम गिनने का मशवरा शामिल था। शुरुआत ने रोज़ाना कदमों की तादाद 7280 से बढ़ाकर 8454 कर दी और औसतन 4 किलो वजन कम किया। तवील मुदत में उन्होंने तकरीबन 3 किलो वजन बरकरार रखा। रोज़ाना 8500 कदम वज़न दोबारा बढ़ने से बचाते हैं। वज़न कम करने के मरहले में कदमों की तादाद बढ़ाना और इसे बरकरार रखना ज़रूरी है। ज़्यादा कदम चलने से वज़न कम करने में इजाफी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मरहले में कैलोरीज कम करना ज़्यादा मुअसर साबित होता है। तो तकरीबन अब 8500 कदम चलने की अब तरगीब दी जाती है। सादा कम खर्च हिकमत अमली है जो वज़न दोबारा बढ़ने से बचा सकती है। हिलजुल ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, हरकत कीजिए, चलिए, पैदल चलिए। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ।

0: या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200, इट्स 416-206-3200।
1: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001, 9058191001, लाइसेंस नंबर 12374।
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777, इट्स 416-710-6777। अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922, इट्स 9057831922।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003। टोरंटो और इसके गिर्द व निवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिर्द व निवाह में आज़ान मगरिब।

0: Berlin.
1: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Give your real estate attention to Nomo, your real estate professional.
3: Are you planning on buying or selling residential or commercial property? Need a real realtor? Contact Nomo of 647-962-0007.
4: Aapko residential, commercial or downtown Toronto ki behtreen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
2: Give your real estate attention to Nomo, your real estate professional.
5: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
6: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
8: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mera aapke number 416-593-0003 अच्छा जनाब इमराल जमान साहब इस तमाम साथ मौजूद होते हैं सी एन जर्नलिस्ट हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं खुश आमदीद कहेंगे इमराल साहब अस्सलाम वालेकुम
9: जी जी वालेकुम सलाम
8: कैसे हैं आप खैरियत से ठीक ठाक हैं
9: जी जी बेहतरीन
8: अच्छा जनाब मार्क हक हमने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स देखे दुनिया भर में पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी और हर साल अब तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 10 मई जो है मार्क हक के हवाले से एवरी ईयर जो है उसको मनाया जाएगा अब वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि मार्क हक के बाद मार्क मईशत भी जो है वो जीतना होगा और ये भी कहा कि मार्क हक में कामयाबी ने पूरी कौम पर ज़िम्मेदारी याद कर दी कि मईशत को मजबूत बनाया जाए तो मईशत को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी ज़रूर लोगों पर भी होगी लेकिन ये तो हुकूमत पर नहीं होनी चाहिए
9: ये देखिए जो बात एहसन इकबाल ने की है इसे मेरे ख्याल से कि इनकार तो किसी को नहीं है और बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि बड़े फोकस के साथ जो है ना मतलब ये कि ये होना चाहिए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब ये अपोजिशन में थे तब भी जो है ना वो मिसाके मईशत की बात की थी जब तक हम एक देखें लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हम चाइना का मॉडल फॉलो करते हैं जापान का मॉडल देखते हैं वियतनाम का मॉडल देखते हैं इसके अलावा बहुत सारी जो है ना वो स्कैंडिनेवियन और यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिनकी जिनकी एक एक प्रोडक्ट मतलब कि वो मुल्क जो है वो एक एक प्रोडक्ट के सर के ऊपर जो है ना अपनी इकोनॉमी जो है वो उन्होंने स्टेबल की हुई है और उनके भी रिजर्व्स जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व से कई गुना जो है ना वो ज्यादा है तो ये मतलब है कि अभी हमने वो एक खबर वो भी डिस्कस की थी कि एक वो जो पाकिस्तानी बच्चा है उसकी एक कंपनी जो है ना इलॉन मस्क 60 अरब डॉलर के अंदर जो है ना वो खरीदने के लिए तैयार है ठीक है कि मतलब है कि वो ऑब्वियसली हम उसकी लिक्विडिटी होती है उसकी हम ये नहीं कहते कि वो 60 अरब डॉलर ही उसको जो है ना वो मिल जाएंगे लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके 24 करोड़ के मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स और आपको जो है ना भी वज़ीर आज़म ने आई टी के हवाले से जो है ना वो इनिशिएटिव जो है ना वो लिया है कल वज़ीर आज़म को बल्कि आज की खबर थी कि वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है कि 5 point something million हाउसेस हैं जिनके अंदर जो है ना इंटरनेट का कनेक्शन अब जो है ना अवेलेबल है. तो मेरे ख्याल से तो बहुत कम है, मतलब ये कि 50 लाख जो है ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 1 करोड़ 2 करोड़ तो शायद घर ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. लेकिन अगर उसके अंदर भी जो है ना 50% हाउस होल्ड के अंदर आपको इंटरनेट जो है ना अवेलेबल है. मैं अभी भी जो है ना कल एक शख्स से गुफ्तगु कर रहा था कि मेरे ख्याल से मेरा अंदाजा है कि आज से 20 साल पहले जो यूके और यूएसए और कनाडा के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड थी वो आज भी हमें पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है. तो जब तक आप जो है वो इन चीजों के ऊपर और फिर इंडस्ट्री के हवाले से, कल एक बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्ट थी वो मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि जब तक सस्ती बिजली नहीं आप देंगे, आप गैस को अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे. हमने पिछले 10-15 सालों के अंदर आईपीपीसी के ऊपर इन्वेस्ट किया, हमने सस्ती बिजली के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, हमने चाइना से बिजली नहीं ली, हमने ईरान से बिजली नहीं ली. हमने ऐसे मौके, जिस तरह अभी पाकिस्तान को मौका मिला है मीडिएट करने का, ऐसे मौकों से हमने फायदा उठा के अपने लिए आसानियां जो है ना वो नहीं जो है ना वो पैदा की, ढूंढी अपने लिए. ईरान से हमने गैस पाइपलाइन का मुआहदा 2012-13 के अंदर जो है ना वो किया था आसिफ अली जरदारी ने जाने से पहले, और एक वो धमाकेदार जो है ना खबर दी थी. अब वो पता, यही हर दफा खबर आती है कि जी वो ईरान जो है वो जुर्माना लगाने के लिए तैयार है उसके ऊपर, लेकिन वो हम 15 साल के अंदर भी जो है ना हम उसको पाए तकनीक तक जो है ना वो नहीं पहुंचा सके. हालांकि वो मेरे ख्याल से कोई 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर भी पाइपलाइन का नहीं बनता.
8: ठीक है.
9: तो ये हमारी कमजोरियां हैं, जब तक हम इनको जो है ना वो दूर नहीं करते
8: क्या बात वाकई दुरुस्त है क्या ये बात?
9: ये देखिए, अगर आप हॉक्स बे वाली साइड पे चले जाएं, आप जो है ना वो 3 तलवार है और फिर क्या कहते हैं अपना क्लिफ्टन है, फिर इसी तरीके से आपको नया इलाका वहां पे डेवलप हुआ है फेज 8 DHA का, और इसी तरीके से लाहौर के अंदर, अगर आप लाहौर राया के अंदर जो है ना वो चले जाएं, तो ये वाकई ही आपको जो है ना वो रात के टाइम आपको नहीं फील होता कि आप जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना कर रहे हैं. मैं आपको लाहौर की मिसाल दे रहा हूँ कि लाहौर के अंदर जो है वो DHA राया अगर आप रात के टाइम जो है वो ट्रेवल कर, इवन दिन के टाइम भी, मैं जरूरी नहीं रात के टाइम.
8: ये DHA कौन, DHA 7 बन, क्या बनता है ये?
9: मेरे ख्याल से ये 9
8: बनता है, ठीक बनता
9: है. ये मतलब है कि उस साइड के ऊपर जो है ना वो आपको दुनिया अलग लगती है, लोग अलग लगते हैं, और ये बिल्कुल मैं गाड़ी वाली बात से भी जो है ना मैं एग्री करूंगा कि वहां पे गाड़ियां आपको वो और नजर आती हैं, वहां पे आपको बड़ी आपको वहां पे पोर्श नजर आएगी, आपको मे बैग नजर आएगी, आपको BMW नजर आएगी, मर्सिडीज नजर आएंगी, पोर्शे जो है ना आपको वहां पे नजर आएगी, इस तरह की गाड़ियां आपको वहां पे नजर आती है. हाँ, आम गाड़ियां भी हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि दूसरी गाड़ियां.
8: मतलब कहते हैं कि वहां काफी पॉश जो है एरिया है, मतलब है.
9: जी, और वहां पे जो है ना वो डाइनिंग, और वहां पे डाइनिंग एक्सपीरियंस वो आम हमारे जैसा बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता और सोच भी नहीं सकता. तो लेकिन ये कि अगर कभी जो है ना वो आपको मौका मिले और आप वहां पे जाएं, और किसी के तवस्सुत से अगर आप वहां पे, हमने एक मतलब जो है ना वो शादी अटेंड की थी, तो बाकी मतलब वो लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर जाने, पाकिस्तान की किसी जगह पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं.
8: ठीक. अच्छा सर, दुनिया के दूर अफ्ताज जजीरे पर जो है जो हेंटा वायरस है उससे मुतासर शख्स को बरतानवी पैरा जो ट्रूपर्स जहाज से तबी इमदाद लेकर 3,000 किलोमीटर दूर जजीरे पर जो है वो पहुँचे हैं. बरतानवी वज़ीर दफा ने कहा कि यह पहला मौका है जब बरतानवी फौज ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तबी इमदाद फराहम करने के लिए पैराशूट के जरिए तबी अमला तैनात किया है. ये दोहरा मैार नहीं दुनिया को लगता है, एक शख्स की जान बचाने के लिए तो घर की बचानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा किया है इतनी तगोदो की. दूसरी जानब ईरान, लिबिया और फ़लस्तीन में लाखों जानों के ज़िया पर मुजरमाना खामोशी है बड़ी ताकतों की. वैसे वेंटा वायरस के 4 जो सस्पेक्टेड लोग हैं, वैसे वो ठीक है, उनमें कोई सिम्टम नहीं है, वो हमारे यहाँ जो कैनेडा में भी जो है उनको भी क्वारंटाइन किया गया. जी
9: जी और जगहों पे भी जो है वो इसकी इतलात मिल रही हैं, और बिल्कुल मतलब है कि वो उस हवाले से जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो अब हर वायरस को ही जो है वो बड़ा मोहतात तरीके से जो है ना वो मैं कल भी एक जगह पे जो है ना वो बात कर रहा था, तो मैंने यही बताया था कि अब हमारी जो है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस तो अभी 2019 की बात है, 2020 की तो अब प्रैक्टिस है. तो मैंने कहा मुझे हैरत है कि अभी तक हुकूमतों ने उस तरीके से जो है ना वो स्टेप्स क्यों नहीं लेने जो है ना वो शुरू किए।
8: वो भी इसका वो इतना है नहीं, वो वगरना तो फौरी तौर पे वो ले लेते मेरे ख्याल में।
9: मेरे ख्याल से मेरा अपना जो ख्याल है ना कि मतलब ये कम से कम मास्क और जो जो
8: बुनियादी हो जाएंगे वैसे। जी बिल्कुल सही से कह रहे हैं।
9: हाँ, वो शुरू हो जाने चाहिए ताकि ये कम से कम जो उसका फैलाव है उसको जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। मैं कुछ ऐसे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे केसेस जो है ना मैंने देखे हैं जहाँ पे जो है ना वो उसी किस्म के सिम्टम्स के साथ जो है ना वो लोग एडमिट हो रहे हैं। तो ये हो सकता है बाजू का वायरस जो है ना जब तक उसका आपको पता चलता है ना तब तक वो काफी हद तक फैल चुका होता है ऑलरेडी।
8: बिल्कुल ठीक।
9: तो ये मतलब कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऑलरेडी जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको जो है ना वो लागू करे ताकि ये कि कम से कम जो है ना उसका फैलाव ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। और दुनिया को हमने पहले भी जिक्र किया था कि देखें दुनिया जो है वो ये अपने जो मुझे माना खामोशी की बात की सिर्फ मुसलमानों के हवाले से है। दुनिया के अंदर जो है ना कहीं जो है ना वो अल्लाह माफ करे कि कोई कुत्ता भी जो है ना वो मर जाए तो उसकी जो है ना बहुत फिक्र होती है, उसकी हेडलाइंस जो है ना वो बन जाती हैं, लेकिन मुसलमानों का खून जो है वो सस्ता है। और उसकी हमारी अपनी जो है कमजोरी है, हमारी अपनी वजह है कि मुसलमान जो है उनका इत्तेहाद नहीं है, उनके जो है ना वो कोई एकांगत नहीं है, इस वजह से जो है ना वो उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। वरना अगर मुसलमान ममालिक जो है वो इकट्ठे हो जाएं और दुनिया को जो है ना वो बाबर करवा दें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके।
8: अच्छा, महमूद रज़ाकज़ई की इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल न होने पर पार्लियामेंट बंद करने की धमकी, अगर एक हफ्ते में इमरान खान का दुरुस्त इलाज ना हुआ मुलाकातें ना करवाएंगे तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, कौमी असम्बली से खिताब, तो क्या ख्याल है मुलाकात होगी या पार्लियामेंट है इतना मतलब कह सकते हैं आप ताकत तो नहीं कह सकता लेकिन ये बंद कर सकते हैं पार्लियामेंट को जिस तरह मैं
9: जी देखिए आप पहली बात तो है कि सीरियसनेस देखनी पड़ती है किसी भी मामले के अंदर। यही महमूद खान अज़ाकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को इमरान खान ने मेरे ख्याल से कुछ साल होने वाला है कि इनको मैंडेट जो है ना वो दिया हुआ है कि जी आपने, या फिर ऑपोजिशन लीडर भी बना दिया इनको, क्या कर लिया इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बन के, कोई इजलास, कोई इत्तेहाद, कोई जो है ना वो जलसा, कोई जुलूस, कोई अभी तो वो यही नहीं डिसाइड कर सके कि मुजाकरात करने। ठीक है कि एक प्रोग्रेस बिल्कुल हुई है इस बयान से गालिबन शायद पहले हुई है या बाद में हुई है कि वजीर आजम ने जो है वो उनको मुलाकात का जो है ना वो वक्त दे दिया है और मुलाकात जो है ना वो अब तय हो गई है, ये वेन्यू जो है वो डिसाइड होना रह गया है। तो हो सकता है मुलाकात अगर हो जाए तो उसके अंदर कुछ मामला जो है वो डिसाइड हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है मतलब ये बात करते हुए थोड़ा अजीब लगता है कि आपको याद होगा कि जब वजीर आला के पी के की बात हुई थी वजीर आजम से तो उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो है ना वो मामला डिस्कस किया था, लेकिन वजीर आजम ने कोई उसके ऊपर जो है ना वो जवाब नहीं दिया था। तो ये मतलब है कि वो बात वही आ जाती है कि अगर ये मुलाकात हो भी जाती है तो क्या वजीर आजम जो है वो इस बात की गारंटी जो है ना वो दे सकते हैं कि मुलाकातें होंगी, या वही बात आ जाती है कि अगर कानून जो है वो एक वजीर आजम भी इसकी आड़ लेते हैं कि जी कानून है, अदालतें हैं, आप जाएं अदालतों से, आप अगर आप ले सकते हैं तो वहां से आपको इजाजत मिलनी है, मैं इसके अंदर जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास जो है ना वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो पावर जो है ना वो नहीं है, तो फिर ये मुलाकात किस लिए होगी, इसका एजेंडा क्या होगा, क्या उसके अंदर जो है ना वो गुप्तचर होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मतलब ये कि इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है इसको भी अब तकरीबन ये तो पिछले साल अगस्त की बात है जब से ये मामला जो है ना वो चल रहा है, तो अगर अभी तक आपकी जो है ना वो सीरियसनेस जो है ना वो ये है तो मुझे लगता है सिर्फ बयानात की हद तक ही है, इससे आगे जो है ना वो कोई मामला नहीं जाएगा।
8: ट्रंप साहब की जानिब से जंगबंदी की तजवीज जो ईरान की थी वो मुस्तरद कर दी है, ईरान की नई तजावीज कहते हैं मकाना है, जंगबंदी माहदा वेंटिलेटर पर सिस्कियाँ ले रहा है, ट्रंप के बयान से तेल की कीमतें फिर जो है ऊपर, उसका उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, फिर वही तसलसल, वही हफ्ते का आगाज, वही एक बयान, वही कीमतों का उतार चढ़ाव, तो क्या ट्रंप के बयान से कोई माली फवायद भी हासिल कर रहा है कोई ना कोई, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी कमी आती है साथ ही गैस की कीमतों में भी आ जाती है?
9: जी देखिए हमने देखा है कि अब तो तसलसल के साथ ये हो रहा है कि जब भी वीकेंड आता है तो वीकेंड के ऊपर खबरें जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं मौदों के हवाले से और गुफ्तोशनीद के हवाले से, और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े सॉफ्ट किस्म के जो है ना बयान देने लग जाते हैं कि मौदा बस हो गया है, बस अब हम बहुत करीब आ गए हैं, और हम देखते हैं कि हर वीकेंड के ऊपर जो है वो प्राइसेज नीचे जाती हैं, और जैसे ही जो है ना मतलब एक संडे आता है और वीकेंड आता है तो एक धमाकेदार किस्म का जो है ना वो या तो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है या आगे से ईरान को धमकी लगा दी जाती है, या फिर जो है ना वो कभी आपने हुर्मुज के ऊपर जो है ना वो पाबंदी का, नाकाबंदी का और इस तरह का जो है ना ऐलान कर दिया जाता है। तो अब तो ये जो पिछला एक महीना जो जंग बंदी का जो है ना वो गुजरा है तो उस एक महीने के अंदर ही जो है ना हम देख लें तो हर वीक का जो आगाज है वो इसी किस्म की खबर से जो है ना वो होता है, और उसके पीछे जो ये उतार चढ़ाव आता है कि वो पेट्रोल की जो आलमी मार्केट के अंदर कीमत है वो $100 से नीचे आती है और फिर एक बयान से जो है ना वो 109 और 10 डॉलर पे चली जाती है। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग होंगे जो इससे जो है ना वो
8: बिल्कुल ठीक। और चलिए जनाब अब कॉल्स की चलेंगे स्टूडियोज में, रबते के नंबर 416-593-0003 कॉल्स अगर ज़्यादा रहीं तो फिर हम 9 बजे के बाद भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे। 7997 सर आप ऑन एयर हैं, 7997 आप ऑन एयर हैं जी,
0: कैसे हैं आप?
8: जी बिल्कुल अच्छे, बहुत शुक्रिया।
0: हाँ बट्टी साहब मैं थोड़ा आपको बता दूं।
8: जी जी,
0: कराची में दो इलाके ठीक है, क्लिफ्टन के इस पार सब बेचारे गरीब गुरबा रहते हैं जिनकी कोई अहमियत हैसियत नहीं, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रोड शेडिंग है, रोड टूटे हुए, लॉ एंड ऑर्डर का सख्त मसला है। और पुल के उस तरफ क्लिफ्टन के इलीट क्लास रहती है जो माशाल्लाह पाकिस्तान के करते धरते चलाने वाले। लाहौर में भी ऐसे कोई इलाके होंगे लेकिन लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची का एग्जैक्टली मुझे पता है। और ये फेस एट है
8: जी,
0: ये फेस एट बनाया गया था, जमीन खोद के निकाल के समंदर से जगह ली गई थी
8: जी,
0: तो ये डेवलपमेंट हुई थी। बात ये भाई, जब तक जिस जमीन पे ठीक है इंसाफ नहीं होगा ना,
8: सही,
0: वो जमीन कभी पल फूल नहीं सकती क्योंकि बगैर इंसाफ के कोई चीज नहीं चल सकती।
8: ठीक है,
0: हमारी अदालतें जो हैं वो भी किस तरह के फैसले करती है इसमें कोई बताने की किसी को जरूरत नहीं है। और महंगाई के खिलाफ
8: जी
0: ना कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी, वैसे एक बात बता दे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जत्ते हैं अपने अपने काम करते हैं अपने अपने। अभी फजलुर रहमान से पूछा कि महंगाई के खिलाफ क्या करोगे, क्या जवाब था उनका? कुछ भी नहीं।
8: ठीक सर,
0: तो ये इस तरह चलता रहेगा।
8: ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 6910 सर आप ऑन एयर हैं, 6910 6910 आप ऑन एयर हैं सर, बात कीजिए। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम।
10: हाँ बट्टी साहब, दरअसल हमारे लिए तो पूरा कराची ही जबरदस्त है, हम जब भी जाते हैं हमें हर जगह पैरिस ही लगती है।
8: अच्छा।
10: यही हाल लाहौर का भी, तो मुझे तो खैर अपने मुल्क में क्योंकि यहाँ भी कई टूटी फूटी सड़क।
8: जी हाँ बिल्कुल, यहाँ भी हर साल ऐलान भी होता है, बताते भी हैं।
10: इवन न्यूयॉर्क भी मैं क्यों, तो मैं हैरान था कि डाउनटाउन
8: न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पे चूहे देखे आप?
10: हाँ अरे ऐसे वैसे नहीं, वो तो लोहे नगर की जंग का आलू जो वो है, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि हम बिलौजी में अपने शहरों को ये समझते कि वहाँ पर ये है वो है। तो बहरहाल खैर, दुनिया के हर जो ऐसे जो मेन सिटीज हैं जिनको विजिट किया जाए तो आपको पता चल जाए कि उनकी असल हालत क्या है। लेकिन है खूबसूरत जगह भी है और जिनको मेंटेन रखा जाता है, नो डाउट के लॉर्ड के ऊपर काम हो रहा है अभी से बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो जो चीज भी मेहनत की जाएगी नजर आएगी। यही हाल बहरिया का है, बहरिया बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल का है। सही है भाई कि उसके बनाने वाले करप्ट हैं या वो है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन नो डाउट कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप मिसाल दे सकते हैं। अब आइए पीटीआई पे, तो बस मसला फिर वही है कि इमरान साहब को अपने जो यानी कि पार्टी में कोई इस काबिल नजर ही नहीं आता कि वो कोई अच्छी पोस्ट पे उनको बिठाए। हालांकि ये काम अगर वो फजलुर रहमान से करवाते तो शायद उनके भी फेवर में जाता और वो इनकी भी हिमायत कर देते, जैसे कि आज वो उनके इसमें बयान दे रहे हैं। लेकिन अचरज भाई को लेके आना या उससे पहले परवेज इलाही को वजीर आला बनाना और भी ऐसे डिसीशन है जिनका कोई यानी कि सर पैर नहीं है। अब अमेरिका और यानी कि ईरान के मसले पे मसला यही चल रहा है कि ट्रंप साहब को बेसिकली फाइटिंग पसंद है। आप ये देखिए कि वो जो अक्सर जाके देखते हैं ना वो लाइव वो जो खून खराबा होता है, तो मैं वही हैरान होता हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं होती कि प्रेसिडेंट या कोई इतना सरबराह फाइटिंग को पसंद करता है या फिर वो बिजनेस पे अपना नजर रखता है।
8: ठीक है,
10: लेकिन ये पूरी दुनिया उसके असरात भुगत रही है कि वही खून खराबा या जो महंगाई जो कुछ हो रही है। तो अल्लाह ताला बैरल दुआ करनी चाहिए।
8: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया,
10: स्टेबल हो जाए पाकिस्तान की तरफ।
8: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 6536 आप बात करना चाहेंगे, अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा आप कॉल कर लीजिएगा, अगर आप सिर्फ सुन रहे तो। 6536 जी आप बात करेंगे, 6536 6536। चलिए आप होल्ड रखिए, दोबारा कर लेंगे, कॉल डिस्टेंट है दोबारा कर लीजिएगा। 5794 सर आप ऑन एयर हैं, 5794 5794।
10: السلام علیکم جناب.
8: وعلیکم السلام
10: بٹی صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ سٹاک مارکیٹ کے جناب مالک ہیں, وہ ایک بیان سے, اور خاطر خواہ میرے خیال میں دنیا بھی اب اس پہ بحث کر رہی ہے کہ وہ ان کے ہیں کچھ, ہماری جو پتہ ہوتا ہے ان کو بھائی کس میں مال لگانا ہے اور کس میں بنانا ہے. تو اس لیے وہ بات ابھی یہ دیکھیں, ایران اور امریکہ کی جو بھی باتیں چل رہی ہیں اس میں کوئی ابھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. جب تک سنجیدگی نہیں نظر آئے گی معاملات طے نہیں ہوں گے, اور بس ہیر پھیر کر کے تو وہ بھی کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں اور وہ بھی کچھ کرنی ہے, تو ابھی اس کا کوئی خطرہ نتیجہ نہیں آ رہا. تو جب تک نہیں تو ایسے ہی بس اس پہ اپنے اپنے جذبات کے لحاظ سے بات کر لیں کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں تو اس کی حمایت میں دے ماریں گے, اگر ادھر ہے تو وہ جی یہ ہے, تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. باقی پاکستان میں بھی دیکھیں بٹی صاحب, ہر دور میں الیٹ کلاسز تو نہیں ہیں, بحریہ ٹاؤن لے لیں, کلفٹن لے لیں, تو یہ وہ علاقے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ علاقے ہیں جہاں الیٹ کلاسز رہتی نہیں ہیں. لیکن جو بھی حکمران آتے ہیں وہ جواب دہ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جو لو طبقہ ہے ان کے لیے بھی کوئی بہتر کام کرے. اور سب سے بڑھ کر بٹی صاحب میں تو کہتا ہوں کہ جب تک آپ بجلی گیس اور ان باتوں پہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں نہ ملے گی تو اس سے معاملات بگڑتے ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے, اور میرا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہو بھی جاتے ہیں تو پاکستان سے یہ سینکشنز اگر اٹھتی ہیں تو پاکستان ایران کے ساتھ معاملات ویری نیئر ٹو اس, کیا گیس اور بجلی اور ہم ان سے لے سکتے ہیں آئل وغیرہ؟ اور میرا خیال ہے اب بھی جو تجارت تو اب بھی ہو رہی ہے, کوئٹہ دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, یا اور صوبہ سرحد کے کچھ علاقے ہیں وہاں اب بھی وہ پٹرول آتا ہے. بے شک ان کا پٹرول وہ کوالٹی کا نہیں ہوتا, لیکن وہ اس کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے اگر آپ آپ کو سستے معاملات پہ ملتے ہیں, لیکن دیکھنا یہی ہے. تو باقی بٹی صاحب باقی رہ گئی سمپل بات, پی ٹی آئی کی یہ غلطی ہے, یہ ہاں صاحب کل بھی غلطی تسلیم کر لیں گے, ان دونوں بندوں کا مقدر کرنا اپنی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے. بھائی 90 بندے آپ کے ایم این اے اور سینیٹر اتنے ہیں یار, آپ کا کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. بے نظیر نواز شریف ایک وقت تھا کہ وہ 15 بندے 17 بندوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپوزیشن کی. اپوزیشن وہ قومی اسمبلی میں ہوتی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی. کیا حال ہے آپ کا؟ تو اس میں تھوڑا تبصرہ فرمائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر بعد میں ہوا تو بعد میں آتے ہیں, تھوڑی بہت بات کریں گے تفصیل.
8: بالکل 5415 سر آپ آنے رہے ہیں. 5415
11: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پٹی صاحب کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے؟ اچھا پٹی صاحب, میرے واسطے تو بڑی حیرانگی دی گل ہے, مینوں تھوڑا جا اپڈیٹ کرو. کووڈ دیاں پرائساں لے لو پوری دنیا دے وچ, پری کووڈ کینیڈا چ رہنا, میں بار بار مثال اس واسطے دینا, مینو پٹی صاحب یہ دسو کہ کووڈ تو جنے بعد جہاں پرائساں کنے پرسینٹ ودیاں نے, لوکاں دیاں سیلریاں کنے پرسینٹ ودیاں نے؟
8: ٹھیک ہے جی,
11: مطلب یار مینو یہ سمجھ نہیں آؤں گی کہ اسی جس ویلے تنقید بھی کرن لگنے ہیں نا کسی لاجک, ویکھو میری گل سن پٹی صاحب, جڑی گل لاجک دے نال کیتی جائے نا اور احترام ہوندا ہے, تے جڑی انج ہی مطلب ایک بندہ رٹا مار کھڑے اوری گل دا ویلیو کو نہیں ہوندی, اے تے سانو بھی پتہ ہوندا کہ جواب کی آونا ہے.
8: ٹھیک ہے.
11: اچھا اس تو بعد اگلی پٹی صاحب گل ہے بھائی,
8: جی جی,
11: کہ میں ہن ٹورنٹو ساڈا ایریا جنیاں سڑکاں دے میں تانوں گنا دینا.
8: ٹھیک ہے, نہیں صحیح ہے, ٹھیک,
11: یقین کرو سڑکاں جڑیاں نے گڈیاں بریکر سڑکاں نے, گڈیاں نہیں ہے, اے سڑکاں کے اس قابل نہیں کہ انہاں دے گڈیاں چل سکن. پٹی صاحب
8: چلو ٹھیک ہو گئے سر,
11: مطلب ایک گل. اس تو بعد پٹی صاحب گل ہے جڑا ٹرمپ ہے نا سر, وہ ایک ایسا ڈرائیور ہوں گڈی دے وچ بیٹھا جتھے اور دیر کردا سواریاں فکس کر لیندا, پیچھے سواریاں باہلیاں باہ لیندا, جتھے دیر کردا جا کے بریک ماردا سارے آپ ایڈجسٹ ہو جاندے نے. گل ایویں کہ پٹی صاحب دنیا نوں ہن پتہ لگدا پیا کیونکہ ننگا نیترا اے لوکاں نوں بہاندے نے پے کہ اسی اے کردے ساں. پٹی صاحب ادھوں پہلاں وی تسی اگر سارے انہاں دے ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਬਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ।
8: ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੋ ਚਲਿਏ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਲ ਇਨਸ਼ਾ ਆਪ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ
9: ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
8: ਔਰ ਜਨਾਬ ਲਿਸਨਰਸ, ਆਪਕੀ ਕੋਲਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਰੀਮ ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਸਪੁਰਦ ਮਾਨਾ।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूँ, आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो and together we will kiss the airwaves of Toronto this fine morning.
2: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदेद और लवी रवि शो पर मैं शिवानी अपने को होस्ट आमिर के साथ आपका स्वागत करती हूँ। ट्यूसडे की बड़ी खूबसूरत सी सनी सनी सी मॉर्निंग, 8:02 का टाइम है इस वक्त और 7 degrees Celsius इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ। क्लियर स्काई है, क्लियर मौसम है और 4 degrees के आसपास फील होता हुआ, पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी रेन की संभावना बनती दिखाई देती है और दोपहर में टेम्परेचर अराउंड 12 degrees से 14 degrees के बीच में रहेगा, तो आप आराम से अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं। मौसम के लिहाज से आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 11 बजे तक हमारा आपका साथ बना रहेगा। 416-303-3639 इज़ द नंबर टू कॉल, 416-303-3639। और आमिर हमेशा कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन एंड बिलीव दैट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ विल बी अमेजिंग।
3: ये जो लाइफ है इसकी जगह वाइफ कर दीजिए, फिर पढ़िए देखिए क्या होता है। वाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ।
2: और
3: wife doesn't have to, you have to.
2: यहाँ पे जित कॉन्फिडेंस के साथ जिक्र कर रहे हैं, ये अगर घर पे हम अपने लिसनर्स को कहेंगे कि अपने रिस्क पे ये थॉट बोलिए अपने वाइफ के सामने कि फिर देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ कितना अमेजिंग होता है। आगे कहते हैं, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर।
3: विदाउट फियर, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका फियर वाला है ही, लेकिन फ्यूचर आपको फेस करना है फियर वाला वाइफ के साथ। तो देखिए कितना एक्यूरेट है ना, कि यहाँ भी जिंदगी का मामला आता है। जिंदगी अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टन है, गैर यकीनी है, इसका कुछ पता नहीं है किस वक्त बदल जाए, कैसे बदल जाए, क्या आपके साथ बर्ताव करे, क्या हुस्न सलूक करे, अगले ही लम्हे कौन सा हादसा सानहा वाकया हो जाए। वाइफ भी ऐसी ही है भाई।
2: आमिर, आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ एंड
3: वाइफ,
2: तो इसके जरिए हमेशा अपने लिसनर से कहना चाहेंगे, आमिर की ज़रूर बात सुनिए, थोड़ा सा अपने रिस्क पे सुनिएगा और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो उसको फेस करने के लिए ऊपर वाला आपको हिम्मत दे, ऐसी हम दुआ करते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। वाइफ के बारे में पूरी दुनिया में एक चीज़ बहुत कॉमन है।
2: अच्छा।
3: बहुत नपी हुई, तुली हुई, जानी हुई परखी हुई लोग जानते हैं इस बात को कि वो अनप्रडिक्टेबल बहुत होती हैं।
2: अच्छा,
3: उनके बारे में आप चाहे उनके साथ 25 साल गुजार चुके हों, 28, 30 साल, 35 साल का खूबसूरत सा सफ़र हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि अगले ही लम्हे इनका रद्द अमल क्या होगा किसी भी बात पर। हो सकता है 25 साल से एक ही बात पर वो रद्द अमल सेम हो और 26वें साल वो बदल जाए, यू नेवर नो। सो ये एक तरह से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जदीद दुनिया में आजकल जो शादियां होती हैं वो ज़्यादातर इस वजह से भी नाकाम हो जाती हैं कि दो लोग एक दूसरे में कुछ भी पिन्हा पोशीदा रखते नहीं हैं, सब कुछ जान लेते हैं शादी से पहले ही, एक दूसरे की आदतें, खसलतें, अतवार, रहने सहने का तरीका, चाल चलन, ढंग उसलूब सब देख लेते हैं। तो जानने के लिए कुछ ख़ास बाकी नहीं रह जाता शादी के बाद, क्यूरियोसिटी या वो तजस्सुस नहीं रह जाता। तो ये तजस्सुस हमारे ज़माने में आज से कोई मान लीजिए कोई 50 साल पहले
2: जब आमिर 2000
3: आतिश जवान था, जब
2: 2010 के एंड में बॉर्न हुए, ये तब की बात कर रहे हैं कि उस वक्त इनके ज़माने में ऐसा था। अब अगले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है।
3: अभी देखिए मेरी आवाज़ से भी कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो वो बात कीजिए जो हकीकत के थोड़ा सा तो करीब करीब हो। 2010 की बात कर रही आप।
2: ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपके साथ हमारे साथ चलती रहेंगी। मौसम साथ देता रहेगा, आप भी साथ देते रहिए, ड्राइव करते रहिए, सुनते रहिए लवी रवि शो। 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
9: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
10: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
11: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
10: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ

0: No fee until victory.
1: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayed M. Raza of Sayed Law. Sayed Law se Sayed M. Raza.
0: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
1: Call Sayed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
2: इट्स 9:32 लवी डवी शो. आप हैं आमिर और शिवानी के साथ. आमिर, बहुत अच्छा सा थॉट है जो कहता है कि कभी कभी वी हैव टू लेट गो ऑफ द पिक्चर ऑफ व्हाट वी थॉट लाइफ वुड बी लाइक एंड लर्न टू फाइंड जॉय इन द स्टोरी वी आर एक्चुअली लिविंग. है ना, कभी एक हम ड्रीम लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो ड्रीम लाइफ हमें नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं, अनॉइंग हो जाते हैं और अपनों के साथ साथ अपनों को वालों को भी परेशान करते हैं. तो जिंदगी जैसी है वैसी आप एक्सेप्ट करें और उसमें से बेस्ट ढूंढिए.
3: हाँ,
2: और ये चीज हमारी ड्राइविंग पे भी लागू होती है.
3: बिल्कुल.
2: अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमें ये हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए.
3: जी, बिल्कुल.
2: हम हमारी गलती हो हमारी गलती नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक बहुत अनयूजुअल बात नहीं है. लेकिन बात ये है कि एक्सीडेंट के बाद जो जिंदगी हमारी उथल पुथल हो जाती है, 360 डिग्री के एंगल पे घूम जाती है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें. ऐसे में गलती तब हो जाती है जब हम गलत स्टेप ले लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें भुगतना पड़ता है. तो इसीलिए आपको बताएंगे कि अगर ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो आपको बस एक नाम याद रखना है सैयद रजा साहब का और एक नंबर याद रखना है 416-937-5046.
3: सैयद एम रजा में स्पेशलिटी ये है, सबसे पहले तो आपकी जुबान में आपसे बात करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, जानेंगे. आज के प्रोग्राम में इनका डायरेक्ट मोबाइल नंबर हम आपको देंगे. आप कहीं भी हैं पूरे मुल्क में, कोई भी टाइम है, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या डायरेक्ट बात कर लीजिए. दूसरी स्पेशलिटी है कि ये पर्सनल इंजरी के काम के अलावा कुछ नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं, ये भी पर्सनल इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं. मोर देन फुल टाइम इनटू पर्सनल इंजरी, बेस्ट कंपनसेशन आपको दिलाएंगे. सैयद एम रजा बैरिस्टर, वेलकम करते हैं सर आपको.
4: जी तुफैल भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपको जिस तरह से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, लोग जो है वो आपके प्रोग्राम का इंतजार करते रहते हैं, 9 o'clock पे रेडियो ऑन करके रखते हैं गाड़ियों में.
3: शुक्रिया.
4: आपको सुनते हुए जो है वो पहुंच जाते हैं, मतलब ये कि बहुत ही जो है वो सुहाना सफर गुजर जाता है.
3: शुक्रिया बहुत बहुत.
4: ये जो है ये आपके प्रोग्राम की बहुत बड़ी कामयाबी है और जिस तरह से आप हम लोगों को भी प्रमोट करते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट. तो जैसा आपने कहा तुफैल भाई और शिवानी जी के पर्सनल इंजरी जो है वो सैयद रजा की, सैयद एम रजा बैरिस्टर सॉलिसिटर और हमारी लॉ ऑफिस सैयद लॉ ऑफिस की ओनली स्पेशलिटी है कि जिसमें हम जो है वो लास्ट 13 years से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं. उसका रीज़न ये हैगा कि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जो लीगल राइट्स लोग अपने जो है वो फोरगो कर देते हैं. पहले तो जो है वो लोग अपना क्लेम्स ही नहीं लेते थे, कहीं और जाके फंस जाते थे, उनके क्लेम्स को जो है वो सही तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता था और वो बेचारे परेशान हो जाते थे कि जी हमें कुछ नहीं मिला, हमारे साथ जो है वो हमें इतनी इंजरी हो गई है, हमें कुछ इनकम लॉस नहीं मिला, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला. तो अब ये चीज़ जो है ये सैयद लॉ ऑफिस ख़त्म हो चुकी है. हमारा काम सबसे पहले ये हैगा, हमारा जो भी क्लाइंट हमें रिटेन करता हैगा, हम उसके जो इमीडिएट बेनिफिट्स हैं वो हम सबसे पहले प्रोसेस करें. उस इमीडिएट बेनिफिट में गहरी बात है, वो काम नहीं करता हैगा तो इनकम लॉस जो है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट हैगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी पे करती हैगी इफ़ यू आर वर्किंग बिफोर एक्सीडेंट. और अगर कोई शख्स काम नहीं कर रहा था यानी वो अनएम्प्लॉयड था 1 साल एक्सीडेंट से पहले, तो उसके लिए एक बेनिफिट है जिसको नॉन अर्नर बेनिफिट कहते हैं, वो होता है $185 पर वीक और वो 4 weeks आफ्टर दी एक्सीडेंट जो है उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है. पहले 4 weeks में नहीं होती है लेकिन आफ्टर 4 weeks उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती हैगी और वो 100 weeks तक कंटिन्यू रहता हैगा, 100 weeks तक. यानी कि मतलब ये कि 4 weeks आप पहले वाले निकाल दें तो 100 weeks तक वो कंटिन्यू रहेगा, जिसका मतलब ये है कि ऑन और अबाउट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट वो बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा. जो इनकम लॉस बेनिफिट हैगा

0: ये आपको 1 वीक पोस्ट एक्सीडेंट मिलता हैगा, और ये आपको जो है वो पहला स्टेज है इसका 2 ईयर्स तक, और अगर आप 2 ईयर्स के बाद भी काम नहीं कर सकते हैंगे तो ये अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज आपको मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स की एज 45 थी व्हेन ही शी गॉट इनटू एन एक्सीडेंट, तो उसको ये बेनिफिट जो है आने वाले 20 साल तक मिल सकता है. 20 साल के बाद भी मिलता हैगा, ऐसा नहीं है कि 65 पे जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन 65 के बाद क्योंकि CPP जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि लोग जो है वो CPP लेना शुरू कर देते हैंगे, तो उसका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता हैगा, बट स्टिल देयर इज समथिंग आफ्टर 65 एज वेल. तो आप ये देखेंगे ये जो है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हैगा. और इसमें जो है जो क्वालिफिकेशन इसकी है वो ये नहीं है कि कोई आपकी ब्रोकन बोन हो या कोई आपको जो है इनएबिलिटी टू वर्क. इनएबिलिटी टू वर्क में जो है अगर फर्ज किया अभी अगर कोई शख्स जो है उसकी कोई लेबर जॉब थी जिसमें लिफ्टिंग इन्वॉल्व थी, कोई जैसे लॉन्ग ड्राइविंग की जॉब थी, अब उससे लॉन्ग ड्राइविंग नहीं हो सकती हैगी, तो ये सारी चीजें जो इनएबिलिटी टू वर्क एज लॉन्ग एज आप क्वालिफाई करते हैंगे, वो चाहे फिजिकल नेचर की हो, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंजरीज हो, या खाली साइकोलॉजिकल इंजरीज भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पर्टिकुलरली जो खवातीन हैं वो एक्सीडेंट के बाद इतने डीप डिप्रेशन में चली जाती हैंगी कि उनकी काम करने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है.
1: बिल्कुल सही.
0: और आपको पता है कि हमारी साउथ एशियन लेडीज ज्यादातर जो है ये मोस्टली जो है वो लेबर काइंड वर्क में होती हैंगी, या एस्थेटिशियन होती हैं, ब्यूटिशियन होती हैंगी, या जो है वो ये किसी फैक्ट्री वर्क में काम करती हैंगी, तो इसकी वजह से जो है वो इनकी कैपेसिटी टू वर्क जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है
1: और बिल्कुल
0: काम नहीं कर सकती हैंगी. ये मैं आपको एक साइड बता रहा हूँ क्लेम की. जो इसकी दूसरी साइड है वो ये हैगी कि ये वाली जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ये तो आपको $400 पे करेगी, मगर अगर आप $1,000 पर वीक बनाती थी तो बाकी 600 का क्या होगा, बाकी हु विल पे योर अदर $600 लॉस. तो जो अदर $600 लॉस है वो जिस शख्स ने आपको हिट किया हैगा उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी. और वो कब तक का पे करेगी, वो आपको पे करेगी 70 ईयर्स तक.
1: ओ वाओ,
0: 70 ईयर्स तक की कैलकुलेशन होंगी. और बाकायदा ये जो है वो CPA CGA फॉरेंसिक अकाउंटेंट से इसकी रिपोर्ट बनेगी, और 70 साल तक की एज आपकी इनकम लॉस की कंपेंसेशन जो है वो जिस शख्स ने आपको हिट किया हैगा उसकी इंश्योरेंस कंपनी से आपको रिकवर करवा के दी जाएगी. और ये ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ 70 साल पहुंचने पे मिलेगा, नहीं, ये आपको एक्सीडेंट के तकरीबन 2.5 से 3 साल में जिस दिन आपका केस सेटल होगा उस दिन के जो है वो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा. मगर ऑब्वियसली उसकी कैलकुलेशन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से होगी.
1: बिल्कुल सही.
0: यानी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आने वाले 70 साल में उस मनी की क्या हैगी उस हिसाब से होगी, ताकि आपको जो है वो अभी कंपेंसेशन मिल जाए, आप उसको इन्वेस्ट करें, स्ट्रीम ऑफ इनकम आप जो है वो ड्रॉ करें, और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ हंसी खुशी गुजारें, प्रॉपर्टी खरीदें, उसको किराए पे दें. मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो यही काम करते हैंगे, जिनको भी हैवी सेटलमेंट्स मिलते हैं वो प्रॉपर्टी लेते हैं, देते हैं, और वहां से स्ट्रीम ऑफ इनकम वो जो है वो ड्रॉ करते रहते हैंगे. तो ये सारे बेनिफिट्स हैंगे आपको सैयद लॉ के साथ जाने से. क्लियर कम्युनिकेशन, आपके गोल डिफाइंड, आपका टारगेट डिफाइंड, आपकी कैलकुलेशंस डिफाइंड कि आपको कहाँ हम लेकर जा रहे हैं. सिर्फ इस बात की जरूरत है आपने सैयद लॉ को रिटेन करना हैगा. वी आर वेरी वेरी क्लियर, हम आपके साथ हैंगे, मेरा स्टाफ, मैं, हम ऑलवेज क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि उसको बता सके. तो फैल भाई, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल हो, सैयद लॉ ऑफिस के डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें. नंबर तो फैल भाई आप बताएंगे अपने मखसूस अंदाज में. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बहुत
0: जी और तो फैल भाई,
1: थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. और बात आपसे इस इम्पोर्टेंट नंबर के बारे में कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कहीं भी हो, किसी भी नौयत, किसी भी नेचर का हादसा हो, नंबर यही मिलाएंगे. आप डायरेक्ट नंबर दे रहे हैं, यू शुड हैव दिस नंबर सेव्ड इन योर मोबाइल सेट. 416-937 5046 नंबर आपको दोबारा बता रहे हैं, ये नंबर नोट कर लीजिए 416 937 5046। बहुत शुक्रिया सैयद एम रजा बैरिस्टर, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू तो फैल भाई आपका, थैंक यू।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 16-17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ,
5: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਲੇਕ ਰੋਡ ਕੈਲਟਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474481000। 6474481000। ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ seva2022@yahoo.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya apni credit issues ho, Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001, 905-819-1001. License number 12374.
7: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ, 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए, किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
7: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्पलिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाए, कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए, 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639
7: जी, 416-303-3639।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
4: कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम आँखों से, वो बात जबानी कह देंगे।
5: वाह।
4: फूलों की तरह जब होठों पर एक शोख तबस्सुम बिखरेगा, धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। इजहारे वफा तुम क्या समझो, इजहारे वफा तुम क्या समझो, इकरारे वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे।
5: वाह वाह वाह।
4: समझे ना जिसे तुम आँखों से, वो बात जबानी कह देंगे।
5: जबानी कह देंगे।
4: कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे।
5: कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी।
4: वाह।
5: बात वो आधी रात की, रात भी ऐन थी चांद की, चांद भी ऐन था चेत का और उस पे तेरा जमाल भी।
4: क्या बात है।
5: सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता कि एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। और वो एक शख्स जो मेरी तलाश था, ना मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा कि भूल गया सवाल भी।
4: क्या बात।
5: उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए तो ढाल थीं, उसकी खुशी में छुप गया मेरे गमों का हाल भी।
4: अमेजिंग।
5: कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी।
4: अमेजिंग।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। वक्त हो चला है 10:02 का और बड़ी खूबसूरत सी सुबह है और समर जो है हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन बिल्कुल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। समर के टाइम में हम बाहर निकलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, लंबी लंबी शामें होती हैं, पार्टी सीज़न होता है, वेडिंग सीज़न होता है और ऐसे में हमारा जो अपीयरेंस है वो हम उसके बारे में बड़े कॉन्शियस रहते हैं। आजकल का वक्त ही थोड़ा सा यू नो ऐसा है कि वी want to look the best और उसमें हमारा जो है, हमारे जो बाल होते हैं ना, हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हेयर अच्छे से हुए होते हैं तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक अलग ही जो शोखी है और कॉन्फिडेंस से हमें आता है और हमें लगता है कि सब कुछ हम अच्छे लग रहे हैं। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी अच्छा मेकअप कर लें, अगर बाल सही नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिसिंग होता है और ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, हर किसी की ये शिकायत है। और मैं अपनी बात करूं तो मैं और मेरे दोस्त अक्सर यही बात करती हैं कि बाल कैसे करिए जाएं, किसी के बाल हेयर फॉल हो रहा है, परेशान हैं। लेकिन जब परेशानी है तो उसका सलूशन भी ज़रूर है और सलूशन है माइक्रो नीडलिंग, जिनकी एक्सपर्ट नवीन हमारे साथ जुड़ती हैं हर हफ्ते और हमें बताती हैं कि कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं, खोए हुए बाल वापस ला सकते हैं। नवीन, आपका वेलकम करेंगे लवी डवी शो पर, कैसी हैं आप?
5: थैंक यू सो मच वानी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
4: बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और हम और अच्छे हो जाएं और ठीक हो जाएं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स अभी सुन रही हैं आपको, बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे हैं और परेशान है हेयर फॉल से, तो ज़रा उनको आप खुश कर दीजिए और सोल्यूशन बता दीजिए कि आपके ज़रिए कैसे वो अपना जो खोए हुए बाल हैं वो वापस पा सकते हैं।
5: जी बिल्कुल शिवानी, ये स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग है और जिस तरह आपने कहा कि कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंसान जो है वो लूज करता है, मैं कहूँगी स्पेशली ख्वातीन लेडीज जो हैं, जाहिर है मर्दों को भी, हर कोई चाहता है कि अच्छे घने बाल हों। हम बच्चे बच्चियाँ आजकल का जो हालात हैं उसमें एवरीवन इज लूजिंग हेयर और उसका ये इलाज है स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग। पेनलेस है, ज़्यादा इसकी कोई अमाउंट भी नहीं है आपने पे करनी और 3 सेशंस आपने लेने हैं। हेयर ग्रोथ सीरम मैं साथ साथ अप्लाई करती हूँ और माइक्रो नीडलिंग करती हूँ स्कैल्प पे और आपकी हेयर फॉल उससे फर्स्ट सेशन में रुक जाएगी और हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी फ्रॉम द सेकंड सेशन।
4: जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अपने आप अपना नंबर बता दीजिए तो हमारे लिसनर्स आपको कॉल कर सकते हैं।
5: जी जी जी, मेरा नंबर है 647-960-8097।
4: जी, और मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 647-960-8097। नवीन, अब बात ये आती है कि किस स्टेज पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये ट्रीटमेंट? वैसे तो जैसे आपके पास आएंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे आप ये अगर बताना चाहें कि जिससे जल्दी से जल्दी लोग आपको कॉन्टैक्ट करें। कभी हम लोग ना आदत होती है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाके आते हैं और कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
5: जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जब आपको, मैं सबको यही कहती हूँ, बार बार यही कहती हूँ कि गिर रहे हैं बाल, गिरना शुरू हुए हैं, आपको फील हो रहा है कि यार ये जो है ज़्यादा है यूजुअल से हेयर फॉल, और तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम, क्योंकि हेयर फॉल आपकी रुकेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी आपकी, जिस तरह हम नीडल्स फेरेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, रूट स्ट्रांग होती हैं तो आपकी हेयर फॉल रुकती है और ऊपर से जो हेयर फॉलिकल उसको हम एक्टिवेट करते हैं, उधर से आपकी हेयर ग्रोथ शुरू होती है।
4: जी,
5: सो इट्स द बेस्ट टाइम व्हेन यू लूजिंग हेयर, कुछ गिर गए हैं लेकिन एज लॉन्ग एज देर आर सम हेयर ऑन योर स्कैल्प तो ये ट्रीटमेंट आप पे काम करेगा।
4: क्या बात है, नंबर एक बार फिर से मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, 647-960 8097। नवीन जी हमसे बातचीत कर रही हैं, नंबर एक बार फिर से बता दूं 6479608097 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नवीन, जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरे ही कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे हैं, बाकी भी लिसनर्स सुन रहे हैं, तो क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका सबको सोल्यूशन चाहिए, तो अगर कोई पैकेज डील आपके साथ बनाना चाहे, लाइक फैमिली मेम्बर्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, तो उसके लिए कुछ खास डिस्काउंट आप ऑफर कर रही हैं?
5: बिल्कुल, डिस्काउंट पैकेज आपको, अगर आप इंडिविजुअल भी आ रहे हैं तो 3 सेशंस का आपको डिस्काउंट पैकेज मिलेगा।
4: अच्छा।
5: और इफ यू ब्रिंगिंग अ फ्रेंड, फैमिली रिलेटिव है कोई भी, तो उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जो दोनों पे अप्लाई होगा। अच्छा। जिनको आप ला रहे हैं उनको भी मिलेगा डिस्काउंट और आपको भी मिलेगा।
4: क्या बात है, तो बस देर किस बात की है, नंबर घुमाइए 6479608097। आमिर, आप कुछ जहन में आया आपकी नवीन से पूछने
0: जी
4: के लिए?
0: बिल्कुल, नवीन कह रही हैं कि आप आएंगे, आपका ट्रीटमेंट तो होगा, जिसको आप लाएंगे उसको भी रियायत दी जाएगी। तो मैं चाहता हूँ शिवानी कि आप जाएं और मुझे भी ले जाएं, पे आप करें और डिस्काउंट मुझे मिले।
4: नहीं, ये ऐसी डील नहीं है नवीन। अच्छा। आप प्लीज कह दीजिए ऐसी डील नहीं है।
5: नहीं नहीं, ऐसी डील है बिल्कुल।
0: अच्छा। अच्छा, जो लाता है उसको पूरे पैसे देने हैं और जिसको वो लाया है उसको पैसे जरा
5: नहीं,
0: कम देने
5: हैं? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, जो लाता है उसको उसके और भी कम होंगे।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर दोनों के कम नहीं होंगे क्या?
5: दोनों के कम होंगे, लेकिन जो लाएगा उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा।
4: नवीन, यू आर द बेस्ट। देखिए, आप इनको लेके आना अपने आप में कितना टीडियस जॉब है, इसलिए।
0: देखिए, कहीं कोई साहब गा रहे थे।
4: अच्छा।
0: तो वो मेरे जैसा ही गा रहे थे, जैसा अगर मैं गाऊं तो गा सकूं। तो कोई फोन कॉल आया वहां और वो पूछने लगे कि भाई जो सिंगर हैं, मुझे इन पर कोई एतराज नहीं है, आई डोंट माइंड।
4: अच्छा,
0: मुझे ये बताइए इन्हें लाया कौन है।
4: और सही मायने में अगर खुशी वापस लाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हैं, तो ये 10 नंबर के फासले पर सब आपका इंतजार कर रही है। ये सारी हैप्पीनेस, अच्छे बाल, रीग्रोथ 6479608097।
0: बहुत शुक्रिया नवीन आपके टाइम के लिए। थैंक यू
5: सो मच फॉर हैविंग मी।
4: थैंक यू, प्लेजर।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
5: लवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। नंबर टू कॉल 416-303-3639 और डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स 23 मई से शुरू हो रहा है, बहुत कम सीट्स बची हैं और जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। ABC यानी कि शुरू से लेके आखिर तक आपको पूरा डिजिटल जो वर्ल्ड है उसकी जानकारी दी जाती है, आपको प्रोफेशनल बनाया जाता है। सिर्फ एक महीने का कोर्स है और उसमें भी आपको सिर्फ हफ्ते में दो दिन आना है, सैटरडे संडे 1 बजे से 6 बजे तक, और यानी कि पूरे महीने में 4 हफ्तों में सिर्फ 8 क्लासेस के जरिए आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। जिंदगी भर का एक प्रोफेशन, एक हुनर आपके साथ होगा। 416-303-3639। और आगे जाके शो में इस बारे में एक बार हम फिर से डिटेल बातचीत करेंगे। आमिर, एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी जिसमें कहा था कि आजकल की जो जिंदगी है उसमें मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा है। मल्टीटास्किंग सिर्फ मल्टीपल जॉब्स करने से ही नहीं होती है, अगर हम एक काम भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हमें ही देखनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से हमें एक एंग्जाइटी है, एंग्शियसनेस है, डिप्रेशन है, उसके हम शिकार हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारे एक मन पे, हमारे दिल पे एक बोझ हमेशा से रहता है। वी फील हैवी फ्रॉम इन साइड, उसकी जो रीज़न है वो हमेशा कोई मेडिकल रीज़न नहीं हो सकती है। मन का बोझ, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो ख्याल होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे मन का बोझ बढ़ाते हैं, हैवीनेस देते हैं। कहते हैं कि हम दिन भर में बहुत कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, कभी हमें किसी चीज़ों को लेके अपने फियर्स भी होते हैं, अपनी एंग्जाइटीज़ भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम जब सोचते हैं ना, तो इसका असर हमारे मन पर पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर एक्यूमुलेट होती हैं और हमारे मन को भारी बनाती हैं, हैवीनेस देती हैं। और सालों के एक्सपीरियंस ने एक्सपर्ट्स को सिखाया है कि जो विचारों का, जो थॉट्स का जो बोझ होता है, जो उसका बर्डन होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, लेकिन हम महसूस करते हैं। हम मुस्कुरा रहे होते हैं, अपना रेगुलर काम भी करते हैं, लेकिन भीतर एक हलचल सी मची रहती है, एंड देयर इज नो कामनेस इनसाइड अस। और कोई अधूरी बात, कोई पुराना दुख, किसी के साथ किसी ने कुछ ऐसी कड़वी बात कह दी हो, वो हमारे दिल पे ऐसी छाई रहती है, तो इससे हम बाहर भी नहीं निकल सकते। इसको कहते हैं कि दिल का बोझ है, लेकिन उससे सफ़र हम ही करते हैं। तो कहते हैं कि दिन में 15-20 मिनट आपको माइंड का क्लीन अप ज़रूर करना चाहिए। उसके रीज़न ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा वॉक पे चले जाइए, अपने आप से वक्त बिता लीजिए, सोशल सर्कल में रहिए, अपनों के साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि अपनों के साथ बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा बोझ लिए घूम रहे हैं, तो आपको अपना बोझ अपने आप कम लगने लगेगा। क्या कहना,
1: बहुत खूबसूरत बातें, और सुबह ही सुबह ऐसी ही बातें सुनने को बहुत जी करता है ताकि दिन बहुत शानदार और बड़ा तामीरी गुजरे। इस एतबार से मैं ये शामिल करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि डिप्रेशन, या अगर आपका मूड ख़राब है, आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें उदासियाँ बेसबब भी हो जाती हैं, ऐसे में एस्केपिज्म इज द बेस्ट थेरेपी कि आप सूरत हाल से एस्केप कर सकें। और एस्केपिज्म के लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका किताब है। ये जान लीजिए कि वो लोग जो किताब के दोस्त हैं वो कभी तन्हा नहीं रहते, और किताब कभी बेवफाई नहीं करती, किताब हमेशा आपके साथ रहती है। आप उसको पढ़ेंगे, आप उसमें खो जाएंगे और जिंदगी को, दुनिया को, ये जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आउटसाइड है उसको भूल जाएंगे। एक बार ये तजुर्बा करके देखिए, एक किताब जो किसी अच्छे मुसन्नफ की लिखी हुई किताब हो, सारी जिंदगी आपके साथ रहती है। उसमें लिखी हुई लाइनें, उसके जुमले, फिक्रे, लफ्ज आपको हमेशा याद रहते हैं और आप आउटसाइड वर्ल्ड को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। वो वसीउल मुतालिया होना, यानी आपकी रीडिंग का ज्यादा होना, सबसे अहम है आपकी जिंदगी में, आपकी जहनी सेहत के लिए और इवन आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आपके पास एक एक्टिविटी हो, एक इंटरेस्ट हो, आपकी कोई दिलचस्पी हो, आपको मजीद जानने की कशिश और एक जुस्तजू लगी रहे, ये बहुत ज़रूरी है।
5: बहुत
1: सही। और मुझे लगता है दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि आप फैक्चुअल कंटेंट देखें, ये बहुत ज़रूरी है।
5: अच्छा।
1: हम फिल्में देखते हैं, हम फीचर फिल्म्स देखते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई नई फिल्म आती है। आजकल तो खैर फिल्में भी वैसी ही हैं जैसे आजकल का दौर है, इधर आप देखते हैं उधर आपको भूल जाता है, यही समझ नहीं आता कि इसकी स्टोरी लाइन क्या थी भाई। तो फैक्चुअल कंटेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखें, मालूमाती फिल्में देखें, अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, ये सब आपको फैक्चुअल कंटेंट यानी उन फिल्मों से पता चलेगा जो हकीकत पर मबनी है। जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मालूमाती फिल्म्स, उनका देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप थोड़ी देर के लिए एस्केप कर जाएं अपनी मौजूदा सूरत हाल से।
5: बहुत सही कहा मेरा आपने, और डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि कई चीज़ें उससे अपने आप को अगर आप अलग कर लेते हैं ना, उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो हालांकि उससे ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप पॉजिटिव हो जाते हैं।
1: मसलन घर में जैसे बर्तनों का अंबार लगा है, आप थोड़ी देर के लिए अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें कि नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं धो रहा, मैं नहीं धो रहा, किसी सूरत नहीं धो रहा,
5: किसी 7-स्टार होटल की लॉबी को इमेजिन करने लगे
1: लेकिन ट्रस्ट मी वो बर्तन कम नहीं होंगे। घर में रहने वाला कोई शख्स आप पर रहम नहीं खाएगा, वो आपको ही धोने पड़ेंगे चाहे सिंक जितना भी भर जाए। तो इसलिए कुछ सिचुएशंस में तो एस्केपिज्म ठीक है, ये भी नहीं हो सकता कि बर्तन पड़े हुए आप किताब पढ़ने लगें, ये भी नहीं मुमकिन, उससे भी कि आपकी किताब फट सकती है आपसे कोई किताब छीन सकता है, आपको कोई धक्का दे सकता है, तो लिहाजा इस तरह के मामला जैसे घर में पहुंचा फेरना, ये भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा।
5: जो एस्केप सिचुएशन से भागने वाला जो बहुत अच्छा नुस्खा बताया, आई अग्री विद आमिर 100%, लेकिन अपनी बेटर हाफ जो है आपके आपकी बेटर हाफ या आपके बेटर हाफ जो
1: बेटर हाफ
5: बेटर हाफ
1: अच्छा बेटर हाफ आई थॉट यू सेड बेटर हाफ
5: नहीं बेटर
1: हाफ अच्छा बेटर हाफ ओके सॉरी मैं कभी कभी गलत सुन लेता हूँ
5: बेहतर बेहतर आधे
1: बेहतर आधे
5: तो जो आपके बेटर हाफ है उनके माइंड सेट देखते हुए अपने रिस्क पे ऐसा कीजिए एस्केप करने
1: का। अच्छा, ये बेटर हाफ ही हो सकता इससे बेहतर कोई मतलब डिग्री नहीं लग सकती,
5: नहीं उसको
1: बेस्ट हाफ नहीं हो सकता,
5: हो सकता है लेकिन आज के टाइम पे मैंने कहा कि बेस्ट हाफ जो है वो टू मच पॉजिटिविटी हो जाएगी, तो मैंने उसको बेहतर हाफ बताया।
1: मुझे लगता है कि ये मुहावरा बड़े बहुत से मुहावरे कह गए हैं, तो मुझे लगता है मेरा ख्याल है ये कि कुछ बीच में से गलत भी कह गए हैं, जैसे बेटर हाफ है तो ये ऑप्शन देना चाहिए था कि आप इसको गुड हाफ भी कह सकते हैं, प्लीज मीट माय गुड हाफ,
5: कुड बी बेटर हाफ कह सकते हैं
1: या प्लीज सी माय वुड बी बेटर हाफ, यू नो
5: प्लीज प्लीज मीट माय करंटली बेटर हाफ ऑन द वे टू बेस्ट हाफ,
1: ऑन द वे टू बेस्ट हाफ, आई लाइक दैट है
5: ना। लेकिन आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लाइफ जो है ना, लाइफ में ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए, हंसी मजाक होगा तो परेशानियां थोड़ी कम लगेगी। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है क्योंकि गाना जो मैंने लाइन अप किया है आपको भी शायद पसंद आएगा, सुरेश वाडकर का गाया हुआ है, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हरे गम को गले लगाया, आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और ज़रूरी हैं, ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में उनको दफनाना बाकी है।
1: वाह वाह।
5: कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है।
1: वाह।
5: तू आगे चल, मैं आता हूँ, क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा, इन सांसों पर रह हक जितना उनको समझाना बाकी है।
1: वाह। और अर्ज किया है कि हमें खबर है दुश्मन के सब ठिकानों की।
5: अच्छा।
1: हमें खबर है दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते।
5: क्या बात है, अमेजिंग।
1: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
5: 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
7: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रिफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584।
1: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
8: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
9: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
8: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
10: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ May 16-17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। May 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ।
11: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਲੇਕ ਰੋਡ ਕੈਲਟਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474-8-1000। 647-448-1000। ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ 2022@yahoo.com।

टीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।

0: नवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, चलते चलते थोड़ा सा टच बेस कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ चंद दिन बचे हैं डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। तो एक सिनॉप्सिस के तौर पर, एक समरी के तौर पर आप थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये कोर्स कितनी देर का है, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन।
1: वो लोग जो डिजिटल मीडिया में दिलचस्पी रखते हैं, साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि अगर फैक्चुअल कंटेंट यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस दिशा में, इस सिम्त, इस डायरेक्शन में निकलना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है। बेसिकली ओवरऑल आपने सिनॉप्सिस पूछा तो कॉन्टेंट प्रोडक्शन, विजुअल कॉन्टेंट प्रोडक्शन विद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
0: अच्छा,
1: सिंपल एज दैट कि आप जो कंटेंट बनाते हैं
0: जी,
1: उसे डिजिटल मीडिया पे प्रमोट कैसे करना है। देखिए, कंटेंट तो आज के दौर में मोबाइल फोन आपके पास है, वीडियो आप खुद भी बना लेंगे, किसी से कहेंगे वो आपकी अच्छी तस्वीर बना देगा, अच्छी वीडियो बना देगा,
0: सही,
1: सब कहानी खत्म। जो एक्चुअल मामला है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो उसे प्रमोट करना है, वो वायरल कैसे करनी है,
0: वो जरूरी है।
1: एक तो फ्रंट पे आप देख रहे होते हैं टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके पीछे एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं जो कि किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे अहम होते हैं। हम आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, प्लान बताते हैं, तरीका बताते हैं, ढंग बताते हैं कि आपने अपने कॉन्टेंट को वायरल कैसे करना है। कंटेंट बनाना भी सिखाते हैं और उसको वायरल करना भी सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि लोकल ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे, ग्लोबल ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स को कैसे टारगेट करेंगे, डिफरेंट जेंडर को कैसे टारगेट करेंगे
0: जी,
1: और डिफरेंट कम्युनिटीज को कैसे टारगेट किया जा सकता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: इसे कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। तीर ऐसे ही नहीं मारे जाएं बल्कि निशाने पर मारें, जो आपका निशाना है
0: जी।
1: तो वो हम आपको बताते हैं कि मेथडोलॉजी क्या होगी, वो स्ट्रेटजी जी, बिल्कुल
0: जी।
1: तो यहाँ नंबर है, आप भी इनरोल कराइए, दिन बहुत कम रह गए हैं, आज 12 तारीख हो गई है, 23 को ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, सैटरडे 1 टिल 6, संडे 1 टिल 6, 10 घंटे हफ्ते के और महीने के 40 घंटे होंगे। ये नंबर रहेगा 416-303-3639। मैं दोबारा बता रहा हूं, नंबर नोट कर लीजिए और डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन के कोर्स में इनरोल कराइए। 40 घंटे आपकी जिंदगी बदलेंगे, ये उम्र भर का स्किल होगा। 416-303-3639
0: जी। आमिर कहते हैं कि जब मैं छोटा था, गुलजार साहब लिखते हैं, जब मैं छोटा था शायद दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी, जब मैं छोटा था तो दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे घर से स्कूल का वो रास्ता, क्या क्या नहीं था वहाँ,
1: वाह,
0: चाट के ठेले, जलेबी की दुकानें, बर्फ के गोले, सब कुछ। अब वहाँ मोबाइल शॉप है, वीडियो पार्लर है, फिर भी सब सुना है, शायद अब दुनिया सिमट रही है। पहले कुछ भी नहीं था लेकिन सुनापन नहीं था, अब सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन है
1: जी।
0: जब मैं छोटा था शायद शामें बहुत लंबी हुआ करती थी, मैं हाथ में पतंग की डोर लिए घंटों उड़ा करता था, वो लंबी साइकिल रेस, वो बचपन के खेल, वो हर शाम थक कर चूर हो जाना। अब शाम नहीं होती, दिन ढलता है और सीधे रात हो जाती है।
1: वाह,
0: शायद वक्त सिमट रहा है। जब मैं छोटा था शायद

0: दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। दिन भर वो हुजूम बनाकर खेलना, वो दोस्तों के घर का खाना, वो लड़कियों की बातें, वो साथ में रोना। अब भी दोस्त हैं पर दोस्ती जाने कहाँ चली गई।
1: अरे अरे,
0: जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर मिलते हैं बस हलो हाय हो जाती है और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। होली, दिवाली, ईद, नए साल पर SMS आ जाते हैं, शायद अब रिश्ते बदल रहे हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: जब मैं छोटा था खेल भी बड़े अजीब हुआ करते थे, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, टिप्पी टिप्पी टॉप, और अब इंटरनेट, ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: अरे अरे।
0: शायद जिंदगी बदल रही है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है जो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि मंजिल तो यही थी, बस जिंदगी गुजर गई मेरी यहाँ आते आते।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो जिंदगी का लम्हा बहुत छोटा सा है, कल की कोई बुनियाद नहीं है और आने वाला कल सिर्फ सपने में है। अब बच गए आज के पल, सो तमन्नाओं से भरी इस जिंदगी में हम सिर्फ भाग रहे हैं। और आखिर में गुलजार साहब लिखते हैं, कुछ रफ्तार धीमी करो मेरे दोस्त और जिंदगी को जियो, खूब जियो, खुल के जियो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत पैगाम गुलजार का, और गुलजार की तहरीर में एक जान होती है, उसमें मानी होते हैं और हर मानी के कई रंग होते हैं, कई जाविये होते हैं, हर बात के पीछे पूरा एक पस मंजर होता है, और किसी मुसन्निफ के लिए यही सबसे बड़ी सलाहियत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ये ख्यालात हमारे साथ बांटने के लिए। सुन रहे हैं आप लवी डवी शो, आपका हमारा ताल्लुक जुड़ा रहेगा 11 बजे तक।
0: 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
5: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
6: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शियाटिका पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कत हो या मसला बेऔलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शियाटिका पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
7: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
8: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
7: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
9: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
10: आमिर, ये जो सिनेमा में, अगर हम सिनेमा की बात करें तो बहुत सारी फिल्में आईं, कुछ कॉमेडी के लिहाज से बड़ी पॉपुलर रहीं, कुछ ट्रेजेडी के लिहाज से बड़ी पॉपुलर रहीं, कुछ ऐसी कल्ट मूवीज़ बन गईं जो आज भी अच्छे सिनेमा के तौर पर जानी जाती हैं। मसलन मदर इंडिया, मुगले आज़म, पाकीज़ा और शोले, और फिर या फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ऐसे ही एक मूवी आई थी काजल, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। इसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी थे और राजकुमार थे, और धर्मेंद्र और मीना कुमारी हीरो हीरोइन के तौर पर इतना आए, सुनते थे आपस में भी, इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। लेकिन इसमें मीना कुमारी जो थी वो एक फैमिली, एक वेल्दी फैमिली की गोद ली हुई बच्ची थी, और उस फैमिली के जो वारिस थे वो धर्मेंद्र थे। तो उनकी एक मुँह बोली बहन थी उस मूवी में, और मीना कुमारी के हस्बैंड राजकुमार थे। तो वो बड़े अच्छी फिल्म थी, और उसका एक गाना है रफ़ी साहब का गाया हुआ। रफ़ी साहब ने कभी भी ड्रिंक्स नहीं ली, लेकिन वो जब गाना गाते थे, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी के होते हुए भजन उन्होंने गाए हैं, कव्वालियाँ गाई हैं, रोमांटिक गाने गाए हैं, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल घुस गए हैं उस चीज़ में। और जब ड्रिंक के बारे में वो बयां करते थे तो एक एक लफ्ज ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड होके वो गाना गा रहे हैं।
11: गाना गाया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरी आज़ाद कोशिश रहती है कि 80s को भी शामिल किया जाए, 70s को भी शामिल रखा जाए, और फिर पोस्ट 90s भी शामिल रहें। लेकिन आप कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों का नाम नहीं ले पाए अपने इस क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म्स में। आपने शोले का नाम भी लिया, लेकिन आपने उस फिल्म का नाम क्यों नहीं लिया जिसको देख के लोगों ने मोहब्बत के मानी सीखे हैं, फूल और कांटे
10: क्या?
11: आपने उस फिल्म का नाम नहीं लिया, यू नो, फिर आपने जमाने के देखे हैं रंग हजार नहीं कुछ सिवा प्यार के, सड़क का नाम नहीं लिया,
10: नहीं, मैंने आप पर छोड़ दिया।
11: अरे ऐसे कैसे चलेगा
10: शिवानी, आप जैसी हस्ती को ध्यान में रखते हुए ये सारे मोहब्बत के गाने, मोहब्बत की फिल्में,
11: दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान, पूजा भट्ट, उसका नाम क्यों नहीं लिया? मुझे एतराज है बहुत बड़ा आज सुबह सुबह आपसे, कैसे कैसे हो सकता,
10: ऋषि कपूर की फिल्मों का नाम
11: सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, उसका नाम क्यों नहीं लिया?
10: छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ,
11: साथी मरते दम तक, हाँ वो आपके आ जाने से वो गोविंदा कहाँ गया, वो फरा कहाँ गई, आपने तो सारा कुछ इधर उधर बिखरा
10: दिया, उन्हें हम कल लाएंगे।
11: अच्छा पक्की बात है, ये वादा है, देख लीजिए आज का काल काम आपने पहले कल पे छोड़ा है, आपने 80s की फिल्में आज बता दी, 90s की कल बताएंगे, मेरा काम हमेशा पेंडिंग रहता है।
10: आपने ये गाना 60s का है वैसे जो मैं प्ले करने वाली हूँ। मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल कर ले तो मैं ये झटका दूँ आपको। अमजद इस्लाम अमजद साहब अब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के ड्रामास की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने लिखे हैं उसमें, उनके टाइटल ट्रैक्स लिखते हैं, खुद अपने लिए बैठ के सोचेंगे किसी दिन, यूं है कि तुझे भूल के देखेंगे,
11: वाह वाह वाह,
10: भटके हुए फिरते हैं कई लफ्ज़ जो दिल में, दुनिया ने दिया वक्त तो लिखेंगे किसी दिन, आपस की किसी बात का मिलता ही नहीं वक्त, आपस की किसी बात का मिलता ही नहीं वक्त,
11: नहीं वक्त,
10: हर बात पे कहते हैं कि बैठेंगे किसी दिन,
11: वाह
10: ए जान तेरी याद के बेनाम परिंदे, शाखों पे मेरी दर्द की उतरेंगे किसी दिन,
11: उतरेंगे किसी दिन,
10: जाती है किसी झील की गहराई कहाँ तक, आंखों में तेरी डूब के देखेंगे किसी दिन।
11: मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है।
10: क्या बात है,
11: मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए।
10: क्या बात है।

0: भाई इतना खूबसूरत सा मौसम हो, आपका साथ हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। और अब देखिए ना कहाँ हम अभी आपसे ग्रीटिंग्स कर रहे थे और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, लेकिन इस वादे के साथ कि कल होती है आपसे फिर मुलाकात। हमसे अब रबते का नंबर है 416-303-3639 और आमिर और शिवानी आपसे मिलेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
1: यहाँ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है इस पैगाम के साथ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, कुछ ऐसा जो इंसानियत की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, नेकी के लिए कारगर साबित हो। याद रखिए, अपने लिए जीना जिंदगी नहीं है, जीवन को बिताने का सबसे बेहतरीन ढंग और रंग यह है कि आप दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर जाइए जो नस्ल दर नस्ल उनके लिए साजगार और मुफीद साबित हो। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वेयर योर कार गेट्स अ केयर.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: क्या पिक राबू ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स It deserves.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहाँ न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। बाहर का तापमान हो चुका है 12 डिग्री सेल्सियस, इट्स गोइंग टू रिमेन अराउंड 12-13, रेन पॉसिबल आफ्टर 6 PM, एंड यूवी इज हाई, इंक्रीज फ्रॉम यस्टरडे, और ट्री पोलन डिक्रीजिंग टुमारो, एंड सनसेट होगा 8:33 पर, 8:33 PM, एंड देन रेन स्टार्टिंग ऑल द वे गोइंग इनटू टुमारो अर्ली आफ्टरनून। 15 डिग्री कल मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, मिनिमम 7, एंड थर्सडे 13 एंड 7, एंड देन नाइस वार्म वेदर रिटर्निंग फॉर दिस लॉन्ग विक्टोरिया डे वीकेंड। एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। एंड देवा देवा ब्यूटिफुल गीत से हमने दिन की शुरुआत की है, ब्रह्मास्त्र का गीत है, एंड अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्मायन रणबीर कपूर, एंड 12:15 की हमारी हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है, और इसके अलावा स्पॉन्सर्स के मैसेजेस एंड आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट। वी विल प्ले ऑल द सॉन्ग रिक्वेस्ट ऑल द वे टिल 2 PM। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। और बहुत ही एक अजीब सी चीज़ हुई है, हम इंसानों को, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने बड़ी अजीबोगरीब खोपड़ी दी है, और उस खोपड़ी में कई बार हम जो चीज़ें सोचते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वी कम टू अ कंक्लूजन, वी हैव अ परसेप्शन, वी ऑल डू, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन कई बार परसेप्शन जो है वो इतना इम्परफेक्ट होता है, इतना गलत होता है, इतना बायस्ड होता है कि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। I had a friend last week, एक friend और हम लोग बैठे हुए थे, 4-5 दोस्त, और उसमें से एक दोस्त ने कहा कि यार आपने नोटिस किया है कि हाल ही में जब से मोदी सरकार इंडिया में आई है, विच इज़ 2014, जब से PM मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऑल द थ्री खान्स देयर करियर्स आर नॉट डूइंग वेल, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान इज़ वॉट ही वॉज गेटिंग एट। दैट वॉज द सबसे दुनिया की अजीबो गरीब चीज़ सुनने को मुझे मिली कि PM मोदी की वजह से खान्स के करियर बॉलीवुड में अच्छे नहीं चल रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ, इसे कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने आपको एक दिमाग दिया है, एक खोपड़ी दी है, और उसमें बहुत ही अजीब से विचार आप खुद लेकर आते हैं एंड पता नहीं मैनिफेस्ट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू डू, बट दिस वाज द फनीएस्ट थिंग दैट आई हर्ड। और हेडलाइंस के बाद आई वुड लाइक टू टेक कपल ऑफ कॉल्स एंड सी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि खान्स के करियर इसलिए इतने अच्छे नहीं चल रहे क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर है भारत के। माय गॉड, आई थिंक एक पत्ता भी जो है वो शायद, जैसे कहते हैं कि ऊपर वाले के दुआ के बिना पत्ता नहीं हिलता, मुझे लगता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इन इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ BJP एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह। सो इट इज़ रियली रियली फनी, वन ऑफ फनीएस्ट थिंग्स दैट आई हैव हर्ड। एंड आगे चलकर 416-593-0055 पे आपकी कॉल्स भी लूंगा। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। ओके, कुछ मैसेजेस आपके ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं इस फनी सी बात को लेकर, बट मैसेज ना भेजें, हेडलाइंस के बाद आप कॉल कर सकते हैं 416-593-0055 पे आप कर सकते हैं कॉल, और फिर आपकी कुछ कॉल्स को ऑन एयर जरूर करेंगे। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन, जॉर्जटाउन, 2 लोकेशन से सर्व करते हैं। नेम ब्रांड सनग्लासेस पर भारी सेल चल रही है, और आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर इज अवेलेबल 7 days a week। यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा पर 905-457-3232 पर आप कर सकते हैं कॉल। एंड यहाँ पे बहुत ही एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, 12:15 की हमारी हेडलाइंस बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाय डॉन वैली नॉर्थ हांडे।
1: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी, 647-863-1940, 647-863-1940।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
1: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
6: 10 meter, बस इतना को याद रखो. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰੱਖੋ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ. ESASafe.com/stop-look-live ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com। Woodbine Ave और Denison Street, Park Cooper,
3: doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.
4: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
5: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, Brampton TV and Appliances, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care, Win Lifetime Training. शुरू करते हैं ताज़ा तरीन headlines. California के Arcadia की mayor ने guilty plead किया to acting as Chinese propaganda agent. Tehran ने weapon grade uranium enrichment warning दी if US attacks Iran again. Saudi Aramco chief ने कहा global energy shock from Iran war may extend till 2027. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेज ने हायर ऑयल प्राइसेस को हवा दी है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए मेजर टेस्ट साबित होगा। मल्टीपल ग्लोबल पावर्स के साथ स्ट्रेटजी को मेंटेन करना एक बड़ा टेस्ट होगा फॉर न्यू दिल्ली। ट्रंप के अनुसार चाइना ट्रिप के दौरान ट्रंप टू डिस्कस यूएस आर्म सेल्स टू ताइवान, और ईरान वॉर को देखते हुए ट्रंप प्लान्स यूएस गैस टैक्स कट। यूएस फेडरल टैक्सेस ऑन गैसोलीन अमाउंट टू 18.4 सेंट्स पर गैलन। ट्रंप ने तेहरान प्रपोजल को डिसमिस करते हुए कहा ईरान सीज फायर इज ऑन लाइफ सपोर्ट राइट नाउ। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान ट्रंप को शूट करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति ने नॉट गिल्टी प्लीड किया। एंड की चाइना टूर के लिए इलॉन मस्क और टिम कुक टू बी पार्ट ऑफ टीम ट्रंप। पोल के अनुसार 66% से ट्रंप हैज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड Iran war goals. Local samacharon mein, Toronto seeing an explosion of pollen this allergy season. $86,000 bank fraud mein accused pati patni Brampton se hain. Ontario pharmacist now allowed to treat 9 conditions. Line 6 closed this Victoria Day weekend for upgrades. Ontario emergency rooms ke wait times have spiked over past 5 years. Ontario nurses ne lack of right to strike par constitutional ko challenge launch kiya. Dusri aur more than 200 admin jobs will be cut at Toronto District School Board. भारतीय समाचारों में पीएम मोदी की ऑस्टेरिटी अपील को लेकर महाराष्ट्र ऑपोजिशन डिमांड्स ऑल पार्टी मीटिंग। अडानी पोर्ट्स ने ओशनियरिंग के साथ पार्टनर किया टू एक्सपैंड ऑफशोर ऑपरेशंस इन यूरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फॉर्मर बंगाल मिनिस्टर सुजीत बोस को अरेस्ट किया गया। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर अरेस्ट ऑफ अ टीएमसी लीडर सिंस सुवेंदु अधिकारी लेड बीजेपी गवर्नमेंट टुक चार्ज। एन रंगास्वामी टू टेक ओथ एज पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर ऑन वेंसडे। और छत्तीसगढ़ में वाटरमेलन के खाने से 15 साल के लड़के की मौत हुई, 3 बच्चे भी हुए बीमार। बंगाल के टॉप पोल ऑफिशियल नाउ चीफ सेक्रेटरी टीएमसी ने कहा दिस इज एब्सोल्युटली शेमलेस, शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC ST एक्ट अकेला प्री अरेस्ट बेल को ब्लॉक नहीं कर सकता। गौतम अडानी का कहना है कि अडानी ग्रुप बिल्डिंग फिजिकल फाउंडेशन फॉर इंडियाज क्लीन फ्यूचर फ्रॉम ग्रीन एनर्जी टू डेटा सेंटर्स। और ममता बैनर्जी की यूनिटी कॉल के बाद बीजेपी ने कहा ममता की टीएमसी का मकसद है टू रिवाइव माओइस्ट्स एंड शी will bring Maoists in the name of unity. पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के कजन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी के ऑफिसर्स और वर्कर्स पर हुए हमले को कंडेम भी किया। स्टेट बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने दी वार्निंग, बोले एवरीवन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। रिकी पंडित वो एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने टीवी के की जीत को प्रिडिक्ट किया था, हैज नाउ बिकम चीफ मिनिस्टर विजय एडवाइजर। दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से कराची की वुमेन ड्रग पेडलर पिंकी को अदालत में बिना हैंडकफ्स के पेश किया गया, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। सिक्योरिटी के सूत्रों ने कहा कोहट के पास सुसाइड बॉम्बिंग अटेम्प्ट को नाकाम करने वाला सिटीजन हुआ शहीद। सेंसिटिव चेक पॉइंट और सिविलियंस पर होने वाले अटैक को सिटीजन ने प्रिवेंट किया था। सिटीजन ने अटैकर से उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगी थी। बहस के दौरान अटैकर ब्लू हिमसेल्फ अप। पीएम शरीफ के साथ मीटिंग के दौरान जरदारी ने आवाम के लिए रिलीफ की गुहार लगाई, एसेंशियल कमोडिटीज की अवेलेबिलिटी की मांग उठाई। दोनों लीडर्स ने रीजनल सिचुएशन और अफगान मुद्दे पर की चर्चा। टीआरजी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में जिया चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट बैटल जीता। सिंध हाईकोर्ट ने रूलिंग दी थी कि टीआरजी पाकिस्तान मैनेजमेंट एक्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड इलीगली। दूसरी ओर यूएस ईरान डेडलॉक को देखते हुए पाकिस्तान ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को जून 13 तक के लिए एक्सटेंड किया। ऑफिशियल व्हीकल्स पर 50% रिडक्शन इन फ्यूल सप्लाई बरकरार रहेगा ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड। और केपी के लकी मरवत में बम धमाके से 9 लोग मारे गए, अब तक 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शहीद हुए। नो ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बॉम्बिंग। और कराची ट्रैक तैयार है टू होस्ट नाइट कार रेसेस अंडर फ्लड लाइट्स। स्पोर्ट्स जगत से पाकिस्तान के स्टार नुमान अली ने 130 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिफोर टीम स्लम्स टू हिस्टोरिक लॉस वर्सेस बांग्लादेश। आफ्टर मेकिंग हिज डेब्यू एट द एज ऑफ 34, नुमान अली हैज बिकम द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड टू रीच 100 टेस्ट विकेट्स। पंजाब किंग्स के फोर्थ लॉस का फायदा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को हो सकता है। इरफान पठान का कहना है कि आईपीएल में कुलदीप यादव की पुअर फॉर्म इज अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न। एंड फोर्थ कंसेक्यूटिव लॉस के बाद पंजाब किंग्स के स्किपर श्रेयस अय्यर थ्रोज बोलर्स अंडर द बस। बॉलीवुड खबरों से सिस्टर ईशा डेओल के इंटीरियर ब्रांड लॉन्च को बॉबी डेओल का शाउटआउट मिला। सलीना जेटली ने पति पीटर हैग पर इल्जाम लगाया और मैनिपुलेटिंग लॉज टू कीप हर सन्स अवे और कहा आई एम एब्सोल्युटली डेविस्टेटेड। अक्षय कुमार और डायरेक्टर अनीस बज्मी अपनी फैमिली कॉमेडी को लेकर 4 दिसंबर 2026 को बॉक्स ऑफिस पर देंगे दस्तक। अक्की इस बार विद्या बलन के साथ रीयूनाइट करेंगे। जैकलिन फर्नांडिस को लगा झटका एज ईडी अपोजेस हर प्ली टू बिकम अप्रूवर इन द 200 करोड़ रुपी मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू सुकेश चंद्रशेखर। और संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल के प्रोड्यूसर्स ने प्लान बनाया दिल्ली प्रीमियर ऑन May 13th। पॉलिटिशियंस और टॉप डिग्निटरीज एक्सपेक्टेड टू अटेंड। एंड डिवोर्स रूमर्स के बीच मौनी रॉय डिलीट्स पिक्चर्स विद हस्बैंड। सूरज नाम्बिया डीएक्टिवेट्स हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि खान्स शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान का करियर खराब हो गया है बिकॉज PM मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा कुछ होता है? आई वॉज टोल्ड बाई अ फ्रेंड ऑफ माइंड दिस इज़ वॉट ही फील्स एंड इट वॉज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग जो मैंने एक डेकेड में शायद सुनी है कि एक्टर्स के करियर खराब हो रहे हैं क्योंकि देर इज़ अ सर्टन पर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे कैसे होता है आई डोंट गेट इट, बट अगर आपको समझ आता है तो बताइए। पहले कॉलर को लेते, आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ गो अहेड।
3: हेलो, हाय सनी, रोनी बात कर रहा हूँ, क्या हाल है, कैसे हो?
5: जी जी ठीक है, आप सुनाइए।
3: अच्छा, ये मैंने बात करनी, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना इसने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया, तो ये बात किस चीज के लिए कर रहा है
5: भाई? आपको पता ही है किस चीज के लिए वो कर रहा है?
3: या किस लिए कर रहा है? लाइक ही फिनिश एवरीथिंग, इसने सब कुछ उड़ा दिया, खत्म कर दिया, तो ये किस लिए बात कर रहा है?
5: नहीं, पर ऑयल तो खत्म नहीं किया ना, हॉर्मोन्स को लेकर तो जो ब्लॉकेड चल रही है वो दोनों तरफ से अब चल रही है।
3: नहीं, वो कह रहा मैंने फिनिश कर दिया।
5: नहीं, उसके कहने से तो क्या होता है, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, दिन भर कहते ही रहते हैं।
3: क्योंकि हमें पे करना पड़ रहा है ना, हम पे कर रहे हैं इस बंदे की वजह से, इसलिए हमें, हमारा हक है बात करने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर इसने सब कुछ खत्म किया तो फिर ये बात किस चीज के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है?
5: True, I agree with you. And not only हम पे कर रहे हैं, उनकी खुद की जनता पे कर रही है। $5 से ऊपर गैलन गैस का प्राइस हो गया है, so I guess every US citizen is also paying for the crazy decisions of a president.
3: और एक बात ये है, USA citizen वाले ने इसको वोट दिया है, ठीक है ना, वो लोग चुप बैठे हुए हैं, उनको चाहिए उठ के इस बंदे को उल्टा लटका के मारो, क्योंकि इसको वोट इसलिए दिया था, इसलिए दिया कि ये लड़ेगा नहीं किसी से पंगा नहीं लेगा। ये आया था सिर्फ माफी मांगने के लिए, 10 सेट। अगर मेरा बस चले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डाल दूं, ये मेरा है भाई, इसकी वजह से मैं पे कर रहा हूँ।
5: ठीक है जी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड दिस फ्रस्ट्रेशन. हर इंसान के दिमाग में यही फ्रस्ट्रेशन है, हर कोई यही कंप्लेंट कर रहा है, पर सबके हाथ बंधे हुए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अगले कॉलर को लेते हैं. पुनीत जी, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
6: Yeah, about this Khan actors, right?
5: Yeah, I had a friend who told me last week ki Shah Rukh Khan, Aamir, Salman ke careers are not doing well for the last few years is because of PM Modi. Do you find this funny, ridiculous, or do you find there is some fact behind it?
6: Yeah, actually, you know, it's ridiculous, you know, because Prime Minister Modi has been he has been liking this Khan actors for quite some time. He has even invited them to Prime Minister's office.
5: Yeah.
6: As long as I know.
5: So you know, you don't think is baat mein koi dam hai?
6: I don't think so.
5: Theek hai, Puneet ji. And agle ko, Ragini ji, aap on air hain, please go ahead.
7: हाँ नमस्कार सनी जी, मैं सुन रही थी और ये सही में बहुत ही फनी और रिडिकुलस है कि कोई ये कहे कि हमारा कैरियर मोदी जी के साथ नहीं चल रहा.
5: नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, वो खान्स ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है. आई हैड अ फ्रेंड हु हैड एन ऑब्जर्वेशन और वो फ्रेंड मुझे कह रहा है कि यार तुमने नोटिस किया है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने खान्स के करियर अच्छे नहीं कर रहे हैं. तो दैट वॉज आई थॉट वॉज अ वेरी स्टूपिड ऑब्जर्वेशन जो मेरे फ्रेंड की थी.
7: हाँ ये तो सचमुच में बहुत ही स्टूपिड ऑब्जर्वेशन तो है, पर ये भी सच है कि कुछ दिनों से खान जो है इनका कुछ ज्यादा अच्छी फिल्में आ भी नहीं रही हैं और वो सही में ठीक नहीं करे. भले ही वो उनका मोदी जी से कोई लिंक नहीं है, पर एक्चुअली क्या है कि वो दर्शकों की पसंद ही बदल गई है अब.
5: हाँ ये बात भी सही है, मैं तो यही मानता हूँ.
7: हाँ जी, और अब आजकल का जो व्यूअर्स हैं, पिक्चर देखने वाले हैं, जो सिनेमा को पसंद करते हैं, उनको भी एक नया विषय चाहिए, नई कहानी चाहिए, तो ये सब कुछ आज उनकी फिल्मों में नहीं मिल रहा है और सिर्फ नाम से अब आजकल फिल्में नहीं चलती हैं.
5: जी आपको लगता है रागिनी जी मे बी एज फैक्टर इज ऑल्सो प्लेइंग, बिकॉज ये तो बच्चन साहब के साथ भी हुआ ही था एक समय जब उनको स्विच करना पड़ा था टू ओल्डर रोल्स.
7: वो भी सच है, और फिर उसके बाद क्या है कि अब आजकल OTT और सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा आ चुका है कि पसंद जो वो है दर्शक है वो थोड़े स्विच हो गए हैं, फिल्मों से इस ओर भी हो गए हैं और इन लोगों की एज भी काफी हो गई है. अब तो अब जिस तरह से वो हीरो बन के आते हैं नई लड़कियों के साथ में तो वो सूट भी नहीं करता है.
5: बिल्कुल सही बात है, एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट ऑल दीज ओल्डर अब सुपरस्टार्स आर डूइंग. एंड I think ये एक strategy हर एक नहीं की है, but you're right that could be also a big reason कि film making overall is changing और OTT पर बहुत content है जो देखने को मिलता है. बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी, अगले caller को लेते हैं, आप on air हैं, please go ahead.
8: जी सनी जी, ये reality है
5: जी,
8: जो अभी हालात चल रही है 5-10 साल से, ये reality है, हमको accept करना पड़ेगा. इसमें मोदी का कोई फॉल्ट नहीं है, उसके पीछे वो तो क्या बोलते हैं नाच रहा है, उसके पीछे जो नचाने वाले हैं वो पूरा कलर जो चल रहा है इंडिया में मुसलमानों को जिस तरह से दबाया जा रहा है. देखो आप क्रिकेट में देखो, आप मिनिस्ट्री में देखो, आप कितने मुसलमान है, आप क्रिकेट में देखो कितने सालों से एक खाली बॉलर को खिलाते हैं या कभी कभी तो खिलाते भी नहीं है.
5: नहीं, क्रिकेट में तो हमारे मोहम्मद शामी हैं, मोहम्मद सिराज हैं.
8: मैं बोल रहा हूँ ना, एक बंदे को खिलाते हैं फिर भी कितनी बार खिलाते, कितनी बार तो वो बिठाते हैं बार.
5: मुझे लगता है बिठाने वाली बात तो देखिए, अब श्रिया शैयर के साथ कौन सा गलत हो रहा है.
8: 30 करोड़ मुस्लिम में क्या उनको एक बैट्समैन नहीं मिल रहा जो उसको नेशनल टीम में खिलाए.
5: I think this is ये absolute scrutiny करने वाली बात कई बार हो जाती है. अगर आपको नहीं लगता कि अगर आमिर खान की पिछली कुछ फिल्में कामयाब नहीं हुई हैं, अगर उनकी थग्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज अ पैथेटिक फिल्म, अगर उनकी ये जो एक फिल्म आई थी उनकी फॉरेस्ट गंप पे इंस्पायर्ड फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा,
8: समझ गए आपकी हर बार हर किसी की
5: हर चीज में मोदी को ब्लेम करना भी तो गलत होगा क्या. नहीं,
8: नहीं, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे जो चल रहे हैं ना, जो चला रहे उसको जो नचा रहे उसकी बात कर रहा हूँ. ये तो कठपुतली है, उसके पीछे जो बैठे हुए है,
5: अच्छा,
8: जो पूरा भारत को जो एक तरफ करना चाहते है, राइट, तो उसकी वजह वही वजह है. और जो
5: मतलब सेकुलर भारत को कुछ और भारत बनाना चाहते हैं.
8: अभी मिनिस्ट्री में देखो आप कौन कितने मुसलमान है, मिनिस्ट्री में देखो आप
5: जी,
8: गवर्नमेंट में देखो कितने मुसलमान बैठे हुए हैं.
5: ठीक है जी, चलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो
8: पूरा प्लानिंग से हो रहा है मुसलमानों को दबाने के लिए, लेकिन ये
5: नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में सब मुसलमान ही है, सो वैसी बात नहीं होती कोई की
8: वोट एक नंबर का, वो क्या बोलते हैं, मैं बोलूंगा तो लोगों को खराब लगेगा, वो तो वो सेकंड बीजेपी का बनना है वो।
5: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर को लेते हैं। अनवर जी आप ऑनर हैं, प्लीज गो अहेड।
9: हेलो सर, कैसे हैं
5: जी? फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए।
9: सर जी पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, धागा उसके साथ मिलकर काम करो मोदी के साथ तो आपको कुछ नहीं होगा।
5: तो आपकी हिट फिल्में होंगी।
9: सलमान खान है, सलमान खान जेल में होता है, बाहर क्यों है? मोदी की वजह से, क्योंकि इससे रिश्ता रखा है मोदी के साथ, राइट? तो रिश्ते के हिसाब से रिश्ते, अमेरिका का रिश्ता बिगड़ बीच में बिगड़ गया था, याद है उसका बेटे को भी प्रॉब्लम सब कुछ।
5: अच्छा, मतलब आर्यन खान जो ड्रग केस में फंसा था वो भी मोदी ने फंसाया था?
9: मोदी ने नहीं फंसाया, फंसाने का नहीं बात कर रहा, मोदी का नाम नहीं
5: ले रहा। अच्छा,
9: पॉलिटिक्स हो
5: रहा, पॉलिटिक्स ने फंसा दिया। ठीक है जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी सोच है। अगले कॉलर को लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
10: हेलो
5: जी, जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
10: हेलो नमस्ते सनी जी, कैसे हैं आप?
5: नमस्ते जी, फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए।
10: बहुत ही फनी टॉपिक है ये, बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जो खराब होता है लोगों के दिमाग में बस मोदी जी को ब्लेम करने का लगा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले आई डोंट नो मोस्टली सभी ने शायद देखा भी होगा और सुना भी होगा, आई थिंक वो जो अभी जो मेट्रोपॉलिटन मेट्रो ट्रेन जो चल रहा है, आई थिंक इट वॉज इन मध्य प्रदेश और उदय मध्य प्रदेश या कहीं से जा रहा था, इट वॉज लाइक समथिंग आई कुड बी रॉन्ग फॉर द स्टेट, बट मैंने कहीं भी पढ़ा कि लाइक यू नो इट वॉज सपोज टू टेक 6 hours by train and now with the cut short of highway and everything, they are going to reach in like couple of hours, like 4 hours.
5: Yes.
10: जो आम जनता है दे आर सेइंग कि भाई बाकी के घंटे हम लोग क्या करें, अभी मोदी ने ऐसे किया है तो हम लोग बाकी के घंटे जो हमारा जो ट्रेन में सफर होने वाला था उसका हम क्या करें। अरे ये भी क्या मोदी जी आके बताए क्या
5: कहीं ऐसा तो नहीं है?
10: अगर आपका टाइम सेव हो कर रहा है तो फिर ये कैसे कैसे लोग बात करते। अगर मैं आपकी जो टॉपिक है के खान का नहीं चल रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, दे डोंट हैव एनी गुड स्टोरी लाइन, देयर इज नो गुड प्लॉट। घुमा फिरा के आप स्पाई का कर रहे हो, घुमा फिरा के आप क्या बोलते हैं बायोपिक्स बना रहे हो, उसके अलावा भी तो आप सोचो, अगर आप मलयालम मूवीज को देखो दे आर नॉट बिग बजट फिल्म मेकिंग,
5: बिल्कुल,
10: बट देयर स्टोरी इज आउटस्टैंडिंग।
5: जी जी, कहीं हैंटा वायरस के पीछे भी तो मोदी का हाथ नहीं है?
10: सॉरी,
5: मैंने कहा कि ये जो अभी नया वायरस हैंटा वायरस क्रूज पे आया है, कोई कह दे कि इसके पीछे भी मोदी का हाथ है?
10: मोदी को ब्लेम कर, अच्छा करे तो भी मोदी खाए, अगर खराब करे तो है ही मोदी का खराब, बिकॉज ही इज लाइक ही इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट सेक्युलर, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द सेक्युलर पीपल, तो करे तो बनगा करे क्या, लाइक यू नो लाइक एज सिंपल एज एक जगह जाने का, एक ए टू बी पहुंचने में अगर आपको 10 घंटे लगते थे उसका आप कट डाउन करके 5 या 6 घंटे करते हो, तो लोग आके ऐसे पूछते हो आप लोग कि भाई बाकी के 4 घंटे हम करें क्या?
5: बिल्कुल बिल्कुल, आई गेट योर पॉइंट,
10: लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इट इज, पार्डन माय लैंग्वेज, बट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टुपिड लॉजिक इज दिस।
5: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपने कई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाया है। एंड कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज से, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंसान ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई और कहीं और मार्स या किसी और प्लैनेट से आए, उनसे कई गलत पॉलिसीज हो जाती है। अब यहाँ पे डग फोर्ड को ही आप देख लें, 28.9 मिलियन का प्लेन लिया, फिर उसके बाद फ्लिप फ्लॉप हुआ, पब्लिक आउटक्राई हुई, फिर उन्होंने कहा भैया बेच दिया है, अब कल एनडीपी लीडर मारिट स्टाइल्स कह रही है कि भैया बेचा है तो उसका प्रूफ दिखाओ, वो प्रूफ नहीं दिखा रहे, सो ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ कीप्स हैपनिंग एंड कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की, कुछ बुरी होती हैं, बट अगर हमारी अपनी सोच सिर्फ और सिर्फ बायस्ड हो एक चीज़ को लेकर, तो फिर हर चीज़ ही हमें, ट्रंप की कई चीज़ों के बारे में हम खुलकर बात करते हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द लिसनर्स ऑल्सो अग्री करते हैं कि भाई वो बंदे का कुछ नहीं पता होता, सुबह उठ के वो क्या बोलेगा क्या करेगा उसको खुद भी पता है नहीं पता है, बट देयर कुड बी सम थिंग्स that he's doing right, some things. अब हम उसे भी नहीं देखना चाहते तो फिर वो दूसरी बात है. आखिरी कॉलर को लेते हैं, we'll wrap it up right here. देव जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
11: हाँ मेरा

0: बहुत सारे लोग जैसे अमिताभ बच्चन भी बहुत सारे डिप्रेस में चले गए थे, उनकी भी फिल्में नहीं चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि खान तो उस टाइम पर वो राजीव गांधी वगैरह थे कि ब्लेम के कर सकते हम उसको, राइट?
1: हाँ सही बात है आपकी, मतलब दे डिड गुड फिल्म्स, पीपल लाइक्ड इट।
0: स्टार अभी मेरे ख्याल से अभी इतना नहीं चल रहा है इन तीनों का, खानों का, तो इससे घाटा उन लोगों का वो हो सकता है मेरे ख्याल से।
1: पिछली कुछ फिल्में वैसे अक्षय कुमार की भी नहीं चली हैं अभी, भूत बंगला इज द ओनली वन दैट डिड वेल।
0: वैसे तो बोल रहे थे कि अभी बंदे ने अभी बोला कि मुसलमानों को उसमें लाते नहीं है पार्लियामेंट। हमारे यहाँ तो सबसे बड़े अच्छे मुसलमान थे जो अब्दुल कलाम जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो तो आज लोग अभी लोग सब हिंदू लोग भी सलूट करते कि नहीं ऐसा वैज्ञानिक हमारे देश में आए थे। तो ऐसी बातें, फालतू बातें करते अच्छा नहीं लगता है।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया देव जी। एंड आई थिंक कई बार यही होता है कि हम हमारे जो लेंस होते हैं जिससे हम चीज़ों को देखते हैं वो हम खुद अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेते हैं एंड फिर हम अपना अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ऐसा ही है जो हम सोच रहे हैं, यही राइट है। बाहर का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। सुरेश वाडकर की आवाज़ में परिंदा फिल्म का गीत, फिल्माया ऑन माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर। इन्जॉय।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से ले

0: लेकर कई पुरानी बीमारियों तक जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, 6477602779, 6477602779।
1: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.

0: Joshi.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक 4166710577 4166710577 alldebtsolutions.ca
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर और ऑल दैट सॉल्यूशन से मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। लगातार हफ्ते व हफ्ते आते हैं और कर्जों से किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। क्लोज टू अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नंबर टू कॉल 5 लोकेशन से जीटीए में सिद्दीक भाई सर्व करते हैं 4166710577 इज द नंबर। सिद्दीक भाई आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
5: थैंक यू सनी भाई, कैसे हैं आप?
4: जी फर्स्ट क्लास सिद्दीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर वाले की दुआ है। लेकिन नॉट एवरीबडी इज डूइंग वेल, वी आर ऑल यू नो हैंगिंग इन देयर। जो जैसे हालात चल रहे हैं उसमें अनसर्टेंटी है, अनसर्टेंटी में घबराहट होती है, खौफ होता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल मुझे लगता है कि ये होना। अब इसमें ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस जो कर्जा 2024 के बिगनिंग में था, आज जो कर्जा है किसी के ऊपर वो मल्टीप्लाई हो गया है। अब आप ही बताइए कि भाई ये कर्जा तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जॉब्स के खतरे बने हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे, एंड हाउ कैन somebody अवॉइड अ बैंक्रप्सी?
5: जी बिल्कुल सनी भाई, काफी टफ टाइम है, लोग इनकम बहुत कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, बजट बैलेंस करना आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं लोग। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जिन पे कर्जे हैं और वो मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं। अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो अपना पैसा इंटरेस्ट में ज़ाया होने से आप बचा सकते हैं अगर आप एक्सप्लोर करें ऑप्शंस अपने लिए। उसके लिए कई ऑप्शंस हैं, चाहे कर्जा छोटा है या बड़ा, इंटरेस्ट में पैसा ज़ाया होने से बचाएं। आप कॉल कर सकते हैं 4166710577 पे कॉल करके एडमिशन लेंगे। एक कर्जा कम होगा तो हो सकता है आपका क्रेडिट भी खराब ना हो, सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके आपका मसला हल कर सकें। और बैंकरप्सी तो वैसे भी लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले कई ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आप ऑन टाइम एक्सप्लोर करते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको डिले करेंगे, मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे, डीप डेट में जाएंगे, तो उस वक्त शायद आपका ऑप्शन सिर्फ बैंकरप्सी ही रह जाए। इसलिए बैंकरप्सी से आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप ऑन टाइम एक्शन लें, इसको सीरियस लें और कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना, आए इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करें। नंबर है 4166710577 भी आप कॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका कर्जा लाखों में हो तो आपने कॉल करना है, चाहे आपका कर्जा 10,000 डॉलर का है, 20 का है, 50 का है, लाख का है, मिलियन का है, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आप इनमें पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। जितना जल्दी आप कंसल्ट करेंगे उतना ही आपका फायदा है, जितना इसको डिले करेंगे उतना ही आपका नुकसान है, क्योंकि एवरी डे आपका पैसा इंटरेस्ट में जाया हो रहा है। कर्जा चाहे आप पे क्रेडिट कार्ड का है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स हैं, बिजनेस के लोन हैं, या फिर इनकम टैक्स का मामला है सीआरए के साथ पर्सनल या बिजनेस का, जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, पेरोल आउटस्टैंडिंग है, वे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है, सीबा लोन है, स्किप लोन लिए थे जो पे नहीं कर सके, या इसके अलावा कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किए थे, पेमेंट नहीं कर सके, उठा के ले गए, या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हैं, या कोई प्री कंस्ट्रक्शन कंडो या घर बुक किए थे जिनकी प्राइस कम हो गई है, आप क्लोज नहीं कर सकते और बिल्डर आपके पीछे आ रहा है, तो ये सारे कर्जे आपके सेटल हो सकते हैं उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इसमें आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम कर्जा आपका माफ़ करवा सकें करवाएं, और बाकी छोटी छोटी किस्तों में आप जो इजीली अफोर्ड कर सकें वो पे करें। और अगर इसमें आपका क्रेडिट ख़राब होता है तो याद रखें कोई बड़ी बात नहीं है, क्रेडिट को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना होते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में, और बहुत जल्द आपका वापस क्रेडिट मिल सकता है। और आपके एसेट चाहे घर हैं, गाड़ियां हैं, RSP, RESP, बिजनेसेस, ये सब कुछ एज इट इज आपके पास रहते हैं, कुछ आप लूज नहीं करते, और बड़ी आसानी से आप डेट फ्री हो सकते हैं। एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूँगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, जो वादा करूंगा पहले मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा। नंबर है 416-671-0577, 416-671-0577। लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्कार्बरो में है मार्केट मैनेजमेंट के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सल के पास, मिसिसागा में है डिक्सी 401 के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैम्बली बुवेड के पास। नंबर है 416-671-0577, टोल फ्री नंबर है 1-855-671-0577 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई
4: जी बिल्कुल, मोहम्मद सिद्दीक साहब ऑल दैट सॉल्यूशंस की तरफ से पिछले तकरीबन 3 decades से आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं, कई बार होता है कि लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कर्जा चढ़ जाता है, अननोइंगली हो जाता है, कई बार कोई इमरजेंसी आ जाती है, कई बार कोई और कई वजह बन जाती हैं, बट एक देर इज़ अ सोल्यूशन, हल है उस चीज़ का। सिद्दीक भाई से संपर्क करें, 5 locations इन GTA, 416-671-0577। और सिर्फ ये नहीं कि कर्जे से छुटकारा दिलवा के आपको यूर ऑन योर ओन, नहीं, उसके बाद सिद्दीक भाई आपको गाइड करते हैं कि भाई अब क्रेडिट को बैक ऑन ट्रैक कैसे लाना है, बिकॉज हमें पता है उसके बिना तो यहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल होता है कनाडा में। सो 416-671-0577 पर कॉल करें। ऑल दैट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक साहब विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस टू बिकम डेट फ्री। सिद्दीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: थैंक यू सनी भाई।
4: थैंक यू सर। 416-671-0577। उदित नारायण सपना मुखर्जी की आवाज में, अनु मलिक का म्यूजिक, समीर के लिरिक्स, एंड इस फिल्म में थे फरदीन खान, शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। ये शाहिद कपूर की सेकंड फिल्म थी आफ्टर इश्क विश्क, एंड उम्मीद थी कि फिल्म बड़ी हिट होगी, एक इंग्लिश हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी ये फिल्म, डिड नॉट डू वेल, बट व्हाट अ सॉन्ग। नजर नजर उदित नारायण की आवाज में, ब्रॉट टू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस एंड डॉन वैली नॉर्थ हांडे, जो कि दे रहे हैं फीफा की टिकटें। बैलेट जो है जून में ड्रॉ होगा, ऑफर एंड्स 31st May। इफ यू बाय एन हांडे फ्रॉम देम, दो नाम दो टिकट्स पर विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। इफ यू बाय विंटर टायर्स फ्रॉम देम स्टोरेज के साथ, वन नेम फॉर वन टिकट, एंड सिमिलरली किसी एक्सटेंडेड वारंटी आप परचेज करते हैं, वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। डॉन वैली नॉर्थ हांडे, 7537 वुडबाइन एवेन्यू इन मार्कम, स्टील्स वुडबाइन वाला इंटरसेक्शन।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
3: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
2: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
2: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
3: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
2: 647-739-8710, license number M200-34504.
4: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल, ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं. राज जी से आज थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात करते हैं, थोड़ी सी रियल एस्टेट, क्योंकि मैं खुद मॉर्गेज क्लोज टू अबाउट 15 ईयर्स से कर रहा हूँ. सो वील यू नो टर्न द टेबल्स अ बिट टुडे. राज जी आपका स्वागत है.
5: नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून.
0: गुड आफ्टरनून राज जी, आप इतने सालों से रियल एस्टेट में हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मॉर्गेज ब्रोकर या एजेंट को रात के 9-10 बजे कॉल किया है अपने क्लाइंट के मॉर्गेज के लिए?
5: सनी जी, सच तो ये है कि हमारे क्लाइंट्स हमारे लिए नंबर वन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कई दफा ऐसा होता है कि हमें ऑड आवर्स पर हमारे क्लाइंट को एंटरटेन करना पड़ता है और अदर प्रोफेशनल्स को भी रीच करते हैं, बट ओवर टाइम वी डेवलप वंडरफुल रिलेशनशिप्स, और हमें हर एक के टाइम की वैल्यू है, हर एक के टाइम की रिस्पेक्ट है, एंड डेफिनेटली जो भी संभव हो हम अपने क्लाइंट के लिए करते हैं, बट कीपिंग इन माइंड के सबकी लाइफ भी अपार्ट फ्रॉम वन सिंगल डील बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों के फैमिली कमिटमेंट्स हैं और फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं लाइफ में.
0: वुड यू कॉल अ मॉर्गेज एजेंट एट 9:30 एट नाइट एंड एक्सपेक्ट द मॉर्गेज एजेंट टू पिक अप? बिकॉज मी बीइंग अ मॉर्गेज प्रोफेशनल, मैं रात के 9:30 बजे किसी की कॉल को देख लेता हूँ, बट आई रिफ्यूज टू पिक इट अप, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट.
5: डेफिनेटली सनी जी, हर एक का अपना कॉल है इस पे. कई दफा हम शायद मैनर्स और एटिकेट को भूल जाते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं अपनी सिचुएशन में. अपने लिए नहीं कह रहा हूँ,
0: या सेल्फिश हो जाते हैं.
5: आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्फिशनेस भी है.
0: या बिकॉज़ वी डू नो द बैंक्स क्लोज एट 5 PM. अ मॉर्गेज,
5: हाँ जी,
0: अ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट कुड बी वर्किंग एट 7 PM, 8 PM एज वेल, बट नॉट एट 9:30 और 10 PM.
5: हाँ जी, एब्सोल्युटली सनी जी, कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस जो है, भले वो बैंक है या कोई मॉर्गेज कंपनी है, उसको जब आप 4:59 पे भी कॉल करेंगे तो कोई फोन नहीं उठाएगा.
0: एग्जैक्टली.
5: तो डेफिनेटली हम उन चीजों का ख्याल करते हैं, बट शायद पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में हम अपनी डेस्परेशन, अपनी यू नो सिचुएशन, अपनी सेल्फिशनेस को ही ख्याल रखते हुए इन बाउंड्रीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट अ यू नो अ नाइस थिंग. बट अगेन मैं वही कहूंगा कि ऑल डिपेंड्स ऑन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डीलिंग विद क्लाइंट्स, शायद पहली दफा अगर किसी को एक क्लाइंट मिला हो, बहुत सारी नॉलेज या एक्सपीरियंस ना हो, तो वो ओवर एंग्शियस और ओवर यू नो क्या कह सकते हैं आप,
0: ड्रामेटिक हो जाता है.
5: यस, हो सकता है कि उनका उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है और वो घबराए हुए हैं कि क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा. शायद उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की क्लाइंट को, क्लाइंट को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया अपने प्रोफेशनलिज्म से. तो मे बी दे आर डेस्परेट एट दैट एंड, बट टू ईच हिज ओन. मैं किसी के बारे में शायद नहीं कमेंट करना चाहूंगा, बट एक जनरल आपने ओवरव्यू पूछा है तो आई डेफिनेटली फॉलो दोज.
0: लॉट ऑफ टाइम्स मैंने इसलिए भी ये ब्रिंग अप किया बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमारे इट्स बिन 19 ईयर्स इन मीडिया फॉर मी, और ऑड आवर्स पे हमारे लिसनर्स या टीवी के जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कॉल करते हैं एंड आई एंटरटेन दोज कॉल्स एट ऑड आवर्स. बट वेन इट कम्स टू मॉर्गेज आई ड्रॉ अ लाइन जहाँ पर मैं आई रिफ्यूज टू पिक अप द फोन आफ्टर अ सर्टन टाइम. एंड मुझे ये लगता होता है कि भाई आपको रात के 10-11 बजे तो नहीं डेस्परेटली मॉर्गेज चाहिए, और अगर चाहिए तो देन यू हैव टू प्रॉब्ली डायल समबडी एल्स बिकॉज इट्स बीइंग वेरी अनरीजनेबल ट्राइंग टू कॉल अ प्रोफेशनल. डू यू हैव आज रादर देन टॉकिंग अबाउट दैट आई जस्ट वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दिस. आई नो आप कितने डेडिकेटेड तरीके से पेशेंटली अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं. मैंने क्लोज क्वार्टर्स से उस चीज को देखा है. वी वर्कड ऑन क्लाइंट्स टुगेदर जहां पे मैंने उनको मॉर्गेज और आपने रियल एस्टेट प्रोवाइड किया है क्लाइंट्स को, हमारे लिसनर्स को. डू यू एंटरटेन कॉल्स दैट लेट योरसेल्फ?
5: सर जी, मैंने तो जो रूल्स है अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा सेपरेट रखा है, और अगर मैं वेकेशन पर भी होता हूं तो यूजुअली मेरी कॉल्स फॉरवर्डेड होती है टू माय ऑफिस. जिनकी कॉल्स को मैंने अटेंड करना है एट ऑड आवर्स उसकी भी एक लिमिट है. तो ऑलवेज अब उस एक दूसरे ये दोनों डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ का उनको एक दूसरे पर हावी नहीं होने दिया है. जब काम है तो काम है, और जब पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो वो इम्पोर्टेंट है. दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो लाइफ डेफिनेटली बिकम्स ईजियर. आप 100% राइट हैं कि अगर हम बैंक को 5 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते तो मॉर्गेज ब्रोकर या इवन आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल को भी लिमिटेड आवर्स में ही कॉल करें. मुझे पता है आज से 15-20 साल पहले जब ऑनलाइन यानी कि जैसे आज हम इंटरनेट और ईमेल व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त इतना नहीं था
0: जी.
5: और पर्सन टू पर्सन होता था, तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए कि आप 50-60-80 किलोमीटर्स ड्राइव करके जा रहे हैं और क्लाइंट को ऑड आवर्स पे मिल रहे हैं टू प्रोबेबली मेक एन ऑफर और टू
0: जस्ट टू गेट दैट डॉक्यू साइन, जो आज डॉक्यू साइन होता है उस जमाने में.
5: वो बहुत बहुत बेहतर हो गया, लेकिन वो प्रोसेस है ड्यूरिंग द एक्चुअल डील मेकिंग, राइट. उसमें वो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है क्योंकि सब अवेयर हैं कि हम यू नो ऑफ बिजनेस आवर्स में इस डील को कंप्लीट कर रहे हैं. लेकिन टू जस्ट गेट इंफॉर्मेशन, आई फील इट्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और विद टाइम लोगों को ये नॉलेज आ जाती है और फिर दे माइट बी बाइटिंग देयर टंग एंड थिंकिंग आउच मैंने ऐसे क्यों किया.
0: बिल्कुल,
5: बिकॉज जब उनको कभी ऐसी ऑड आवर में कॉल मिलेगी दे विल फील यू नो ऑब्वियसली आफ्टर 9 o'clock तो वैसे भी लोगों का स्लीप टाइम होता है. सो दैट्स अ वेरी ऑड आवर टू कॉल एनीवन या मैसेज एनीवन एंड एक्सपेक्ट अ आंसर.
0: थैंक यू राजीव. मैं जानबूझ के मैंने सोचा कि भाई आपकी लिस्टिंग्स, प्रॉपर्टीज, आप प्रोजेक्ट्स शेयर करते रहते हैं, आज कुछ और बात की जाए एज टू प्रोफेशनल्स जो कि इतने सालों से आप रियल एस्टेट में और मैं मॉर्गेज में काम कर रहे हैं, एंड वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस पॉसिबल, बट यू नो देर आर सम बाउंड्रीज दैट वी ऑल हैव एंड वी ऑल वॉन्ट टू मेनटेन. सो मैंने इसलिए आज थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में एक ट्विस्ट मैं लेकर आया, एंड यू नो बट I will talk to you tomorrow again. And then aapse koi nahi cheez ke baare mein baatcheet hogi. Dosto, bata dun ki the most dedicated real estate professional maine apni zindagi mein agar dekha hai is Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley, jo ki apne clients ke liye way beyond his means and ways and means jaate hain to, you know, fulfill the client's needs. Real estate buying, selling, investments ke liye, you need somebody like Raj Joshi with so much of experience who can save you thousands of dollars on the negotiating table. 647-866-1086 Raj ji ka number hai. Raj ji, bahut bahut shukriya.
5: सनी जी, इजाजत लेते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि होपफुली कोई भाई बहन हमारी कॉन्वर्जेशन का को मिसअंडरस्टैंड ना करें या गलत मतलब ना लगाएं. हमारे लिए अभी भी क्लाइंट्स ही नंबर वन है
0: जी.
5: लेकिन रिस्पेक्ट एवरीबडीज बाउंड्रीज. बहुत बहुत शुक्रिया. विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून. थैंक यू.
0: एक्सलेंट. बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. 647-866-1086 बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई डोंट थिंक एनीवन हु सेंसिबल विल एक्चुअली बी ऑफेंडेड, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल को यू नो एक फैमिली टाइम हर एक के लिए होता है. एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई हैव लॉट ऑफ टाइम्स यू नो कोई इमरजेंसी हो जाती है, आई कुड हैव अ क्लाइंट कॉल मी रियली लेट, एंड द बेस्ट थिंग इज समटाइम्स टू टेक्स्ट. यू नो आप टेक्स्ट करके दूसरे की अवेलेबिलिटी पूछते हैं, देखते हैं, समझते हैं. बट येस, सम पीपल आर टोटली यू नो अनरीजनेबल व्हेन दे जस्ट रैंडमली डोंट नो यू एंड रैंडमली कॉल यू एट 10:30 एट नाइट टू नो द मॉर्गेज रेट्स. अगर आप कुछ भी मॉर्गेज की जानकारी लेना चाहते हैं तो sunnyjoshi.ca पे जाएं. यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, मॉर्गेज कैलकुलेटर, मॉर्गेज रेट्स ऑफ द डे, ऑफ द वीक, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे sunnyjoshi.ca पर. प्लेन एंड सिंपल. चलिए, कुमार सानू एंड लता जी की आवाज़ में प्यार को हो जाने दो. फ्रॉम द मूवी दुश्मन, फिल्माया ऑन संजय दत्त एंड काजोल.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
4: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
3: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
5: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
6: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
7: हाय, आई एम रियल्टर सिखी। जे तुसी घर बेचण जां खरीदण बारे सोच रहे हो तो एक बार मैनू फोन जरूर करो। मैं तुहानू प्रोफेशनल एडवाइस देके तुहाडा घर लिस्ट करांगी सिर्फ $1,000 विच। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुनिया, ओनली $4,000, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। कॉल मी एट 647-408-7066, दैट इज 647-408-7066। जस्ट रिमेम्बर, यू से सेल एंड आई से सोल्ड।
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
10: Jab

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Don Valley North Hyundai pe ho rahi hai. Zabardast Hyundai Sunday ki ultimate saving sale on May 24th. Inventory par huge bonus offers. Deals itni zabardast ki miss nahi kar sakte. Sunday, May 24th ko apne calendar mein mark kar lo. Don Valley North Hyundai par hamari team baat karti hai. Hindi, Urdu, Punjabi aur Tamil mein. Visit kariye donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave aur Denison Street.
3: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. ध्यान से सुनेगा सेगमेंट को, क्योंकि हमारे साथ ब्रोकर यूनियन से रितेश पुरी जी हैं एंड अमन जी जो कि फाइनेंशियल प्लानर हैं, अमन मेहता फ्रॉम इंडस्ट्रियल अलायंस, उनकी टीम अमन जी, अलका जी एज वेल एज रितेश जी. नॉट ओनली जहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस आपको दी जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है अमन जी की तरफ से, अलका जी एंड रितेश हैव अ टीम वेयर दे आर गिविंग यू द बेस्ट ऑटो होम एंड कमर्शियल इंश्योरेंस के रेट्स. एंड मोर देन द रेट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ और चीज़ें जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं देते. नंबर नोट करिएगा सेगमेंट के बाद. इफ योर रिन्यूअल्स कमिंग अप, टॉक टू रितेश 437-237-8068 437-237-8068. रितेश आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
5: गुड आफ्टरनून सनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से बात करके.
4: थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. अच्छा रितेश, बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ सवाल हैं लिसनर्स की तरफ से भी आए हैं, कुछ मेरी तरफ से हैं जो मैं आपको पूछना चाहूँगा. कई लोग ये आम महसूस करते हैं, फील करते हैं कि होम एंड ऑटो इंश्योरेंस भाई, और मैं भी महसूस करता हूँ, मैं सीधा ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि ये एक अनदर मंथली एक्सपेंस है हमारे ऊपर. वाई इज़ इट एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट देन मोस्ट पीपल रियलाइज, मतलब ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए.
5: बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने सनी जी. इसमें जनरली यही हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मंथली बिल है या फिर हम जैसे कोई यू नो बिल पेमेंट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यही होती है कि हमको ये जानना है कि हमको क्या प्रोटेक्शन मिल रही है ताकि हमें सिचुएशन आने पर अपनी पॉकेट से ना पे करना पड़े. अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि अब जैसे किसी के घर में कोई पानी की प्रॉब्लम आ गई, वाटर डैमेज हो गया, तो अब फैमिली का कितना सारा सामान पड़ा होता है, फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और अगर ऐसे कोई डैमेज हो जाए और बहुत बड़ा खर्चा आ जाए तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है फैमिली पे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कवरेज को जानिए, इसको सिर्फ एक मंथली बिल ना देखो.
4: जी जी. सो आपके हिसाब, आपका जो लंबा एक्सपीरियंस, इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं, मैं इसी में से एक सवाल मेरे दिमाग में आया है. आपके एक्सपीरियंस में आपने ऐसे देखा है कि मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि भैया सबसे सस्ती हमें दे दो, बट दे आर एक्चुअली इग्नोरेंट एंड इनोसेंट भी है, इग्नोरेंट भी है, नॉट पेइंग अटेंशन टू द कवरेज दैट दे हैव.
5: ये सनी जी सबके साथ होता है. पहले मेरे साथ भी ऐसे होता था कि हम अपनी कवरेज नहीं देखते. हमको ये होता है कि सस्ती इंश्योरेंस मिल गई तो सब कुछ कवर हो जाएगा और जब क्लेम आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और जब क्लेम आता है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता लगता है कि अच्छा मेरी कवरेज में ये सब मिसिंग था. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ब्रोकर के साथ, एडवाइजर के साथ बात करो, समझो कि आपकी पॉलिसी में क्या मिल रहा है.
4: जी जी बिल्कुल. मैं रितेश जी का नंबर एक बार फिर से दे दूं, 437-237-8068. दोस्तों आपकी ऑटो, होम, कमर्शियल, जो भी प्रॉपर्टी, कोई भी इस तरह की इंश्योरेंसेस, इफ़ दे आर कमिंग अप फॉर रिन्यूअल, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. इस सेगमेंट के बाद रितेश जी, उनकी टीम, अलका जी के साथ बात करें और जानने की कोशिश करें हाउ यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एज वेल एज प्रोटेक्ट योर फैमिली. अगला सवाल ये है रितेश की, व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक व्हेन बाइंग होम और ऑटो इंश्योरेंस.
5: सुनी जी यही पे प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ही होता है कि हमें चीपेस्ट प्रीमियम चाहिए बट हम अपनी पॉलिसी को रिव्यू नहीं करते. अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि उनकी जो कवरेज थी उसमें फैमिली प्रोटेक्शन नहीं थी, तो उससे ये हुआ कि जब क्लेम आया तो ड्राइवर की इनसफिशिएंट इंश्योरेंस होने के कारण उनको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा।
4: माय गॉड,
5: ये बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। इसीलिए सिर्फ प्राइस मत देखो, अपनी कवरेज को समझो।
4: कवरेज को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर वी कवर्ड और नॉट। ऐसा ना हो कि हम हर महीने पैसे देते जा रहे हैं, जब एक्चुअली वक्त आया क्लेम का, हमें पता चला कि भाई अब क्या करें। 437-237-8068 रितेश पुरी जी का नंबर है। रितेश जी, अक्सर हम काफी सुनते हैं अबाउट इंश्योरेंस क्लेम्स जो है ना डिनाई हो जाते हैं।
5: हाँ जी,
4: ऐसा क्यों होता है बताइए जरा, व्हाई डज दैट हैपन?
5: सनी जी, ये बहुत बार ऐसे ही होता है कि क्लेम डिनाई हो गया क्योंकि उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। क्लाइंट क्या करते हैं, कुछ बातें छुपा लेते हैं ताकि उनकी जो इंश्योरेंस है वो थोड़ी सस्ती हो जाए। अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कोई क्लाइंट ने अपनी पर्सनल इंश्योरेंस ली हुई है बट उसमें ये नहीं डिक्लेयर किया हुआ कि वो उबर करते हैं या फिर कोई ऐसा कुछ डिलीवरी का काम करते हैं। तो जब क्लेम आ जाता है और इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है कि उबर के कारण ये काम हुआ है तो वहां पे फिर आपका क्लेम डिनाई हो जाता है। सो बेटर है कि $10-20 एक्स्ट्रा पे कर लो, एटलीस्ट अपनी प्रॉपर कवरेज रखो।
4: जी बिल्कुल सही बात है, कई बार वो $10-15-20 जो एक्स्ट्रा हमने दिया होता है उसका एहसास मुझे लगता है तब होता है जब क्लेम डिनाई हो रहा होता है। रितेश जी का नंबर 437-237-8068, ब्रोकर यूनियन से काम करते हैं और मल्टीपल कंपनीज के साथ डील करते हैं, तो फिर आपको जो बेहतरीन आपके लिए जो होगा वो दिलवाते हैं। कुलविंदर जी भी हमारे साथ हैं आज रितेश जी?
5: नहीं जी, आज कुलविंदर हमारे साथ नहीं।
4: ठीक है जी, कुलविंदर जी से अगले हफ्ते होगी बातचीत। आखिरी सवाल आपके जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाट एडवाइस आप देंगे टू फैमिलीज इन ओंटारियो व्हेन रिव्यूइंग देयर इंश्योरेंस टुडे, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज?
5: हाँ जी सनी जी, मेरी सिर्फ एक सिंपल एडवाइस है कि इसको एक ग्रोसरी शॉपिंग की तरह मत लीजिए कि वहां से सब्जी सस्ती मिल जाएगी, वहां से जाना चाहिए। इसको एक कवरेज की तरह ट्रीट करिए कि इसको समझिए कि आपको मिल क्या रहा है। आपको लायबिलिटी इनफ मिल रही है, आपको फैमिली प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये कोई प्रॉपर कवरेज लाइक मिसिंग तो नहीं है। तो इसलिए अपने एडवाइजर से जुड़िए, उससे बात कीजिए, इसको एक सिर्फ मंथली बिल की तरह मत ट्रीट कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए।
4: बिल्कुल, और उसके लिए दोस्तों ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए एक बार अलका जी, रितेश जी, इनकी टीम के साथ संपर्क करें एंड कॉल करें 437-237-8068। जो सस्ता होता है फिर एंड में जो है कई बार महसूस होता है कि भैया सस्ता लिया था और एक्सीडेंट हो गया तो अब पता चला कि आधे बेनिफिट्स हमें मिल ही नहीं रहे और क्लेम, जैसे रितेश जी ने बताया कि कई बार क्लेम फिर डिनाई भी हो जाता है। 437-237-8068, दिस इज वेयर द एक्सपर्टीज ऑफ रितेश जी और अलका जी सामने आता है कि दे लुक आउट फॉर द क्लाइंट, दे गिव यू जो आपकी सिचुएशन के लिए आपके परिवार के हिसाब से बेस्ट सूटेबल है आपके लिए इंश्योरेंस। 437-237-8068। रितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते कुछ और सवालों के साथ होगी बातचीत।
5: थैंक यू सनी जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके।
4: थैंक यू ब्रदर, ऑलवेज द सेम। 437-237-8068, सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सुरेश वाडकर की आवाज में। सत्या वॉज द फिल्म, फिल्माया ऑन नन अदर देन मनोज वाजपेयी एंड ब्रॉट टू यू बाय डॉन वैली नॉर्थ हांडे एंड ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। छोले भटूरे .ca चार लोकेशन से सर्व करते हैं, दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे, दो ब्रैम्पटन, एक वॉन, एक मिसागा की लोकेशन से मिलते हैं। डाइन एंड टेकआउट ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं, इंजॉय करें। और एशियंस के बारे में बता दूं, एक बहुत ही पॉपुलर साउथ एशियन क्लोदिंग और टेक्सटाइल स्टोर है मार्कम रोड और लॉरेंस एवन्यू के पास स्कारब्रो में, 3601 लॉरेंस एवन्यू ईस्ट यूनिट 23 स्कारब्रो। अब शादी ब्याह का सीज़न है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सारी शादियाँ जो है मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलती हैं धूमधाम से, तो आपने साड़ीज़ लेनी है लेडीज़ ने, लहंगे, सलवार सूट्स या ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग्स जो कुर्ते पजामे होते हैं, वैस्केट्स होती हैं, ज्वेलरी लेना है, गिफ्ट आइटम्स लेना है, एशियंस पे पहुँचें एंड अमेजिंग अमेजिंग जो नए स्टाइल्स फैशन आए हुए हैं एशियंस पर चेकआउट करें। 3601 लॉरेंस एवन्यू स्कारब्रो, 416-438-6568। Enjoy the song, I'll be right back.

0: अपने में मिलती है। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 4573232 Clear Optical by Varun Kanda.

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. बाहर का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और हमारे साथ हैं अतीक खान जो कि एक लोकल डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में साउथर्न ओंटारियो में ही हैज बीन एंगेज्ड फॉर ओवर 25 इयर्स नाउ. एंड ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की कोशिश करें आप कि किस तरीके से ये बिजनेस कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है और इससे लिसनर्स का किस तरह से बेनिफिट होगा. Everyone can make money और आपकी investment जो है वो भी किस तरह से safe रहती है. And land buying, developing, zoning change, all that kind of stuff. But the expert is there to answer all the questions. Atiq Khan himself. 416-666-2745. 416-666-2745. Atiq bhai, आपका स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच सनी साहब और आपको, आपके लिसनर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और गुड आफ्टरनून. और जैसे आपने बाहर का तापमान बताया, मैं थोड़ा सा तापमान और बढ़ा देता हूँ
2: जी.
3: एक लैंड खरीदने के लिए आया था. टेक्निकली एक डिटैच घर है, 100 फुट का फ्रंट है, 290 फुट की डेप्थ है, ब्रैम्पटन नॉर्थ में एट द बॉर्डर ऑफ जॉर्ज टाउन. सनी साहब, आज की मार्केट जो स्लो मार्केट है, मेरे लिए वो प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे लिए वो प्रोजेक्ट है लैंड की शक्ल में. बट 24 ऑफर उसके ऊपर आई हुई हैं.
2: वाओ,
3: 24 ऑफर, 100 by 290 feet डीप लॉट की. उनमें से एक ऑफर मेरी भी है, पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता. बट बताना चाह रहा हूँ लिसनर्स को कि मार्केट खुल गई है. अगर आपने लैंड खरीदनी है, लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको फ्यूचर में कुछ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, मिड राइज, हाई राइज में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरी जॉब है. मुझे कॉल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी साथ साथ मिलेगी, बिजनेस पार्टनर भी आप बनेंगे, प्रॉपर्टी पे आपका नाम होगा सिक्योरिटी गारंटीज के साथ. और मजे की बात यह है कि रिटर्न्स लैंड में तकरीबन 200% तक जाते हैं. आपको प्रोसेस समझना होगा, उस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा. पहला उसमें स्टॉप है तकरीबन 18 महीने का, जिसमें आपको जब लैंड का साइट प्लान या ड्राफ्ट प्लान अप्रूव हो जाता है, उस वक्त आप 40% तक का प्रॉफिट लेके अलग कर सकते हैं अपने आप को. अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सेकंड स्टेज में सिटी के परमिट्स लेना, डेवलपमेंट चार्जेस पे करना, सर्विसेज कराना, ये सेकंड स्टेज है. 8-10 months और ऐड हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन 60% तक चला जाएगा. और अगर आप प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं, जिस चीज की भी हमने कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली है, तो रफली अबाउट 200% तक का प्रॉफिट जाता है. हमेशा से मेरा नंबर एक ही रहा है पिछले 25 सालों से, 416-666-2745.
2: जी, आपके लिए एक सवाल है. ये सवाल एक्चुअली लास्ट जब आपकी पिछले हफ्ते वाली इंटरव्यू थी उसके बाद मुझे ये सवाल आया था. हमारे एक लिसनर ने कहा कि व्हेन आई लिसन टू अतीक खान्स कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट, आई रियली लाइक इट. Ask Atiq next time when he comes on radio that ये concept, basically वो ये पूछना चाहते हैं, ये business concept 25-26 साल आप पहले आपके दिमाग में कैसे आया, क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार this is something worthwhile, fruitful for everyone.
3: सर, इनका मुझे नाम भेजिएगा, मैं इनको एक गिफ्ट कार्ड भेजूंगा.
2: ठीक है.
3: आज हिस्ट्री की बात हो रही है, मैं अपनी हिस्ट्री बता ही देता हूँ
2: जी.
3: मैं लिटरली सर्टिफाइड क्वालिफाइड था पुराने घरों को लेना, उनको रिफर्बिश कराना, उनको पूरा डेकोरेट करना, अपडेट करना और सेल करना. और सनी साहब, अच्छे दिनों में एक एक घर से कोई $1-1 lakh मैंने कमाए. और ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था मेरा अपना, मेरी फैमिली का, फिर उसके अंदर दोस्त यार खानदान वाले जुड़ गए, फिर स्ट्रेंजर्स जुड़ गए, और वो इतना बढ़ गया कि अब उसको लैंड में लेके एक साथ सब डिविजन बनाना. आप मेरी बात को समझिएगा, आप एक घर के लिए हार्डवुड फ्लोर खरीद रहे हो या एक घर के लिए किचन खरीद रहे हो या 100 के लिए खरीद रहे हो, आपकी एफर्ट उतनी ही लगेंगी, आपको उतना ही भागना पड़ेगा. ठीक है. तो जिस वक्त रेनोवेशन का काम होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स एक एक पेंट के डब्बे के लिए आपको भगाते थे, सनीसा पेंट खत्म हो गया और सनीसा भागे चले जा रहे होम डिपो एक पेंट खरीदने के लिए, तो वो आप एक पेंट का एक गैलन खरीदो या 50 गैलन खरीदो, इट इज सेम थिंग। इकोनॉमी ऑफ स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एक घर में क्यों काम करूं, अपनी एफर्ट डालूं, एक साथ 10 घर क्यों ना बनाऊं, 20 घर क्यों ना बनाऊं। तो इस तरीके से करते करते ये लैंड डेवलपमेंट बढ़ता चला गया। जब आप काम में इन्वॉल्व होते हो फिर आपके कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं। अब मुझे वो टिप्स मिल जाती हैं, वो आइडिया मिल जाते हैं कि जिनकी बेस पे मुझे लगता है कि इस लैंड को फ्यूचर में हम कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हैं, मैं वो लेता हूँ, बनाता हूँ और बेचता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल था, अच्छा होता है लोगों को पता चलता रहता है हिस्ट्री के कहाँ से आप शुरू हुए थे और कहाँ पहुंच गए। अब ऐसा हो गया कि समझ लीजिए आंख बंद करके बता सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे बनेंगे।
2: Wow, that's what we wanted to really hear. और अच्छी बात यह है कि हमारे listeners, जो beautiful listeners हैं, आपको इतने गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और interested होते हैं listeners. But yes, they all have questions, which is a very good thing. Some of them, जो मैं always कहता हूँ, could be a little skeptical, क्योंकि uncertain times में थोड़ी सी वैसे ही घबराहट सी दिमाग में होती है. But मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि अतीक खान साहब से एक मुलाकात करें. अरे जहाँ पर आप ग्रोथ की बात करते हैं अपने सेविंग्स को लेकर, और तो उसमें एक आधे एक घंटे की मीटिंग जो है कुड बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू एंड द फैमिली. एंड अगर आप दो चार दोस्त एक साथ मिलकर भी जो है ऐसी किसी चीज़ में जंप करना चाहते हैं तो अतीक भाई से एक साथ आए, मिलें, और दूर रहते तो जूम मीटिंग, वीडियो कॉल, जिस तरह से भी 416-666-2745 पर अतीक भाई से आप जो है रब्ता कर सकते हैं. अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू सो मच सर.
2: थैंक यू ब्रदर. 416-666-2745 अतीक खान साहब का डायरेक्ट नंबर है. विन लाइफ टाइम 905-206-1008 सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30 होता है इनका फ्री सेमिनार, उसे जरूर अटेंड करें, सीट रिजर्व करवा लें, प्लीज डोंट वॉक इन. एंड एशियंस फिर से बता दूं, पॉपुलर साउथ एशियन क्लोदिंग और टेक्सटाइल का स्टोर है मार्कम रोड लॉरेंस एवन्यू के इलाके में स्कारब्रो में, 3601 लॉरेंस एवन्यू स्कारब्रो. और अगर आपने लेनी है एक से बढ़कर एक साड़ीज, लहंगाज, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मतलब नए फैशंस, नए स्टाइल्स इनके पास आए हुए हैं इस समर के लिए, इस साल के लिए. मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो होती है शादियों के लिए, जो लोग आम तौर पे पहनते हैं, शॉप अराउंड करते हैं, बट दिस दे हैव लाइक क्वालिटी क्लोथिंग जो है ना, इट्स ऑल क्वालिटी जो ये सेल करते हैं. ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स एशियंस आपने याद रखना है. 416-438-6568. जैस्मिन सैंडलर्स गैरी संधू की आवाज में, इलीगल वेपन 2.0 फ्रॉम द मूवी स्ट्रीट डांसर 3D.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info. This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलण लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम से हरजिंदर जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। एजैक्स क्रिमेटोरियम, ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम दो लोकेशन से सर्व करते हैं। द बिल्डिंगटन वन इज कमिंग अप वेरी सून एज वेल। एंड लगातार जो हम इंफॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इज अबाउट प्री प्लानिंग, समथिंग दैट वी refuse to sometimes do it for many reasons, known and unknown. And baki Harjinder ji is pe thodi si roshni dalenge. Harjinder ji, aapka swagat hai.
1: Thank you, sir. Brampton Crematorium and Visitation Center ki taraf se main sabhi aapke shrotaon ko प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल बुलाना चाहता हूँ। और प्री प्लानिंग के बारे में आपने जो बात की है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमारी कम्युनिटी में आई विल से लेस अवेयरनेस है। तो देखो उस टाइम एक उस मौके पे एक बड़ा इमोशनल बर्डन तो होता ही है, साथ में एक फाइनेंशियल बर्डन एड अप हो जाता है। तो उसको अगर प्री प्लान कर लिया जाए समय से तो

0: उस टाइम सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ हो सकती है हमारे लव्ड वंस की। तो प्री प्लानिंग में बड़ा सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और 2026 का आज का प्राइस लॉक हो जाता है। भगवान ना करे किसी को आज से 20, 30, 40 साल जरूरत पड़ती है तो प्राइजेस आज की डेट के लॉक हो गए तो जो इन्फ्लेशन इफेक्ट है वो नहीं होगा।
1: जी जी, व्हाट इज द रीजन हरजिंदर जी, आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा है, क्या रीजन है हमारी कम्युनिटी में हमें एक प्री प्लानिंग के बारे में ठीक से पता नहीं है, दूसरा अगर पता है तो समटाइम्स सबकॉन्शियसली आल्सो वी रिफ्यूज टू डू इट।
0: करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक स्टिग्मा सा बना हुआ है, द ओनली रीजन इज अवेयरनेस। भाई इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ बट इट्स प्री प्लानिंग लाइक एनी अदर थिंग। किसी और जैसे हम वेकेशन पे जाते हैं उसके लिए प्लान करते हैं, सिमिलरली हम कुछ और काम करना होता है घर में, कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए प्लान करते हैं। दिस इज ए सर्टेनिटी, मीन्स ये एक अटल सच्चाई है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर तरीके से प्री प्लानिंग हो जाए टाइम रहते हुए तो उस टाइम एक फाइनेंशियल बर्डन जो होता है उससे हमें बचाव हो सकता है। तो इसमें बड़ा सिंपल तरीका है कि आज के प्राइसेस लॉक हो जाएंगे और जो मनी भी है, डॉलर मनी इज नॉट डिपॉजिटेड विद द क्रेमेटोरियम, इट इज डिपॉजिटेड लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस कंपनी। तो वहां पे ये ग्रो करती रहती है और जरूरत पड़ने पर 20-30 साल बाद परिवार को उस टाइम आराम से एक विदाइगी के टाइम फाइनेंशियल बोझ से बचा जा सकता है। तो उस टाइम क्रेमेटोरियम को डायरेक्टली मिल जाती है और फैमिली पे बोझ नहीं पड़ता
1: जी।
0: सो इसके लिए बहुत ध्यान से बैठकर जो भी कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट है जैसे विजिटेशन और कैस्केट के हैं, वो लॉक हो जाते हैं और वो भी एक मुश्त नहीं देना, सिंगल शॉट में नहीं देना, उसको ओवर 12 मंथ्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट और इवन लॉन्गर पीरियड के लिए भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और फिर इसमें एक जो डेथ बेनिफिट है, मींस एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड सम हेल्थ क्वेश्चंस। कोई मेडिकल चेकअप नहीं है, जस्ट हेल्थ क्वेश्चन का यस और नो करने पर इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल होता है और जिसका बहुत थोड़ा सा प्रीमियम से हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको मींस एक तरह से इंश्योर भी करा सकते हैं लाइफ को।
1: दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि प्री प्लानिंग सेमिनार रजिस्ट्रेशन है, दिस इज हैपनिंग ऑन May 23rd सैटरडे, सूजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स 500 रे लॉसन बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन। और आप जो है ज़्यादा जानकारी के लिए हरजिंदर जी और उनकी पूरी टीम जो है ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम पर उनसे संपर्क कर सकते हैं इन रिगार्ड्स टू दिस। एंड जैसे हरजिंदर जी ने कहा कि भाई ये तो अटल सच्चाई है, हम माने ना माने, ना मान के भी हम चीज़ों को रोक नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर कम से कम एक छोटी सी चीज़ जो हमारे शायद कंट्रोल में, व्हेन इट कम्स टू आवर ओल्डर ग्रैंड पेरेंट्स, सिक जो बीमार होते हैं, कई बार हमें पता होता है कि भाई ये समथिंग समथिंग दैट वी माइट बी लुकिंग एट बट वी डोंट रिफ्यूज टू टेक एनी स्टेप्स टूवर्ड्स इट, यू नो, या ओल्डर पेरेंट्स जो हैं उनके लिए प्री प्लानिंग के लिए ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम एजाक्स क्रेमेटोरियम पर आप 905-458-2222 पे कॉल करें, 905-458-2222। हरजिंदर सिंह जी एंड हिज एंटायर टीम इज देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू एट अ टाइम लाइक दिस। हरजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: हाँ जी, थैंक यू जी। और इसके साथ मैं एक वो जो ट्रैवल प्रोटेक्शन प्लान है उसके बारे में भी एक मिनट में बता दूं कि वो एक वन टाइम पेमेंट है $595 की और हम ट्रैवल करते हैं, इंडिया जाते हैं और वेकेशंस पे जाते हैं, खुदा ना खौफ़ता कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ पे लाने का खर्चा और हैसल फ्री इससे सारा बचा जा सकता है, दैट इज अराउंड $10,000 अदरवाइज। तो $595 से सिक्योर कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ अपने सारे ट्रेवल्स और सुकून से कहीं भी वर्ल्ड ओवर घूम सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू।
1: 905-458-2222। हरजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, चलिए ऐसे करते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही हैं 2 बजे के पहले हमने वो भी प्ले करना है। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से सुल्तान जी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और बहुत ही जल्द आते हैं वापस।
2: जाने कैसे रिश्ते हैं अचानक से थम जाते हैं, सब कुछ ठीक होकर भी एकदम से बदल जाते हैं, इतना वक्त करीब होकर फिर अजनबी बन जाते हैं, सब कुछ समझ कर भी ना समझ से नजर आते हैं, सब कुछ कहकर फिर खामोश से हो जाते हैं, उम्र भर का वादा करके एक तरफा बन जाते हैं, जाने कैसे रिश्ते हैं अचानक से थम जाते हैं, सब कुछ ठीक होकर भी एकदम से बदल जाते हैं।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें. Wayne'sAutoGroup.com.
4: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779.
5: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है. ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन. 905-458-6808.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड इन चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। 905-450-2828 इज द नंबर। टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान, सुल्तान जी सुल्तानिक डील्स लेकर पहुंच चुके हैं। 7 days a week ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज ओपन 11 AM to 7 PM। BramptonAppliances.com पर जाकर भी आप अमेजिंग डील्स का फायदा बिल्कुल ले सकते हैं। पहले टीवी सेक्शन, द मोस्ट पॉपुलर सेक्शन ऑफ ऑल, उसकी जानकारी लेते हैं, कुछ अमेजिंग डील्स आप तक पहुंचाते हैं। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी सबसे पहले टीवी सेक्शन की मोस्ट अमेजिंग डील्स ऑफ दिस मंथ हमारे लिसनर्स तक प्लीज पहुंचाइए।
1: सनी भाई ये तो ऐसी प्राइस है जो कहीं से नहीं मिलनी और ना दोबारा रिपीट होनी है। हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर की वजह से ही ये स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस जो है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे ऑफर की गई है, जिसमें सैमसंग का 85 इंच $1800 वाला था, इवन बॉक्सिंग डे के दिनों में भी 1699 का बेचा गया, लेकिन 85 इंच सैमसंग आपको इस वीक में मिल रहा है Only $999. सिर्फ $999 में। अगर कोई भी कस्टमर सैमसंग का 85 इंच लेना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जी, बिग स्क्रीन पे स्पोर्ट्स देखने के शौकीन जो हैं या बिग स्क्रीन पे मूवीज देखने के जो शौकीन कस्टमर हैं, उनके लिए ये बेस्ट चांस है कि सैमसंग 999 में 85 इंच ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से लिया जा सकता है। 75 इंच सैमसंग चाहिए तो आपको मिलेगा ओनली 799 में।
0: वाओ,
1: 55 इंच 399 में और 65 इंच 599 में लोएस्ट प्राइस गारंटी है। पिकअप करना है पिकअप कर लें तब भी 6 months में ही पे करेंगे, डिलीवर करवाना है डिलीवर करवा लें तब भी 6 months में ही पे करेंगे। और जब हम बिग स्क्रीन टीवी की बात करते हैं तो ये मिस ना करें कि 98 इंच सैमसंग भी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे अवेलेबल है और लोएस्ट प्राइस $3300 से 1999 में 98 इंच टीवी भी आपको मिल सकता है। 6 months नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे फ्री होम डिलीवरी के साथ। सिर्फ इसके लिए आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी
0: 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर सुल्तान जी लेकर पहुंच चुके हैं द मोस्ट अमेजिंग डील्स। टीवी सेक्शन के बाद अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शन पर भी निगाह डालेंगे और चाहेंगे कि भाई आप सबसे अमेजिंग डील्स दें, नॉट ओनली फॉर आर होम्स बट इवन फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज।
1: बिल्कुल जी, डेफिनेटली लोएस्ट प्राइस गारंटी है, अमेजिंग प्राइसेस इस वीक में दी जा रही हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे, लेकिन ये वन शॉट डील है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जी अप्लायंसेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम 15% या 25% का डिस्काउंट चलता है, लेकिन 40% तक का डिस्काउंट हम बंडल पैकेज पे लेके दे रहे हैं अपने कस्टमर को, जिसमें 40% की अगर हम बात करते हैं तो बिल्ट इन कुकटॉप, खास तौर पे कस्टम रेडी पैनल अगर आपने बनवाने हैं, कस्टम किचन आप तैयार करवा रहे हैं तो पैनल रेडी फ्रिज या पैनल रेडी डिशवाशर जो कि एक्सपेंसिव कंसिडर किए जाते हैं, हाई वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% डिस्काउंट पे आपको मिलेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से, जिसमें बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटरटॉप फ्रिज, कस्टम पैनल रेडी के साथ और स्टेनलेस स्टील पैनल के साथ आपको ये $12,000 का किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा। मोर देन 40% का डिस्काउंट है जो ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को जी। वेरी लिमिटेड टाइम है इसमें और बड़ी लो इन्वेंट्री है, लेकिन लोएस्ट प्राइस गारंटी है। 10% डिपॉजिट दे के आप डील लॉक कर सकते हैं, डिलीवरी डेट कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है जी, इवन सिंगल सिंगल पीस भी चाहिए तो फुल साइज 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज ओनली लेना है $2500 वाला, $16.99 में मिलेगा। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव लेना है जी $1,300-1,400 वाला, $7.99 में मिलेगा। सिंगल पीस डिशवॉशर चाहिए, ये तो 40 से ज्यादा यानी 50% पे, टॉल टब की स्टेनलेस स्टील की डिशवॉशर $1,000 वाली आधी प्राइस 50% डिस्काउंट पे $4.99 की मिलेगी। और जो भी आप परचेज करेंगे 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लॉन्ड्री सेक्शन में भी आपको टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ $10.99 का पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों $10.99 में। लार्ज कैपेसिटी टब है जी स्टेनलेस स्टील का, और आपको $10.99 का वॉशर एंड ड्रायर का पेयर मिल रहा है फ्री होम डिलीवरी के साथ। 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। पहुंचना है आपको बोवेट एंड चिंकूजी पे या ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है जी, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस। हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, BramptonAppliances.com, 9054502828 हमारा नंबर है जी। स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर स्टैकेबल $2,200 वाला $14.99 में मिलेगा, $700 आप सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर पे सेव कर लेंगे। बोवेट एंड चिंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 9054502828, 905-450-2828। मिस ना करें, सैमसंग का 85 इंच $9.99 में मिल रहा है फ्री डिलीवरी के साथ, 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $10.99 का पेयर मिल रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। किचन का 3 पीस किचन बंडल, फ्रिज स्टोव डिशवाशर $5,000 वाला $29.99 में मिल रहा है, $2,000 3 पीस किचन बंडल पे आप सेव करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 days a week स्टोर खुलता है जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 9054502828, 905-450-2828 जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 9054502828 Brampton TV and Appliances। This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown। Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
0: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

0: शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
1: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव। शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
0: ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप लोगों का वेलकम करती हूँ आज के नए शो पर, शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। दोस्तों, आज आपका जो दिन है आई एम श्योर बहुत अच्छा जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा जाने वाला है क्योंकि हम आपकी दिन में आज डालने जा रहे हैं एक बार फिर से पॉजिटिव एनर्जी, आपका मूड बदलने के लिए। तो जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा हल्का हो जाइए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आज का पॉजिटिव थॉट कहता है, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सोच को ज़रा हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज परफेक्शन नहीं बस पीस ढूंढिए, रश नहीं बस राइट वाइब फील कीजिए। आने वाले पलों में म्यूज़िक भी होगा, मस्ती भी होगी, दिल से बातें भी होंगी, बहुत सारे मेहमान रहेंगे, बहुत सारे डील्स होंगे आपके लिए। तो शुरू हो जाइए दोस्तों अपनी प्यारी सी जर्नी के साथ ऑन शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। गुड आफ्टरनून।

0: वेल दोस्तों, आपको दीवाना तो बना ही दिया है मस्ती की रेलगाड़ी ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑलरेडी आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आज बातचीत करने का कौन सा टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और इस टॉपिक के बारे में हम ड्यूरिंग द शो आप लोगों की राय भी लेते चलेंगे। और टॉपिक आज का ये है कि क्या आप लोग सुपरस्टिशंस को मानते हैं क्या? आर यू गाइज सुपरस्टिशियस? अगर हैं तो कुछ हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि कौन सी चीज़ आपको जो है सोचने समझने को मजबूर करती है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इस तरफ से नहीं जाना। कुछ लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ मीठा खाकर जाते हैं, ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है, इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो अगर बिलीफ है तो सब कुछ है, बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सुनना चाहते हैं हम आपसे, बताइएगा ज़रूर ड्यूरिंग द शो कॉल करके 416-593-0055। और आज है ट्यूसडे, मई 12 तारीख और प्लस 11 डिग्री सेंटीग्रेड है आज का तापमान, फील्स लाइक 10 डिग्रीज, और प्लस 12 आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जा, और 5 बजे से बरसात शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। 5 से लेकर रात के 8 बजे तक बरसात होगी, उसके बाद 10 बजे फिर से शुरू हो जाएगी और रात के 11 बजे आज का टेम्परेचर जा सकता है प्लस 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको महसूस हो सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है CMRFM 101.3 पर। व्हाट अ वंडरफुल डे, वी हैव अनदर डे टू फील हैप्पी इन आवर लाइव्स, वी हैव अनदर डे टू ब्रिंग स्माइल टू समबडीज फेस, वी हैव अनदर डे टू डू समथिंग रियली रियली नाइस इन आवर लाइफ। जो भी अचीव करना चाहते हैं, अभी आपके पास आधा दिन और है, उसका इस्तेमाल सही ज़रूर कीजिएगा। हमसे बात कर सकते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर द शो हमारे डायरेक्ट नंबर पर 416-569-7812। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, वापस लौटते हैं और बॉलीवुड के कुछ पन्ने पलटेंगे, देखते हैं कि आज के दिन में क्या एक्साइटिंग हुआ था और इन जनरल आज का दिन क्यों मज़ेदार है, क्या चीज़ें हैं जो आज के दिन को बनाती हैं खास। सो टाइनी सा ब्रेक, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
1: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: टाइम।
1: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
3: Sean Express.
4: Simply good. Retro style, old classics.
5: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
6: दोस्तों, आपका शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती है और आपको लिए चलते हैं अब पुराने दौर की तरफ और आप तक पहुंचाते हैं एक ऐसा गाना जो आज भी हजारों लाखों करोड़ों दिलों पर राज करता है। इस गाने में स्टाइल भी है, स्वैग भी है और रोमांस तो हर एक लफ्ज़ में बहता है। 60 के दशक का ये एवरग्रीन गाना जो है पेश करते हैं सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। गुलाबी आंखों का जादू कुछ ऐसा छा गया, दिल ने बगैर सोचे ही खुद को गंवा दिया। गुलाबी आंखों का जादू कुछ इस कदर छा गया कि दिल ने बगैर सोचे ही खुद को गंवा दिया। एक नज़र क्या मिली उनसे, हर ख्वाब जैसे हकीकत बन गया। और फिल्म द ट्रेन में राजेश खन्ना का ये गाना उनकी कूल और चार्मिंग पर्सनालिटी को पूरी तरह से सूट करता है। उनका अंदाज़, वो हल्की सी मुस्कान, आँखों का जादू और सब कुछ इस गाने में नज़र आता है। कहते हैं कि उस दौर में ये गाना यूथ का फेवरेट बन गया था और आज भी हर जनरेशन इस गाने को उतना ही पसंद करती है। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत एहसास को महसूस कीजिए और खो जाइए इन गुलाबी आँखों के जादू में। शॉन एक्सप्रेस पर

जी बस ऐसा ही होता है कि जब किसी की गुलाबी आंखें पसंद आ जाती हैं तो संभलना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी नज़र किया दोस्तों, और ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे गानों के गुलदस्ते, बातों के गुलदस्ते लेकर हम हुए हैं हाजिर। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती है शालिनी। डायरेक्ट नंबर टू रीच आस ड्यूरिंग द शो 416-593-0055। और आज का टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार है, और आज का टॉपिक कहता है कि क्या आप सुपरस्टिशियस हैं, क्या आप सुपरस्टिशंस में बिलीव रखते हैं, अगर रखते हैं तो क्या बातों पर आप बिलीव रखते हैं, कौन कौन से ऐसे सुपरस्टिशंस हैं जो आप हमारे साथ आज के शो में शेयर करना चाहेंगे। ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा 416-593-0055 पर। और बता दें कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ कि क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज़ एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टेरियो। खुद ही विंडोज़ एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम आपकी प्रॉपर्टी पर जाकर इंस्टॉल करती है। घर या अपने ऑफिस में एक्सेप्शनली गुड विंडोज़ एंड डोर्स आप लगवा सकते हैं। ग्रेट लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर, और प्राइस ऐसी जो आपके पॉकेट को सूट करती है। इसके अलावा फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं इस फास्ट ग्रोइंग टीम के साथ तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए 416-732-3600, 416-732-3600। इसके अलावा अब दोस्तों देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आपको बता दें। दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जा सकते हैं कहीं भी एक्सेप्शनली गुड डील्स के साथ। नाउ पहली डील है टोरंटो से दिल्ली या मुंबई, मई के महीने में वन वे लगी है $820। नाउ टोरंटो से अमृतसर वन वे इन द मंथ ऑफ मे 960 दो बैग्स के साथ। दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप है लिमिटेड सीट्स के साथ $1,490। नाउ टोरंटो से बेंगलुरु दो बैग्स के साथ सितंबर से अक्टूबर तक राउंड ट्रिप $1,340। एंड टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं, सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है $1,590 में दो बैग्स के साथ। एंड दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर। टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। हमारा साथ दीजिए दोस्तों 4 बजे तक CMRFM 101.3 पर। एक बहुत ही अमेजिंग पंजाबी गाने की फरमाइश आई है, आइए साथ मिलकर इन्जॉय करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सुपरस्टिशंस में बिलीव रखते हैं, अगर रखते हैं तो कौन से सुपरस्टिशंस पर आप बिलीव रखते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। शायद आप कुछ ना कुछ जीत कर जाएँ हमारे शो से। आज एक विनर हम निकालेंगे यू नो टूवर्ड्स एंड ऑफ द शो। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। गुड आफ्टरनून।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157.
3: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा इडली वड़ा स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर अनलिमिटेड सर्विंग्स अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास बिरयानी एंड लॉट मोर मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600 दैट्स 905-789-6600
4: क्या आप अपने घर में लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं तो भरोसा करें केसीडीएल कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर सेपरेट साइड एंट्रेंस मॉडर्न वॉशरूम प्रीमियम फ्लोरिंग कस्टम किचन्स फुल होम रेनोवेशन पेंटिंग और विंडो अपग्रेड्स हर काम प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग रीसर्फेसिंग कॉन्क्रीट इंटरलॉकिंग और बहुत कुछ एक ही ट्रस्टेड नाम घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट KCDL Construction Group, आपकी पहली पसंद. Call Mannat Kankwal, 647-966-5681. 647-966-5681.
5: भाई मैंनू कहना भी पैना है, ते तो अनु सुनना भी पैना है. डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओ दा ता जवाब है नहीं
6: सोने फेस वाली है उच्ची हील वाली है गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है
5: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263 कांडा ऑप्टिकल द नेम यू कैन ट्रस्ट

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
4: News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
5: नमस्कार। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के लावान द्वीप सहित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी, ये दावा CBS न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में गतिरोध बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की तेजी आई। और उधर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नीट UG परीक्षा रद्द कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष सेलार ने कहा कि वे इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का इफेक्ट है। उधर दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कांस आज से शुरू हो चुका है। ये 12 से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित हो रहा है।
6: और दोस्तों, अब नजर डालते हैं ताजा लोकल खबरों की तरफ। सबसे पहले एजुकेशन अलर्ट। ओंटारियो में स्पेशल एजुकेशन सिस्टम पर बड़ा सवाल। ऑडिटर जनरल शेली स्पेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कई स्कूल बोर्ड्स, जिनमें टोरंटो कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड भी शामिल है, स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट सपोर्ट देने में फेल हो रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि कई स्टूडेंट्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर स्कूल से एक्सक्लूड किया गया। 2020 से 2024 के बीच हर साल ऑन एन एवरेज 239 स्टूडेंट्स जो है एक्सक्लूड किए गए हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का सही पालन नहीं हो रहा है। वॉन से खबर आ रही है एक ट्रैजिक एक्सीडेंट की। डफरिन स्ट्रीट और कैरावे ड्राइव एरिया में हुए कोलिजन में मोटरसाइकिलिस्ट की मौके पर ही मौत हो गई है। यॉर्क रीजनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उधर ओंटारियो गवर्नमेंट की AI स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऑडिटर रिपोर्ट में कहा गया कि कई सिविल सर्वेंट्स अनसेफ AI वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं। सेंसिटिव डेटा लीक होने का रिस्क है। हेल्थ केयर में AI नोट टेकिंग टूल्स में इन एक्यूरेसीज हैं। गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स लागू करने की मांग की गई है। एक क्राइम अलर्ट। मिसिसागा शूटिंग केस में कैनेडा वाइड वारंट जारी हो चुका है। कार्लोस रोड्रिग्यूज पर अटेम्प्टेड मर्डर समेत 7 चार्जेस लगे हैं। ये इंसिडेंट कैनेडी रोड और एग्लिंगटन एरिया में हुआ था, जहां 2 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत लाइफ थ्रेटनिंग भी थी। प्रीमियर डग फोर्ड ने टोरंटो को मल्टीनेशनल डिफेंस बैंक होस्ट करने के लिए बेस्ट चॉइस बता दिया है। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ऑटवा और वैंकूवर इस रेस में शामिल हैं। फोर्ड ने साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी सिटी को अटैक नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव पिच जरूर देंगे। टोरंटो के सॉफ्ट कॉन्डो मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट मूव। जेस्टा ग्रुप करीबन $500 मिलियन के अनसोल्ड कॉन्डोज खरीदने की प्लानिंग कर रही है। पहली डील डाउनटाउन में 30 मिलियन की है। कंपनी का अगले 12 महीनों में 1000 यूनिट्स टारगेट करने का प्लान है। अब नजर डालते हैं मौसम की तरफ। इस वक्त बाहर पाटली

0: जी दोस्तों, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है। बड़ी इंटरेस्टिंग सा गाना, फिल्म का नाम कालिया। आपकी नज़र क्या, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। थैंक यू सो मच एक बार फिर से इस आफ्टरनून हमें ज्वाइन करने के लिए। अब दोस्तों ये बता दें कि कल का दिन तो अच्छा था और आज का दिन और भी बेहतर है। क्या एक्साइटमेंट है आज के दिन में, ज़रूर बता दें। सबसे पहले आज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूजुअली इग्नोर करते रहते हैं। जब इग्नोर करते हैं तो वो एक बहुत ख़तरनाक रूप भी ले सकती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम अवेयरनेस डे। जी, जितना लंबा नाम है ना उतनी ही लंबी ये प्रॉब्लम भी चलती है हमारी ज़िंदगी में। हमें एक दिन लगता है थोड़ा सा थक गए, दूसरे दिन लगता है थोड़ा सा और थक गए, लगता है काम ज़्यादा हो गया, लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया। ये चीज़ को हम बड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम टायर्डनेस एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। सो लिसन टू योर बॉडी, रेस्ट इज़ नॉट लेजीनेस, इट इज़ नेसेसरी। तो ये पहली बात है। और नेचर लवर्स के लिए आज का दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। प्लांट्स हमारी लाइफ का बेस होते हैं, क्लीन एयर, फूड और एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। प्लांट मोर लिव मोर, ऐसा कहा जाता है। और आज का सबसे स्पेशल और इमोशनल डे है इंटरनेशनल नर्सेस डे। नर्सेस जो हर मुश्किल वक्त में पेशेंट्स के साथ खड़ी रहती हैं, उनकी केयर करती हैं डेडिकेशन के साथ, और सैक्रिफाइस को हम सभी लोग सैल्यूट करते हैं। रियल हीरोज वेयर स्क्रब्स, ऐसा कहा जाता है नर्सेस के लिए। और जब नर्सेस की बात रही तो हॉस्पिटल्स का नाम क्यों नहीं लेंगे। आज है नेशनल हॉस्पिटल डे और हॉस्पिटल्स जहाँ पर हीलिंग और साथ साथ हमें होप भी बहुत मिलती है और लाइफ सेविंग एफर्ट्स भी वहाँ पर होते हैं। कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं ना उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि भगवान ज़िंदगी देता है, ऐसे ही डॉक्टर्स भी हमें ज़िंदगी देते हैं, हमारे बच्चों को ज़िंदगी देते हैं। तो डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये तो एक तरह की पूजा की जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमारी ज़िंदगी लंबी होती है, हमारा रख रखाव होता है, वी फील मच बेटर। सो आज का दिन डेडिकेटेड है, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या हमारे लिसनर्स नर्सेज हैं, ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे आपके ज़िंदगी के बारे में कि कैसे रहती है आपकी ज़िंदगी, किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ज़रूर हमारे साथ डिस्कस करें ऑन एयर, वी वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू कि जब आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो कितनी खुशी होती है और कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस लगते हैं अगर आप नर्सेज हैं या किसी और तरीके से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हमें जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं बहुत कुछ ऐसा देखना होता है जो दिल नहीं करता देखने का। इतनी तकलीफ, इतना पेन लोगों को देखा है जब भी हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं। तो उन लोगों की सोचिए जो वहीं पर काम करते हैं, जिनका काम ही है रोज़ाना हॉस्पिटल जाना। तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। जितने भी लिसनर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आज की आफ्टरनून में, अगर आप किसी भी तरीके से किसी हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड हैं आप या कोई नर्स हैं, ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस के बारे में और कैसी रहती है आपकी ज़िंदगी। ज़रूर हमारे साथ बात करें 416-593-0055। और आज का जो एक और जो टॉपिक का जो शुरू में मैंने बोला था कि आपसे मैं ये पूछती हूँ कि क्या आप सुपरस्टिशियस हो, क्या आप भी ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं जिसका शायद साइंस से कोई कनेक्शन ना हो लेकिन दिल फिर भी मानता है उन चीज़ों को। जैसे घर से निकलते वक्त आपको छींक आ जाए तो रुक जाना, राइट। उसके अलावा काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो टेंशन हो जाना। एग्ज़ाम वाले दिन लकी पेन का ही इस्तेमाल करना। वैसे इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ, मैं भी आप लोगों को बताऊँगी मैं कौन कौन से सुपरस्टिशंस पर बिलीव करती हूँ। और यही मुझे आपसे भी सुनना है कि आप कौन कौन से सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते, ज़रूर बताइएगा 416-593-0055। कोई इंपॉर्टेंट डे पर कोई आप लकी कलर पहनना चाहते हैं, रात में झाड़ू नहीं लगाने चाहते हैं कि रात में नहीं लगानी चाहिए झाड़ू, 11:11 पे कुछ मैनिफेस्ट करना है वगैरह वगैरह, अगर इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशंस आपकी ज़िंदगी में हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें 416-593-0055 पर। और यहाँ पर आपको बता दें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए आप पैटियो कवर, पर्गोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स लगवा करवा सकते हैं. फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स हैं, स्टाइलिश मॉडर्न डिज़ाइंस हैं, कंपेटिटिव प्राइसिंग है, हर सोल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. तो कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन. नंबर इज 416-831-4790, 416-831-4790. और अगर आप परेशान हो चुके हैं पेस्ट्स को लेकर, चूहे, खटमल, कॉकरोचेस और यू नो कोई वाइल्ड लाइफ अगर आपके घर में आ गई है, इफ़ यू आर रियली टायर्ड ऑफ ऑल दिस, तो एक नंबर डायल करना है आपको वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल का, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं अगेंस्ट पेस्ट्स एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ. 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है. इको फ्रेंडली, सेफ इनके ट्रीटमेंट्स रहते हैं. रिस्पॉन्स टाइम इनका बड़ा फास्ट है. तो अयान काशिफ जी से राइट अवे कॉल कर लें, 647-966-4355, 647-966-4355. और हमारी लाइंस खुली हुई हैं दोस्तों. आज हम स्पेक्स एक्सप्रेस स्पॉन्सर कर रहे हैं आज का टॉपिक, और स्केचर्स के पोलराइड सन ग्लासेस दिए जा रहे हैं. वन पेयर दिया जाएगा आज, और देखते हैं कौन रहेगा आज की बातचीत का विनर. बिफोर एंड ऑफ द शो हम उनका नाम भी अनाउंस करेंगे. तो आपसे हमने पूछा था, आर यू सुपरस्टिशियस और नॉट? इफ़ येस, तो कौन कौन से ऐसे सुपरस्टिशंस हैं जिन पर आप बिलीव रखते हैं? हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे करते हैं बातचीत. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. गुड आफ्टरनून, गो अहेड प्लीज.
1: हेलो,
0: हाँ जी, कैसे हैं आप जी? बताइए. वेलकम जी, आप कॉल कर सकते हैं दोबारा 416-593-0055 पर, और हमें बताइए कि कितने सुपरस्टिशियस हैं आप अपनी ज़िंदगी में. नज़र ना लगे इसीलिए काला टीका लगाना, नई गाड़ी पर नींबू और मिर्च लटकाना, या यू नो कोई लकी कलर पहनना, लकी पेन का इस्तेमाल करना. व्हाट आर द सुपरस्टिशंस इन योर लाइफ दैट यू एब्सोल्युटली ट्रूली बिलीव इन? लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर, गुड आफ्टरनून.
2: हेलो,
0: हाँ जी, गो अहेड प्लीज, अपना रेडियो बंद कर दें.
2: मैं शक्कू बोल रही हूँ, कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक शक्कू, आप कैसी हैं?
2: बस, पहचाना ना मुझे?
0: पहचान लिया, आपसे बहुत बात हुई है शक्कू, थैंक यू सो मच. बताइए.
2: अभी मैं सुन रही थी, पार्क में बैठी थी तो.
0: अच्छा,
2: हाँ जी, तो मैं इसमें करती हूँ, अगर आप जॉब पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, या कोई ऐसे नया घर कोई खरीदता है, या कोई प्रेग्नेंट होता है तो पीछे में कोई टोकता है ना, तो कहते हैं कि काम रुक जाता है उसमें, कोई टोके ना कोई रोके नहीं, ठीक है?
0: अच्छा.
2: उसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं जब भी बच्चों को, हाँ जी बोलिए.
0: अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपका मतलब है कि जब भी कोई जॉब पर जाता है, बाहर जाता है, पीछे से किसी को टोकना नहीं चाहिए, is that right?
2: कोई टोके ना कोई रोके नहीं. वो मीरा का भजन है ना पुराना, मीरा प्रेम दीवानी, कोई एक ये. और दूसरा, मैं ना प्लैनेट जो है ना आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कि ट्यूसडे को जैसे मैं ऑरेंज पहनती हूँ या रेड, फ्राइडे को संतोषी माता का करती हूँ ऑरेंज, ऐसे जैसे जैसे डे वैसे मैं खाना भी वैसे ही बनाती हूँ ग्रीन, वेडनेसडे को कपड़े भी वैसे ही पहनती हूँ. यस, तो वो आपको प्लैनेट है ना, यस, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं. और मैं जब भी पूजा करती हूँ हनुमान जी की, तो रेड कलर ट्यूसडे को, राइट, सैटरडे को ब्लू, या बहुत इफेक्ट करता है ये, तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ बचपन से.
0: अरे वाह, तो आपकी फैमिली में बाकी लोग भी फॉलो करते हैं सारे चीजों को शक्कू जी?
2: पहले तो मेरे बच्चे नहीं करते थे, कहती क्या फटकड़ी की नजर उतारती है मम्मी, भगवान बड़ा है सबसे. तो मेरी बेटी ना श्यामला टैगोर की बेटी है ना, वो बोर्ड करती है, वो किसके? अच्छा. साथ में मुझे याद नहीं है अभी नाम, तो उसका 1.5 घंटे का इंटरव्यू था किसी के साथ में. अच्छा, तो अच्छा, मेरी बेटी ने मुझे सुनाया, कहती है कि मम्मी, उसके बाद वो बिलीव करने लगी. एक महीने पहले से वो सुन रही है. मैंने कहा मम्मी कुछ कहती है तो नहीं सुनते हो,
0: लेकिन सोहा अली खान
2: तो कहते कि मुझे वो याद नहीं है उसका, क्योंकि हाँ. उसने मेरे भेजा था, तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, 1.5 घंटे का था उसका.
0: ओके, वेरी गुड.
2: वो बनाती है काफी, हाँ, तो कहती है कि ये सब रिलेटेड है सारे आपस में, एस्ट्रोलॉजर अपना जो है, सारे सब मतलब ये हैं इनके साथ में. कनेक्टेड है तो इफेक्ट पड़ता है, जो भी कोई टोकता है पीछे में आपको कोई बुलाता है तो काम रुक जाता है, तो किसी को बोलो मत कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी मेरा एक्सपीरियंस
0: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
2: हाँ जी
0: वंडरफुल, थैंक यू सो मच शकू जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है सुपरस्टिशंस के बारे में। जी वेलकम।
1: ओह हाय पुनीत, हाउ आर यू?
0: जी जी पुनीत बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
1: बस ठीक है। एनीवे यू नो व्हाट आई वांट टू से इज यू नो आई हेल्प द प्रीस्ट्स, आई कैन टॉक अबाउट अदर पीपल्स सुपरस्टिशंस राइट?
0: हां यू कैन।
1: ओके ओके, नाउ द थिंग इज यू नो आई हेल्प द प्रीस्ट्स ऑन संडेस टू लुक आफ्टर द टेंपल। Now, there are some people, there we give prasad to people, you know, in the temple, right? Mm-hmm. And some people refuse to take the prasad. I don't know what superstition they have against the prasad, that they don't want to take the prasad from the people, from the priests.
0: Okay.
1: So, you know, they always refuse it, you know, whenever they come. Now, if they don't want the prasad of the temple, I don't know why do they bother to come to the temple. This is what I'm wondering.
0: God. Yeah, I've never heard this, Puneet. Seriously, I've never heard this superstition that they wouldn't accept prasad from a priest. This is the first time I'm hearing.
1: Yeah, so, from the temple, you know. I I try to give some prasad to the people, you know, and they refuse it. So I don't know why do they bother to come to the temple, you know, if they don't want the prasad of the temple, you know.
0: Do they want to pick up? Do they want to pick up themselves? Is that the reason? Like, they
1: no,
0: want to,
1: they just don't take it.
0: They don't take it. Wow. That's the first time I'm hearing this.
1: So sometimes I wonder why do they bother to come to the temple, you know, I mean, if they don't want to take anything from the god.
0: That's right. That's right. Absolutely. Thank you so much, Puneet. I truly appreciate your comments. Thanks a lot for joining us.
1: Thank you.
0: जी तो आपसे मैंने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा फनी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरस्टिशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। क्या किसी सुपरस्टिशन ने आपको सच में डरा दिया है, या फिर आप कहते हैं कि इनमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता या करती? सो वेल, कॉल कीजिए और अपनी मज़ेदार स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। 4 बजे तक आर लाइंस वुड बी ओपन एंड बिटवीन द सेगमेंट्स आप लोगों से बात करते चलेंगे। 416-593-0055 416-593-0055। छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
3: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर।
5: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
6: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।
7: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।

Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर. कॉल 647-766-4335, 647-766-4335.

0: चार रोज बात न करने से आएगी, वादे में थोड़ी जान मुकरने से आएगी। शारिक कैफी साहब के इन खूबसूरत अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि ईरान के लावान द्वीप सहित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। आग लगने की वजह से वहां उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हमला अप्रैल में हुआ जब ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। ईरान ने रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने की बात कहते हुए यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए थे। हालांकि यूएई ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी। ये दावा सीबीएस न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अप्रैल में सीज फायर के ऐलान के कुछ दिन बाद ईरान ने कई विमान पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस भेजे। रिपोर्ट में कहा गया कि भेजे गए विमानों में ईरानी एयरफोर्स का विमान भी शामिल था। ये लॉकहीड हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खुफिया और निगरानी मिशन वाला वर्जन माना जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में गतिरोध बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा तेजी आ गई। सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता की वजह से बाजार में फिर तनाव बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.47 यानी 3.3% बढ़कर $107 प्रति बैरल पहुंच गई है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहाँ पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आए, सीखें कि हम आपको कौन सा बिजनेस सिखा सकते हैं। ये है विन लाइफ टाइम।
1: हाउ नाइस, क्या बात है कि मतलब अगले दिन उठकर सोचना ना पड़े कि आज क्या करें। यू नो, रोज हम कहते हैं ना, कुआं खोदो और उसमें से पानी पियो, तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना कि बस स्मूथ चलती रहे हमारी लाइफ में, तो ऐसी स्किल हमें आ जाए। तो क्या ये स्किल इस लेवल पे पहुंचना, खैर आपका लेवल तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऊंचा होगा क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन अगर मैं बोलूं सब्सटेंशली गुड अमाउंट कमाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है?
2: कुछ लोग 14 दिन में सीख जाते हैं, मोस्ट यूजर्स हमारा सॉफ्टवेयर 3 माह के अंदर अंदर सीख लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, 4 आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास 8 मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे। खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे। आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300, आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स $1,500।
1: अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल। तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना, अपनी हार्ड एंड हनी आपने किसी और कारोबार से बनाई है, अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी। हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है।
1: ओह, वेरी नाइस। तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें।
2: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है। हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिसेज में होगा इस सैटरडे, आप आए, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे।
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ। कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर द सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM, 9052061008, 9052061008, और विजिट winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
2: Thank you, Ji. Take care.
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.

0: देखते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच जनता से जनता के रिश्ते तनाव कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। होसबोले ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध पुराने हैं और हम एक ही राष्ट्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर भरोसा कम होने के कारण पाकिस्तान के खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए, ये लोगों को बांटता है। उन्होंने पहले 2023 में भी सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। उदय निधि ने विजय के शपथ ग्रहण समारोह का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु के पारंपरिक तमिल आह्वान गीत को कार्यक्रम में तीसरे स्थान पर रखा गया, जबकि परंपरा के मुताबिक इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। उदय निधि ने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमिलनाडु में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में तमिल थाई वाजियू को पहला स्थान मिलना चाहिए। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नीट परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी थी। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 6 से 8 दिन में नई तारीख का ऐलान होगा। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों को कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, विदेश यात्राओं से बचें। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष सेलार ने ऐलान किया कि वे इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उधर मध्य प्रदेश में विधायक जो हैं वो कारों का कारवां लेकर निकल रहे हैं, जिसमें एक नेता ने जो पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे 700 कारों का काफिला लेकर पहुंचे, जिसके बाद उनकी जब मीडिया में किरकिरी हुई तो मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये बयान दिया और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मितव्ययिता बरतें और नेता जो हैं वो पेट्रोल और डीजल जो कारें हैं उनका उपयोग कम करें। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज इलेक्ट्रिक स्कूटर से मंत्रालय पहुंचे और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी शुरू कर दी है और उनका कहना है कि वो कार का उपयोग तभी करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अब खबर बॉलीवुड से। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कांस आज से शुरू हो चुका है। ये 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित हो रहा है। आलिया भट्ट इस फेस्टिवल में शामिल होने फ्रांस पहुंच चुकी हैं। फ्रेंच रिवेरा के होटल मार्टिनिच के बाहर आलिया की पहली झलक सामने आई। तस्वीरों में आलिया कॉर्सेट स्टाइल प्रिंटेड बॉल गाउन में नजर आई। इस ड्रेस की सबसे बड़ी खासियत इसका वाटर कलर जैसा प्रिंट था। गाउन पर पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लेवेंडर और हल्के पीले रंग के शेड्स थे जो किसी गार्डन पेंटिंग जैसे एहसास करा रहे थे। आलिया ने अपने इस लुक को काफ़ी सिंपल और क्लासी रखा। फिलहाल इस ड्रेस के डिज़ाइनर के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। आलिया कांस में लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर शामिल हुई हैं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज़ जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। कॉल 647-766-4335, 647-766-4335। शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।

जिंदगी में तुम बहार बनके, बहुत प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी। आपकी नज़र करेंगे हम शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। और इस गाने की फरमाइश आई हुई है दोस्तों, और बहुत प्यारा गाना है, डेफिनेटली साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो भी आपको मैं बता देती हूँ कि क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एक बार फिर से हम अगले घंटे में पहुँच चुके हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, लगता है ऑलरेडी तैयार हैं टॉपिक के साथ। और उनसे पूछते हैं कि सुपरस्टिशन के बारे में उनका क्या कहना है, कितने सुपरस्टिशियस हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर वो बिलीव रखते हैं। थोड़ी सी मस्ती करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मजाक भी करेंगे। कोई चीज़ आप अपने दिल पे ना लीजिएगा। लेट्स सी कि हमारे जो लिसनर हैं, जो कॉलर हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी वेलकम। जी क्या कहना चाहेंगे आप, ऑन एयर हैं, बताइए। ऑल राइट, तो लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हैं अपने जवाब के साथ, तो ज़रूर अपने जवाब के साथ जब तैयार हों, यू कैन कॉल अस बैक इन स्टूडियो 416-593-0055। कौन से सुपरस्टिशंस पर आप बिलीव करते हैं, कुछ ऐसी बातों पर क्या आप बिलीव करते हैं जिनका शायद साइंस के साथ कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी आपका दिल कहे कि मैं ये चीज़ मानूं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे काम में सक्सेस मिलती है, अगर मैं लोगों तक बात पहुँचा देता हूँ, जैसा शक्कू जी ने कहा, आपको लगता है कि अब मैं अगर कोई बात पहुँचाती हूँ लोगों तक तो मेरा काम नहीं बनता, मुझे बताना नहीं चाहिए, मुझे चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए जब तक काम बन नहीं जाता है। कुछ लोगों को ये सुपरस्टिशन होता है, कुछ लोगों को सुपरस्टिशन होता है कि कल ही मुझे पता चला कि बाहर निकलते वक्त घर से ये बात नहीं करनी चाहिए कि वापस लौट के हमें खाना खाना है, राइट, और ये कहते कहते आप बाहर चले गए। सो दैट इज़ नॉट कंसीडर टू बी अ गुड थिंग। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हम रुक जाते हैं और कुछ खा के तब बाहर जाते हैं, तो ये भी एक तरह का सुपरस्टिशन हो गया। गाड़ी चलाने से पहले कुछ लोग कुछ सर्टेन चीज़ें करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, ये भी एक सुपरस्टिशन है। तो क्या सुपरस्टिशन है और क्या आपके पास कोई रीज़न है उसको बिलीव करने का कि ये भाई मेरे साथ हुआ था इस वजह से मैं सुपरस्टिशियस हूँ, मैं इस चीज़ों को मानता हूँ, और बताइए ज़रूर हमें 416-593-0055। इट्स 317 राइट नाउ, और ये बड़ा प्यारा सा गाना है, आपकी नज़र करते हैं फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी। उदित नारायण की आवाज़ है, मस्ती की रेलगाड़ी पर एंजॉय।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: जी दोस्तों, आज के डेट सॉल्यूशन स्पेशल सेगमेंट में बात होने जा रही है मैक्सिमम डेट रिलीफ की, यानी आप कैसे अपने कर्जों के बोझ तले जो दबे हुए हैं उस बोझे को कम कर सकते हैं, कैसे कर्जा अपने सर के ऊपर से हटा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं आयशा मुनव्वर, जो बड़ी रिनाउंड इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिट काउंसलर हैं, और आपको बताएंगी कि कैसे सही प्लानिंग के साथ, सही लीगल ऑप्शन के साथ आपको एक अच्छा सा सल्यूशन मिल सकता है। तो अगर आप भी लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स के फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो अब टेंशन छोड़िए और अब सल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 416-428-2165, 416-428-2165। आयशा जी, वेरी वार्म वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
2: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देयर आर ऑप्शंस जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी एस्टैब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू, और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ी हो गई, गाड़ियाँ हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि ईजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, इजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई बार इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई बार जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज टू बी फेयर और जो कहते हैं लेजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए। बट एनीवेज फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन give us a call. My phone number is 416-428-2165. That is 416-428-2165. Thank you very much.
1: जी, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए आयशा जी। और आपका नंबर फिर से 416-428-2165। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। और अपने सुपरस्टिशंस आज आप हमें बता रहे हैं, कौन इसको हिंदी में अंधविश्वास भी कहा जाता है, लेकिन मुझे ना ये वर्ड अंधविश्वास बहुत पसंद नहीं है। तो क्योंकि कभी तो कुछ चीज़ें अंधविश्वास होती हैं, लेकिन कई बार चीज़ें जो हैं विश्वास भी होती हैं। तो अंधविश्वास वैसे कहा जाता है सुपरस्टिशंस को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अंधविश्वास है या विश्वास है, जो भी है आपका बिलीफ है एंड वी ट्रूली रिस्पेक्ट योर बिलीफ। लेकिन फिर भी कभी कभी फ़न के लिए और कभी कभी नॉलेज के लिए भी, यू नेवर नो कि जो आपका सुपरस्टिशन है वो सही हो और बहुत अच्छा कर रहा हो, आपके लिए ये चीज़ काम कर रही हो। और ऐसे ही नुस्खे हम दूसरों को भी दे सकते हैं कि अगर कोई इन चीज़ों में बिलीव करता है तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। और एक आज विनर निकालेंगे और विनर होगा स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ से स्पॉन्सर्ड और आप तक पहुँचाए जाएंगे, एक विनर को दिए जाएंगे स्केचर्स के पोलराइड सनग्लासेस वन पेयर। तो दैट इज़ गोइंग टू बी आज के कॉन्टेस्ट विनर का तोहफा। और आप जो है हमसे बात कर सकते हैं स्टूडियो के इस नंबर को डायल करके 416-593-0055। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। गुड आफ्टरनून, वेलकम।
3: गुड आफ्टरनून
1: जी, कौन बात कर रहे
3: हैं?
1: जी
3: आमिर।
1: आमिर जी, आमिर बताइए।
3: ये कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है, बिल्ली तो रास्ता नहीं काटती, हम बिल्ली तो गुजर गई अपने रास्ते से, हम उसका रास्ता काटते हैं।
1: अच्छा
3: तो जब हम
1: आप बिलीव करते हैं इसमें?
3: जी
1: आप बिलीव करते हैं इसमें कि बिल्ली रास्ता काटती
3: है? मैं तो देखा है, देखा है कि जब हम बिल्ली का रास्ता काटते हैं तो बिल्ली को जो है उसके ऊपर मुसीबत आती है, और जब बिल्ली हमारा आगे से रास्ता गुजरती है ना, तो हम बिल्ली का रास्ता काटते हैं, बिल्ली पे मुसीबत आती है, जब हम गुजर जाते हैं हमारे बिल्ली रास्ता हमारा काटती है तो बिल्ली को अच्छा शिकार मिलता है।
1: ओह माय गॉड, जी जी जी, अच्छा तो आप इस चीज में मानते हैं, इसके अलावा तो, कोई और सुपरस्टिशन में आप बिलीव रखते
3: हैं? दूसरा ये कहते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, कौवा कहता है मुझे तो किसी की इंसानों की लैंग्वेज समझ में नहीं, इतनी सारी लैंग्वेज हजारों की तादाद में लैंग्वेज बोलते तो मुझे समझ में आती झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हाँ, हमारे घोंसले को चले तो हम उसको काटते हैं।
1: वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच आमिर जी, बड़ा मजा आया, थैंक यू। भाई सोचने का अपना अपना तरीका है और अपना अपना बिलीफ है, अपना अपना मानना है, और वी ट्रूली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी बिलीफ दैट यू ऑल हैव। तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे सुनकर, हमें डेफिनेटली बताते चलिएगा ड्यूरिंग द शो, और यहाँ पर देओल ट्रैवल के जो लेटेस्ट डील्स हैं वो फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। आज के बेस्ट ऑफर्स, टोरंटो से दिल्ली या मुंबई जा सकते हैं मई के महीने में वन वे $820 में। नाउ टोरंटो से अमृतसर वन वे इस महीने 960 में दो बाइक्स के साथ। दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा हुआ है $1,490 में, लिमिटेड सीट्स हैं। इसके अलावा टोरंटो से बेंगलुरु दो बैग्स के साथ स्पेशल है सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप 1340। नाउ टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,590 दो बैग्स के साथ, लिमिटेड टाइम ऑफर है। दो लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, सो 588-5100 एंड 588-4200। ये अमेजिंग डील्स के लिए आप रब्ता कायम कर सकते हैं देओल ट्रैवल में। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेंगे दोस्तों, वापस लौटते हैं बहुत प्यारे से गाने के साथ, स्टे ट्यून्ड।
4: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
6: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
7: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
8: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी.
9: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
10: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
9: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
10: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
9: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
6: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, जमाना शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.
11: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय विन लाइफ टाइम. अर्न कंसिस्टेंट मनी बाय वर्किंग फॉर ओनली 90 मिनट्स अ डे. दुनिया भर में कहीं से भी काम कीजिए विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज. अटेंड कीजिए फ्री नो ऑब्लिगेशन सेमिनार दिस सैटरडे एट 1:30 एंड चेंज योर लाइफ. कॉल 905-206-1008, 905-206-1008
12: और विजिट winlifetime.com. नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: सुपर हिट गाना तम्मा तम्मा लोके तम्मा, और ये जो है 90s का गाना है जिसको नई थाली में परोसा गया है, नए स्टाइल से उसको रीमिक्स किया गया है, और एवरीवन लव्स द सॉन्ग, दे लव द बीट। तो जिंदगी में भी ऐसे ही बीट्स चलती रहती हैं दोस्तों, जब हमारी बॉडी चलती है तो बीट्स चलती हैं, जब बॉडी बंद हो जाती है चलनी तो भाई बीट्स भी चलनी बंद हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी स्मूथ रहे तो अपने आप को आप परफेक्ट शेप में रखिए। और जैसा आज का दिन जो है बात भी हम कर रहे थे कि जो क्रॉनिक फटीग आपको रहता है, इसको हम कहते हैं कि ऐसी थकावट हो गई, लेकिन उसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू नो, आप अगर बैठ रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो, उसका मतलब है कि आपकी बॉडी इज़ नॉट 100%। यू शुड लिसन टू योर बॉडी कि क्या परेशानी है बॉडी को, वाई द बॉडी इज़ एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए आपकी बॉडी से जुड़ी सारी परेशानियों का सिर्फ एक सोल्यूशन है, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, और पूरी तरह से उनको मिरकल गुरुजी भी कुछ लोग कहते हैं, बिकॉज उनकी दवाइयों में एक तरह का मिरकल होता है दोस्तों। और जैसे कुछ दवाइयों में ये भी होता है कि बहुत वक्त लगता है आपको ठीक होने में, लेकिन ये बहुत क्विक असर करती हैं, महीनों में भी नहीं, हम दिनों की बात कर रहे हैं, हफ्तों की भी बात नहीं कर रहे, लेस देन अ वीक की बात कर रहे हैं। कई बार इस तरह के भी मिरकल्स होने होते हुए लोगों ने देखे हैं। सो वेल, 9 पीढ़ियों के अनुभव के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। सबसे पहले नंबर 4374383399। गुरु जी नमस्कार एंड वेलकम टू द शो।
1: नमस्ते नमस्ते जी, कैसा है जी आप?
0: बिल्कुल ठीक गुरु जी, आप कैसे?
1: भगवान भगवान आशीर्वाद से बहुत अच्छा है।
0: क्या बात,
1: हमारा लिस्टर को भी बहुत अच्छा होने के लिए आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का बर्थडे है आज, सारा लोगों को हनुमान जी का, श्री राम जी का रक्षा होना, सारा लोगों को अच्छा होना है, यही प्रार्थना कर रहा है। अभी भी भगवान को प्रार्थना करके बहुत लोग आ गया था उसको देख के, अभी तो थोड़ा फ्री हो गया, आप फोन किया था अच्छा हो गया, और बहुत लोग इधर आ रहा है हमारा शो सुन के,
0: जी जी
1: बहुत भाई भाई लोग आ रहा है, सारा लोग ठीक हो रहा है ऊपर वाला के आशीर्वाद से।
0: क्या बात है, क्या बात है गुरु जी,
1: उसमें ज्यादा लोग आ रहा है क्रोनिक डिसीज से
0: जी,
1: या क्रोनिक डिसीज बहुत साल से रहता है वो नहीं जाता जा पाता है, उसमें आर्थराइटिस एक है, लोअर बैक पेन एक है, और सायटिका एक है, दूसरा वो नमनेस हो जाता है, सुन जाता है वो पैरों में बॉडी में सुन हो जाता है, और सूजन भी होता है, सूजन
0: जी,
1: वैसा प्रॉब्लम के लिए बहुत लोग आ रहा है, सारा लोग ऊपर वाला का से ठीक हो रहा है।
0: क्या बात है, क्या बात है गुरुजी?
1: अभी क्या मैं बताता हूँ, इस कंट्री में, हमारा इंडिया कंट्री में बहुत लोग इधर को लोग उधर जाने के टाइम में गुरु जी मेरा अच्छा होता है, इधर आने के टाइम में मेरे को बीमार हो जाता है वो सब बता रहा है, उसको कारण क्या है, ये क्लाइमेट इधर का क्लाइमेट, इधर का हवा अलग है, हमारा देश में क्लाइमेट हवा अलग है, इसलिए बीमार इधर आने के टाइम में बोन्स में ताकत कम हो जाता है, और वो सर्दी अंदर जाता है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है इधर का क्लाइमेट में, इसलिए दर्द दर्द हो जाता है।
0: ओके जी, तो आपको लगता है कि गुरुजी अगर हमने जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें हो रही है, हम राइट अवे अगर उसको टैकल नहीं करते तो वो बहुत ज्यादा भयानक शेप भी ले लेती है, और एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई होती है, ऐसा आपको लगता है?
1: राइट राइट जी, पहले क्या होता है हमको थोड़ा प्रॉब्लम आने के टाइम में देख लेते हैं ये क्रोनिक नहीं हो जाता है, ये वैसा परवाने छोड़ के वैसा चाहिए तो ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद ये क्लियर होना है, ठीक होना है, थोड़ा मुश्किल है।
0: ओके,
1: वो छोटा होने के टाइम में देखना है, कोई भी प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास लास्ट वीक आ गया तो एक स्किन डिसीज का प्रॉब्लम है, वो भी वैसा बोल रहा है गुरुजी मेरे को पहले छोटा हो गया कुछ नहीं होता, बोला ये एक्जिमा वो नी तक ऊपर आ गया था, नी तक आ गया था, उसको दवा दिया आज मेरे को फोन कर रहा है गुरु जी मेरे ठीक हो गए वैसा बोल रहा है, वैसा क्रोनिक डिसीज से, यस क्रोनिक डिसीज से हम ठीक करता हूँ भगवान आशीर्वाद से।
0: वेरी गुड गुरु जी, और

0: मेला लगा रहता है आपके पास, लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप स्कारब्रो
1: आपने
0: जी, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और एक तरह का बड़ा डिवाइन एटमॉस्फेयर है। और एक बड़ी अच्छी बात ये भी है गुरुजी कि हर एक जाति और धर्म के लोगों को आपने वेलकम किया है। ऐसा नहीं है कि सर्टेन लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, सिर्फ वो ही आ रहे हैं, तो कोई मंत्र कोई
1: नहीं,
0: जाप आप नहीं बताते। आप सिंपल दवाइयों की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं, ये कोई भी ले सकता है।
1: सही बात। हमको सारा रिलेटिव वेलकम है, और मुस्लिम लोग भी बहुत लोग आ रहा है, क्रिश्चियन लोग भी आ रहा है, सिख लोग भी आ रहा है, हमारा हिंदू लोग भी आ रहा है। सारा का सारा परमात्मा एक ही बहन जी, हम जाने का रास्ता अलग अलग है, परमात्मा एक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप जो है नंबर डायल कीजिएगा 437-438-3399, 437-438-3399। 9 generations के अनुभव के साथ आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी आपसे मिलकर आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्कारब्रो एंड ब्रैम्पटन दो जगह से सर्व करते हैं, पहले 3 दिन स्कारब्रो में, बाकी 4 दिन थर्सडे से लेकर संडे तक ब्रैम्पटन में रहते हैं। गुरुजी कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: वही जी, हमारा हेल्थ में कोई भी बीमार नहीं हो ना, कोई भी बीमार हुई तो हमारे पास आ जाइए, हम हेरबल से भगवान आशीर्वाद से ठीक करूंगा।
0: क्या बात है। 437-438-3399। थैंक यू सो मच गुरुजी, फिर आपसे जुड़ते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट,
1: नमस्ते।
0: और वेल दोस्तों, आप हैं शालिनी के साथ सीएमआर एफएम 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। और डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और आप लोगों के कॉल्स भी काफ़ी आए, और हमें बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुनने में। अगर आप अभी भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस के बारे में, जिसको अंधविश्वास भी कहा जाता है, जिसको सिंपल विश्वास भी कहा जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपका दिल बिलीव करता है और क्यों करता है? अगर आपके पास कोई रीज़न है वो भी आप हमें बता सकते हैं कि आप क्यों किसी सुपरस्टिशन पर बिलीव करते हैं, क्या रीज़न है, आपने क्या ऐसा नहीं करने पे आपके साथ कुछ नुकसान हुआ था इसीलिए आपने करना शुरू कर दिया, या आपने किसी और को देखकर ये सुपरस्टिशंस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ज़रूर बताइए कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो टेंशन हो जाना, घर से निकलते वक्त छींक आ जाए तो रुक जाना, नज़र ना लगे इसीलिए काला टीका लगाना, रात को झाड़ू ना लगाना, इस तरह के कौन से सुपरस्टिशंस पर आप विश्वास करते हैं बताइएगा ज़रूर। 416-593-0055, 416-593-0055। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, उस गाने की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर। स्टे ट्यून्ड।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन सीएमआर एफएम 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इंप्रेस।
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at
4: 647-993-4844. Par jinni variety Kanda Optical de kol hai, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ। ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਡਾਟ ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम, और इस गाने में है कुछ दम।

0: वेलकम बैक दोस्तों. शालिनी आप लोगों का स्वागत करती है. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812. और आज का टॉपिक था सुपरस्टिशंस. और क्या आप बिलीव करते हैं, करते हैं तो किस बात पे करते हैं, ये मेरा आपसे सवाल था. हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, आइए देखते हैं वो उनका क्या कहना है. जी वेलकम, कैसे हैं आप?
1: एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अजीत बोल रहा हूँ.
0: जी अजीत जी बताइए.
1: मेरा सुपरस्टिशन नहीं है लेकिन हमारे परिवार में सभी लेडीज इसको मानती हैं. ये अंधविश्वास पे पूरा विश्वास है उनका.
0: ओके.
1: कि जब भी कोई चीज गुम हो जाती है तो अपने दुपट्टे पे एक नॉट बांध देते हैं, एक गांठ बांध देते हैं.
0: अच्छा, एक बार फिर से बताइए, आपकी आवाज साफ नहीं है. दुपट्टे में गांठ बांध लेते हैं किस वजह से?
1: हाँ जी, दुपट्टे में गांठ बांध लेते हैं कि कभी कोई चीज गुम हो जाए और नहीं मिले. अच्छा, आपको टाइम पे.
0: हाँ,
1: तो अपने दुपट्टे में गांठ बांध लेते हैं. और ये हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है कि वो चीज मिल जाती है हमें अगले दिन.
0: अच्छा, तो आप जब गांठ बांधते हैं तो क्या उसमें कुछ लोग कॉइन भी रख के गांठ बांधते हैं तो ऐसे ही, या ओनली ऐसे ही बांध लो, या बस उसका नाम लेके चीज का?
1: बस उस चीज का नाम लेके दुपट्टे में ऐसे ही गांठ बांध दो.
0: अच्छा, और फिर जब चीज मिल जाए तब खोल दो, राइट?
1: हाँ जी हाँ जी. हम हाल ही हुआ था, हमारे घर में शादी थी तो मेरे बेटे को पहली बार दादा ने एक सोने की अंगूठी दी थी. अच्छा. और उससे कहीं गुम हो गई, मिली नहीं. तो हमारी भाभी ने कहा, भाभी का काफी विश्वास है इस बात पे, तो उन्होंने गांठ बांध ली. okay. अगले दिन शाम को हमें हाथ में मिल भी गई.
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. तो इसीलिए इस चीज पे विश्वास हो गया होगा आपको सबको, क्या बात.
1: हाँ जी, कोई लॉजिक नहीं है फिर भी भाई विश्वास है तो सभी लेडीज मानती हैं और आज के तक सब चीजें मिल जाती हैं हमें जो भी गुम हो जाता है. तो
0: हाउ नाइस. तो अगर मेरी कोई चीज घुमेगी मैं डेफिनेटली अजीत जी ये ट्राई करूंगी.
1: डेफिनेटली हो जाए तो मुझे बताइएगा तो मैं और स्प्रेड
0: जरूर. आई विल फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. जी और कभी कभी दोस्तों ये सुपरस्टिशंस होते हैं, इट स्टार्ट विद अ वेरी फनी आइडियाज की चलो करके देखते हैं, पर धीरे धीरे अगर आपके साथ होने लगता है तो आपका विश्वास बन जाता है. कुछ लोग होते हैं कि सुपरस्टिशन से बिल्कुल दूर रहते हैं, कहते हैं कि हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है, ऑलमाइटी के ऊपर है एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट एट द एंड ऑफ द डे. तो भाई जैसा जैसा जिस जिसका जो भी मानना है उस तरह से चीज़ें होती रहती हैं. सो वेल थैंक यू सो मच. अभी भी वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट. अगर आप लोग अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में मिलाना चाहें, कुछ कहना चाहें, डेफिनेटली गिव अस अ कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055. यहाँ पर मैं बता दूँ यश विंडोज़ एंड डोर्स के बारे में. अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में, आपको गुड लुक्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी, टॉप ऑफ द लाइन सिक्योरिटी, बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा और पैसे इतने से देने कि जो आपकी पॉकेट को सूट करेंगे. सो वेरी वेरी अफोर्डेबल सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स फॉर योर होम्स और योर ऑफिसेज. और इसके साथ फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं विद fast growing company, this is the right place for you. Call kijiyega 416-732-3600 416-732-3600. और साथ ही दोस्तों आपको बता दें क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस के बारे में, और बहुत ही क्वालिटी वाला काम करते हैं. अगर घर में हैंडीमैन की सर्विसेज आपको चाहिए, आपका कोई प्लम्बिंग इशू है, कोई इलेक्ट्रिकल इशू हैं, और इसके साथ साथ आपको कोई बड़े इश्यूज हैं जैसे टाइल्स आपके घर में टूट गई हैं, कोई पानी कहीं से लीक हो रहा है, आपको पूरी बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करानी है, पूरे पूरे घर को रेनोवेट करना है, सो एनी स्मॉल और द बिग थिंग इन द हाउस अगर आप कराना चाहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं. आप बात कर सकते हैं इस नंबर पर राजेश शर्मा जी से 6472102075 6472102075. और देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आपको एक बार फिर से बता दूं, और ये डील्स बहुत ही अमेजिंग है. टोरंटो से दिल्ली या मुंबई जा सकते हैं मई के महीने में वन वे 820 में. टोरंटो से अमृतसर वन वे मई में 960 में विथ टू बैग्स. नाउ दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप $1,490 लिमिटेड सीट्स हैं. नाउ टोरंटो से बेंगलुरु सेप्टेम्बर से अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,340 विथ टू बैग्स. नाउ टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली सेप्टेम्बर से अक्टूबर तक राउंड ट्रिप लगा हुआ है $1,590 दो बैग्स के साथ. ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है. सो देर आर मेनी मोर डील्स अवेलेबल. कॉल देओल ट्रैवल टू लोकेशंस टू सर्व यू ब्रैम्पटन एंड इटोबिको 905-588-5100 एंड 905-588-4200. सो 588-5100 एंड 588-4200. सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी. गुड आफ्टरनून.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस.
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Welcome to Madras Restaurant. Swad Swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.
5: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam, Sanjeev Puri.
6: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hai jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai.
5: You will get full refund if super visa is declined.
6: Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 890-3232.

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products, or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम।
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
5: हाँ जी बंदर भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। टोरंटो फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार है, धड़कने थम जाएगी जब बॉल गोल की तरफ जाएगी। टोरंटो की हर सड़क एक स्टेडियम बन जाएगी। मैसी, रोनाल्डो या एम्बाप्पे, नाम कोई भी जीते। मैसी, रोनाल्डो या एम्बाप्पे, नाम कोई भी जीते। जीत तो आखिर में फुटबॉल के दीवानों की ही कहलाएगी। हाँ जी, फुटबॉल के दीवानों की होने वाली है जीत, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप टोरंटो की धरती पर। बंदर भाइयों, तैयार है आप? टिकटें थोड़ी सी महंगी है। येड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान।

जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड।

दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
7: Radio Voice में अपनी ad सुननी है तो इंतजार क्यों? Call करें 416-660-8545. Radio Voice.
8: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। ऑन्टारियो की सड़कों पर आपकी और हमारी सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। राज्य की ऑडिटर जनरल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ओंटारियो के कमर्शियल ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग सिस्टम को बेहद प्रॉब्लमेटिक बताया है। रिपोर्ट का दावा है कि सड़कों पर दौड़ रहे भारी भरकम ट्रकों के पीछे बैठे कई ड्राइवरों की ट्रेनिंग में गंभीर खामियां हैं। ऑडिटर जनरल शैली स्पेंस की इस रिपोर्ट ने क्वींस पार्क में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार कई प्राइवेट करियर कॉलेज जो ड्राइवरों को ट्रेनिंग देते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ छात्र ट्रेनिंग के अनिवार्य घंटे पूरे किए बिना ही लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, और ऑडिट में पाया गया कि ट्रेनिंग देने वाले कुछ इंस्ट्रक्टर्स खुद ही मानकों पर खरे नहीं उतरते। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया का प्राइवेटाइजेशन सुरक्षा से समझौता कर रहा है। ड्राइव टेस्ट सेंटर्स पर बढ़ते बोझ और मॉनिटरिंग की कमी के कारण अयोग्य ड्राइवरों को सड़कों पर आने का मौका मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में ऑन्टारियो के हाईवे, खासकर 400 सीरीज हाईवे पर ट्रकों से होने वाले हादसों में इजाफा हुआ है, और ये रिपोर्ट उसी का एक बड़ा कारण पेश करती है। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर फोर्ड सरकार को आड़े हाथ लिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के बजाय मुनाफे और ढिलाई को बढ़ावा दे रही है। वही मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कहना है कि वे इन सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं और सिस्टम को और सख्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। साफ है कि अगर भारी वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों की ट्रेनिंग में इसी तरह की खामियां रही तो ऑन्टारियो की सड़कों पर हर सफर एक बड़ा जोखिम बन रहेगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन लाइसेंस फैक्ट्रियों पर लगाम कस पाती है या नहीं। ये हेड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर।

0: रेडियो वॉइस आपकी प्राइम टाइम चॉइस।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
2: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: Ghar kahin bhi lena

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: Radio Voice, aapki prime time choice.
3: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। कनाडा की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लिबरल सांसद नेट ने स्कारबरो साउथ वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र में अपने नामांकन की हार को चुनौती देने का फैसला किया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस हार के खिलाफ अपील दायर करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए नामांकन चुनाव में मैट एटकिंस स्मिथ को हार का सामना करना पड़ा, जिसे राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा था। हालांकि एटकिंस स्मिथ और उनकी टीम का दावा है कि इस चुनावी प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां और अनियमितताएं थी। उनका तर्क है कि मतदान के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण परिणाम प्रभावित हुआ। अपनी अपील में सांसद ने स्पष्ट किया है कि यह केवल जीत या हार की बात नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का सवाल है। एरस्किन स्मिथ ने पार्टी के आंतरिक तंत्र से इस मामले की गहन जांच की मांग की है। उनके समर्थकों का कहना है कि कई सदस्यों को मतदान करने से रोका गया ताकि तकनीकी कारणों से वे अपने अधिकार का इस्तेमाल न कर पाए। अब लिबरल पार्टी की राष्ट्रीय अपील समिति नेशनल अपील्स कमेटी इस मामले की समीक्षा करेगी। नेट एरस्किन स्मिथ लिबरल पार्टी के एक मुखर और प्रभावी नेता है। इस अपील ने पार्टी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह अपील स्वीकार की जाती है तो दोबारा मतदान की स्थिति बन सकती है। यह विवाद ऐसे समय में आया है जब पार्टी आगामी फेडरल इलेक्शन के लिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या पार्टी एरस्किन स्मिथ की दलीलों को स्वीकार करेगी या स्कारब्रो साउथ वेस्ट में नेतृत्व का चेहरा बदल जाएगा? इस पर पूरे कनाडा की नजर टिकी है। हाँ जी मित्र भाइयों, बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से। स्कारब्रो साउथ वेस्ट नामांकन विवाद, एरस्किन स्मिथ का बड़ा कदम। ये हेड वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।
0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन, डॉक्टर नील जे गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट, 735 ट्वेन एवेन्यू यूनिट नंबर 16 इन मिसिसागा। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 905-564-2021 डॉक्टर गज्जर.com है वेबसाइट। बैनर भाइयों, दांतों की सेहत के लिए हमें हमेशा एजुकेट करते हैं डॉक्टर भीष्मा जी। बैनर भाइयों, आज हमें बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर क्लीनिंग अपॉइंटमेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर भीष्मा जी से। डॉक्टर भीष्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें प्लीज एजुकेट करें अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर क्लीनिंग अपॉइंटमेंट्स, और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर बताएं। ओवर टू यू भीष्मा जी।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर जतिन जी। सो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर हाइजीन अपॉइंटमेंट्स के बारे में। इसको समझने के लिए दो तीन फैक्टर्स को पहले जानना जरूरी है। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज, सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी टॉक। इसके अंदर हम बात करेंगे इसके बेसिस के बारे में। फंडामेंटल्स इसमें ये होते हैं कि आपको इसमें पेरियोडोंटल कॉम्प्लेक्स जानना जरूरी होता है। तो पेरियोडोंटल कॉम्प्लेक्स आपका गम यानी मसूड़ों का कॉम्प्लेक्स होता है। आपकी दांत आपके बोन के अंदर होते हैं, उसके आसपास फाइबर्स होते हैं, बोन के ऊपर गम्स होते हैं जिसको हम जिंजाइवा बोलते हैं, और इसको क्लीनिंग रेगुलर कराने के लिए दो तीन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। एवरीबडी शुड नॉट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 3 months to 12 months तक। इसमें 5 फैक्टर्स होते हैं, गम हेल्थ, प्लाक और टैटर का बिल्डअप, मेडिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डेंटल हिस्ट्री होती है, और होम केयर एबिलिटी होती है। गम हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, डीप पॉकेट्स होते हैं, बोन लॉस होता है, गम रिसेशन होता है, लूज टीथ होता है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गम डिजीज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रीक्वेंसी शायद ज़्यादा हो जाती है, बट फॉर एवर ज़्यादा नहीं रहती। एक साल तक हम इसको मॉनिटर करते हैं ये सिचुएशन को, वी कॉल यू फ्रीक्वेंटली, उसके बाद वी चेक प्रोबिंग। सो अगर आप कोई भी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट के लिए गए होंगे तो उसमें आपके गम्स की मेजरमेंट ली जाती है। उस मेजरमेंट के आधारित हम देखते हैं कि पॉकेट की डेप्थ कम हुई है या नहीं, यानी अटैचमेंट बढ़ी है गम्स की। दूसरी बात यह है कि कितनी साइड ब्लीड करती है। एवरी टूथ हैज 6 साइड्स, बाहर की तरफ 3 एंड होते हैं, आगे बीच में और पीछे, और टंग की तरफ 3 एंड होते हैं, आगे बीच में और पीछे। तो ये सारी 6 साइड के ऊपर, एवरी टूथ के ऊपर हम पॉकेट मेजर करते हैं और ईच साइड का ब्लीडिंग हम देखते हैं। तो ब्लीडिंग इंडेक्स अगर लेस देन 10% होता है तभी, और पॉकेट डेप्थ 4 millimeter से कम होती है जनरली, तो हम ये फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते हैं, एंड वी रिड्यूस इट फ्रॉम 3 months to 4 months, या 4 months to 6 months, या 6 to 12 months। सो इट इज़ अ स्टैगर्ड अप्रोच। इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा एड्रेस है 735 ट्वेन एवेन्यू यूनिट नंबर 16, और हमारा फ़ोन नंबर है 905-564-2021।
0: डॉक्टर भीष्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैनर भाइयों, अब आपकी बारी, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 905-564-2021 डॉक्टर गज्जर.com है वेबसाइट। ये हेड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस। टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
4: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: Ritz Furniture, the message is up.

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: हाँ जी मित्र भाइयों, ये डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। गैस प्राइसेस बढ़ रही है क्या, फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा? दोस्तों जब 2020 में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था तो लोगों को लगा था कि अब हम राजा की जिंदगी जिएंगे, बिस्तर पर बैठकर काम करेंगे, मम्मी के हाथों के पकौड़े खाएंगे और लैपटॉप पर उंगलियां चलाएंगे। कितना हसीन सपना था। हकीकत यह है कि अब ऑफिस हमारे घर में घुस गया। पहले हम ऑफिस जाते थे, अब ऑफिस हमारे बेड पर सोता था। हालत ऐसी कभी कभी हो जाती थी कि नींद में भी तकिए को म्यूट करने की कोशिश करते थे और ड्रेस कोड ऊपर से अर्नोल्ड श्वार्जनेगर यानी कि फॉर्मल शर्ट टाई और नीचे शक्ति कपूर यानी कि मैला सा पायजामा या मैला सा हाफ पैंट। वर्क फ्रॉम होम का यही तो मजा था, ऊपर से हीरो नीचे से विलन। हाँ जी, और आपको एक और बात बताना चाहेंगे। हकीकत यह थी कि जब ऑफिस घर में घुसा तब हम काम करते थे और पीछे से आवाज आती थी, अरे चिंटू जाओ पानी की टंकी में से पानी बह रहा है, जाके जल्दी पानी बंद कर लो। और इधर बॉस कहता था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताओ। सही सुना आपने। और इसी कश्मकश में अगर मम्मी का काम ना करे तो बॉस चिढ़ाते थे और बॉस का काम ना करे तो मम्मी गुस्से हो जाती थी। बेनर भाइयों, वर्क फ्रॉम होम का मजा ही कुछ और था, क्या कहते हैं? हाँ जी, और आपको एक और बात बताना चाहेंगे। वर्क फ्रॉम होम सबसे खतरनाक म्यूट बटन, ये बटन नहीं है, हमारी इज्जत की ढाल है। कॉल चल रही है, सर आई एग्री विद द स्ट्रेटजी, और पत्नी आवाज देती है, बाजार से जाकर योगर्ट लेकर आओ, जाओ अब क्या करें। हाँ जी मित्र भाइयों, पूरी कॉल पर सन्नाटा छा जाता है। मित्र भाइयों, वीडियो कॉल का तो अलग ही टॉर्चर है, कुछ लोग कैमरा ऐसे ऑन करते हैं जैसे सावधान इंडिया की शूटिंग चल रही हो, सिर्फ नाक और मस्तक ही दिखाई देता है। कुछ लोग तो कैमरा ऑन करके भूल जाते हैं कि वो लाइव है। बेनर भाइयों, मीटिंग के बीच में ही कोई झाड़ू लगाना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि मीटिंग बंद हो गई। और ऊपर से इंटरनेट, जब पूरी दुनिया से गप्पे मारने हो तो रॉकेट की तरह चलता है।

सच तो ये है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम में हमें मल्टीटास्किंग सिखा दी। अब मैं एक हाथ से एक्सेल शीट भरता हूँ, दूसरे हाथ से दाल में तड़का भी लगाता हूँ और पैर से कुत्तों को चुप करवाता हूँ। हाँ जी, वी मिस यू ऑफिस, वी मिस यू। कई लोग कहते हैं वी मिस द वर्क फ्रॉम होम। भारत में शायद शुरू हो सकता है, क्या कनाडा में भी वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा? एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ से दाल का तड़का और हमारे पांव से हमें पोछा लगाना। यही तो मजा है वर्क फ्रॉम होम का। बस सुनते रहिए रेडियो वॉइस और मजा लेते रहिए। ये हेडो वॉइस, हम हैं आपके दूस जती।

टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर, शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: bye.
1: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
2: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
1: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
3: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
4: Sanjeev Puri of Star Life Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. Sanjeev Puri insurance plans में तो माहिर है ही, लेकिन high risk insurance plans के best rates दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को blood pressure, diabetes, heart attack, bypass surgery, liver या kidney के issues हो या insurance company ने आपकी insurance decline की है, तो Sanjeev Puri को आप call करेंगे free quote के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप insurance policy के बहुत high premium pay कर रहे हैं, तो policy review करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
5: और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए करते हैं अराउंड द इंडिया एक नजर. सीएम विजय के फैसलों की चर्चा. शराब दुकानें बंद, 200 यूनिट बिजली फ्री, गोल्ड चेन भी देंगे. फिल्मी हीरो जैसे फैसले ले रहे हैं सीएम विजय. क्या ये महंगा पड़ सकता है? वैसे आपको बता दें कि सीएम विजय का मानना है कि कई लोग उनकी पार्टी शामिल कर सकते हैं. तमिलनाडु सीएम विजय AIADMK विधायक षणमुगम के पास ऑफिस पहुंचे, पार्टी नेताओं से मुलाकात की. दावा है 30 बागी विधायक TVK को समर्थन दे सकते हैं. आज भारत में नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द की गई, जांच CBI को दी गई. NTA ने माना हम जिम्मेदार, कई सवाल पूछे जा रहे हैं. नीट एग्जाम रद्द, बिहार में 60 लाख में हुई थी डील. सोल्वर बैठाने की थी तैयारी, MBBS स्टूडेंट मास्टरमाइंड. लोगों को इंतजार है ये जानने के लिए कि सही में क्या हुआ. हिमंता दूसरी बार बने असम के सीएम, 2 BJP और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने. सभी ने असमिया में शपथ ली, मोदी जी और शाह जी मौजूद रहे. कांस फेस्टिवल 2026 शुरू, आलिया भट्ट का पहला लुक सामने आया. फेस्टिवल में सेक्स वर्कर पर बनी भारतीय फिल्म दिखाई जाएगी. यहाँ चंपल पहनना, पर्स रखना मना है. लोग पूछते हैं ऐश्वर्या राय कहाँ है. 20 साल तक ऐश्वर्या राय बनी है कांस फेस्टिवल का चेहरा. क्या आलिया ने उसे रिप्लेस कर दिया? लोग जानने के लिए बेसब्र. सोनू निगम फैन से बोले पीटने वाले काम क्यों करते हो. लाइव कॉन्सर्ट में फैन स्टेज पर चढ़ा, सोनू निगम ने कहा अगली बार नहीं बचा पाऊंगा. हाँ जी मित्र भाइयों, दुनिया भर की खबरें के जानने के लिए जरूर विजिट कीजिएगा weeklyvoice.com. ये हेड वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन.

0: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स फैमिली डेंटिस्ट केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

हाँ जी मित्र भाइयों, ये तो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। भाई साहब, इंडिया में गर्मी नहीं आती, आम का सीजन आता है। हाँ जी मित्र भाइयों, लोग कहते हैं आम का सीजन आ गया, गर्मी नहीं आती। बहुत सही सुना आपने। आपको बता दे कि महीनों में हम भले ही डाइट की बात करें, लेकिन मई जून में हमारा पेट सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, आज सफेदा आएगा या कोई और आम की

ऑन द डे दैट टॉक्स अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारी जिंदगी के, एक वो एंजल्स जिनकी हमें लाइफ में ना कभी जरूरत पड़ ही जाती है, और जब पड़ती है तब समझ में आता है कि ये अगर ठीक से पैशन से केयर से दिल से अपना काम ना करे ना, तो भाई हमारी तो ऐसी की तैसी है। पूछे कौन? नर्सेस रे। इट्स इंटरनेशनल नर्स डे टुडे, विच इज ऑब्जर्व्ड आज ही के दिन दुनिया भर में, क्योंकि इट्स ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लीजेंडरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द ओरिजिनल लेडी विद द लैम्प। कहानी सुनी है ना उनकी, और इसीलिए हमारा सी एन टी आर भी चमकेगा आज इन ब्लू कलर टू ऑनर ईच नर्स हियर। वैसे मैं पढ़ रही थी क्योंकि इतनी सेवा का प्रोफेशन है ये, तो इनिशियली इसे नर्स करती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और क्योंकि सेवा करती थी इसलिए फ्री में करती थी। फिर धीरे धीरे दुनिया बदली तो उन्हें पेमेंट भी मिलने लगा, पर आज तक भी जितना इम्पोर्टेंट एंड मेहनत का ये काम है ना, उतना पेमेंट कहते हैं अभी भी नहीं मिलता। प्लस देखो ना, नर्सिंग सिर्फ ट्रीटमेंट एंड केयर तक सीमित थोड़ी होती है, एम्पैथी चाहिए भरपूर, और हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है नहीं? और हाइजीन से मुझे याद आया कि टुडे इज आल्सो प्रोविंशियल डे ऑफ एक्शन ऑन लिटर, यहां पर रिमाइंडिंग अस ऑल कि माइंड में कर लो सेट दैट डोंट बी दैट कचरा सेट। अपने अपने शहरों गलियों को साफ रखना इज नॉट जस्ट द जिम्मेदारी ऑफ योर शहर, आपकी भी चाहिए एफर्ट्स है ना। सो ऑन दिस गर्ल जेब में है रैपर या हाथ में दैट खाली कॉफी का कप, तो ना डाले बस यूं ही उसे कहीं भी सड़क पर, पहुंचा दे उसको उसकी मंजिल तक, बोले तो डस्टबिन तक। वाली नोट, दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर, सेइंग कि इधर उधर कचरा फेंक ना बने मीम, आप ही का शहर है जनाब, रखे इसे एकदम क्लीन। एंड यस, टोरंटो के आसमां का रंग रहेगा आज ब्लू, रिमाइंडिंग अस ऑल कि नर्सेस आर एंजल्स एंड डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट वैल्यू एंड यस गुड सैलरी टू।

0: बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: माई प्रॉपर्टी माई चॉइस, माई रियल्टो द रियल एस्टेट कंपनी, और विजिट myrealco.com। नॉट इंटेंडेड टू सॉलिसिट बायर्स एंड सेलर्स ऑलरेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियल्टो के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation है, call करें 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सअप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
5: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
6: ਮਾਜਾ ਮਾਲ ਵਧੋ ਆਪਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
7: ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
8: ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਠਾਕਾ ਚੁੰਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਗੋ ਮਿਲਨੀ ਔਰ ਬਾਰਾਤ ਸੇ ਡੋਲੀ ਤੱਕ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਜਾਵਟ ਕਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਮੈਲੇਨੀ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 9 ਐਂਡ 10 ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 905-799-9400
6: ਮਾਜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
0: On your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Nave और Denison Street, Markhamper,
4: doing business your way.
3: Member of Wayne's Auto Group.
5: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Winters में हमारे vehicles थोड़ी extra care और maintenance मांगते हैं और उसके लिए go to My Mechanic Auto and Tire. सभी तरह की mechanical repairs और tire services के लिए आप वहाँ किसी भी oil change और services के साथ get a complimentary winter maintenance inspection. Get a $20 off on all synthetic oil change services. Michelin tires के authorized dealer हैं ये and you can get up to $150 rebate जब आप 4 नए tires खरीदते हैं. Insurance से ये direct deal करते हैं. Visit their Markham store at Midland and Steels और Scarborough store Midland and Elsmere. For details, visit mymechanicauto.ca.
4: बस एक कप कॉफी या मिथ के साथ और मॉर्गेज होगी आपके हाथ. Your Mortgage Mantra with Amit Khurana.
5: जी हाँ अमित जी से आपकी बात हम क्विकली यहीं करा देते हैं ऑन फिल्मी नुक्कड़ टिल यू कॉल हिम एट 647-341-2785. दैट्स 647-341-2785. मॉर्गेज की जब भी आती है बात तो आता है अमित खुराना जी का नाम. बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और साथ में एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हैं. रेफरेंसेस इतने सारे आपको मिल जाएंगे आप जिनसे बात करेंगे जो भी जानते हैं और अगर आप एक बार काम करवाएंगे आप खुद रेफरेंस बन जाएंगे. नंबर अगेन 647-341-2785. मॉर्गेज से रिलेटेड बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं कि अमित जी से पूछ लें. कुछ आप डायरेक्ट पूछते हैं वो भी हम ले लेते हैं और कुछ हमारे पास आते हैं वो आपके बिहाफ पर भी हम पूछ लेते हैं. आज भी कुछ सवाल रहेंगे. स्टूडियो का नंबर रहेगा 647-341-2785. अमित जी वेलकम.
6: कैसे स्वाति जी आप?
5: बिल्कुल ठीक है अमित जी. एंड हमेशा की तरह आज फिर सवाल है कुछ मेरे पास, सोचा आपसे बात करवा दी जाए उन लोगों की जिनके बहुत सारे लोग तो पूछ लेते हैं एक्चुअली क्वेश्चन. सो बहुत सारे लोग पूछते नहीं है पर एक बंदा पूछता है, मैंने यही देखा है उससे कई. आप जब जवाब देते हैं बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाती है तो आसानी हो जाती है एनी वे. और बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चन आप एक बार रेट्स प्लीज़ ज़रूर बताएँ.
6: स्वाति जी सबसे सब लिस्टर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून. प्लस ये वीक लॉन्ग वीकेंड भी है वीक
5: जी.
6: तो सब अपना ये वीक अच्छे से एंजॉय करें. बहुत टाइम के बाद लॉन्ग वीकेंड आया है तो यस एंजॉय एज मच एज पॉसिबल. तो जो रेट्स जो आपने मेरे से पूछे हैं 3 years के फिक्स्ड इस समय है 4.19 के आसपास, बिटवीन 4.09 to 4.19. 5 years के rate is between 4.04 to 4.14, and 5 years variable is 3.55, which is prime minus 0.90. So prime इस समय चल रहा है 4.45. So ये 3 rates हैं. Fixed rate we all know little bit has gone up, bond yield ऊपर गया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से fixed rate थोड़ा सा ऊपर गया है. But these are the best rates at the moment, special rate at the moment. जस्ट मेक श्योर सब लिस्टर बता दूं ये उन लिस्टनर्स के लिए है जो जिनकी मॉर्गेज रिन्यूअल के लिए आ रही है एंड इट्स फॉर योर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नॉट फॉर योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट्स फॉर योर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नॉट फॉर योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर रीफाइनेंसिंग. सो 3 years रेट इज बिटवीन 4.09 to 4.19, 5 years फिक्स इज बिटवीन 4.04 to 4.14, 5 years वेरिएबल इज 3.55. All mortgages, they are coming with the cashback. So make sure to ask your advisor about cashback. Plus, you're getting an additional cash incentive from my brokerage up to $1,500 depending on the mortgage amount. That's additional on top of the cashback from the bank. Isme koi cash nahi hai, koi isme wo nahi hai, conditions apply. This is on top of you are taking a mortgage. The only thing is that the product aap jo le rahe hain wo 3 saal ka term hona chahiye minimum. There is no limit to mortgage amount. There is nothing. You will be entitled for cash back and cash incentive both.
5: Okay. जी परफेक्ट. तो रेट्स हमने सुन लिए और जिन्होंने नोट नहीं कर पाए हैं जो लोग और पूछना चाहते हैं इनके बारे में डिटेल्स, क्योंकि जैसा कि अमित जी ने कहा है ये रेट सिर्फ उनके लिए जिनका रिन्यूअल है, ये रीफाइनेंसिंग वाले नहीं है, बट आपकी सिचुएशन जो भी है आप एक बार कॉल करके ज़रूर पता करें। अच्छा अमित जी, आज मैं सवाल पूछना चाहूँगी उनके लिए जिनकी मॉर्गेज बैंक से तो लेना चाह रहे हैं पर बैंक ने डिक्लाइन कर दी है। अब ऐसे में उनके पास ऑप्शन बचता है बी लेंडर्स या स्केड्यूल बी बैंक्स, तो क्या ये वर्थ होता है उनसे लेना, क्योंकि वो हमेशा डाउट में तो रहते ही हैं, जा रहे होते हैं उनके पास पर क्योंकि मेन बैंक्स डिक्लाइन कर चुके हैं, तो दे आर ऑलवेज इन डाउट वेदर इट्स वर्थ और नॉट। तो एज पर यू आप क्या कहना चाहेंगे?
6: बिल्कुल सही स्वाति जी, आपने सही कहा, कभी कभार किसी रीजन से हमारी मॉर्गेज बैंक से नहीं अप्रूव हो पाती, मल्टीपल रीजन है, वो हम बात नहीं करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है लेट्स कंपेयर क्वेश्चन, उससे पहले मैं अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ 6473412785 6473412785। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, कभी कभार होता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि बैंक हमको डिक्लाइन कर देता है। अब ये आता है कि भाई वी ऑल नो इट्स अ बायर्स मार्केट, आपको घर पसंद आया है और आपको लग भी रहा है कि भाई ये घर में देख रहा था एक टाइम पे, ये घर आज की मार्केट से तकरीबन 1.5-2 लाख महंगा था, अब मार्केट चेंज हो गई है, मार्केट शिफ्ट हो गई है, बायर्स मार्केट हो गई है, तो मेरे को ये घर पसंद आ रहा है और मैं लेना चाह रहा हूँ, बट किसी रीजन से हमारे को बैंक से मॉर्गेज नहीं हो पा रही। यस, इन दैट केसेस, और मैं कई मॉर्गेजेस भी कर रहा हूँ इस समय, लिसनर्स ये इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि हम इस चीज को एक वो ना बनाए कि भी मेरी मॉर्गेज बैंक से ही होनी जरूरी है, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो गई है, घरों के प्राइसेस अच्छे डाउन हो रखे हैं। अगर आपको मॉर्गेज बी लेंडर से मिलती है या स्केड्यूल बी बैंक्स, यहाँ पे मैं सबको एक चीज बोल दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट मॉर्गेज हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट लेंडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्केड्यूल बी बैंक्स जैसे होम ट्रस्ट, फर्स्ट नेशनल, कम्युनिटी ट्रस्ट, इक्विटेबल बैंक, ये जो बैंक्स हैं ये बी लेंडर्स ये स्केड्यूल बी बैंक्स होते हैं। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं बैंक से, बट इनकी जो अंडरराइटिंग गाइडलाइंस होती है वो मेजर बैंक्स के हिसाब से बहुत लीनियंट होती है,
5: फ्लेक्सिबल हो जाती है।
6: यस, दे डू सेंसिबल लेंडिंग, मैं जो प्रॉपर वर्ड है वो सेंसिबल लेंडिंग करते हैं। लेट सपोज करिए आप ट्रकिंग में हैं, अब आपकी ट्रकिंग में आपके साल के तकरीबन लेट सपोज करिए $2 लाख के डिपॉजिट्स हैं और आपने टैक्स फाइल किया सिर्फ $40 का, बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपकी 40,000 की इनकम कंसिडर करेगा, बट ये आपके देखेंगे कि आपने 12 महीने में कितनी इनकम बनाई है, उसके बेस पे ये आपको लेंडिंग करेंगे, विच इज कॉल्ड अ सेंसिबल लेंडिंग। तो ये जो बैंक्स होते हैं या बी लेंडर्स हो गए, स्केड्यूल बी बैंक्स हो गए, ये आपको आपकी एक्चुअल इनकम के बेस पे आपको लेंडिंग कर रहे हैं, या कभी कभार आपके संग ऐसा होता है आपकी इनकम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी क्रेडिट किसी वजह से खराब हो गई थी, आपने कंज्यूमर प्रपोजल किया था या बैंकरप्सी करी थी, बी लेंडर्स कहेंगे दैट्स ओके, हालात होते हैं, आपके संग होते हैं, हम आपकी हेल्प करने को रेडी है, हम आपको लेंड करेंगे, वेदर योर क्रेडिट स्कोर इज 550, योर क्रेडिट स्कोर इज 580, वी कैन एबल टू लेंड यू आउट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट द प्लस पॉइंट इज दे अंडरस्टैंड, एंड जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है घर लेने का, ये उसको पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। सो डोंट मेक इट अ, वो कहते ना हाउ शुड आई पुट इट, कि जी मेरी मॉर्गेज बैंक से है तो मैं
5: तो मैं बेटर पोजीशन में हूँ।
6: हाँ, डोंट टेक दिस थिंग एज अ ईगो, मत बनाइए,
5: प्राइड मत बनाए इसको, बट या
6: आप सिचुएशन को देखिए कि अभी हालात जो है घरों के, आपको अच्छे अच्छे घर आपको अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं, लो प्राइसेस में, व्हाट आई मीन टू से, व्हाई नॉट कैश दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बी लेंडर से एक साल के लिए मॉर्गेज मिलती है, यू आर स्टिल इन अ बिग विन विन सिचुएशन। अगर एक साल में घरों के प्राइसेस 4-5% बढ़ गए, देन वही घर जो आप आज 8 लाख का मिल रहा है, आपको वो घर हो सकता है 8.5 लाख का मिलेगा। एक साल में आप $50,000 का इंटरेस्ट नहीं देने वाले बी लेंडर में। बी लेंडर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 4.99, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की रेट में 4.04 पे फॉर 1% के पीछे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको घर बड़े अच्छे मिल रहे हैं
5: जी।
6: अगर हम मैच करें, 8 लाख का 1% होता है स्वाति जी $8,000। अगर आप सोचते हैं कि जी मैं साल डेढ़ साल रुक जाता हूँ, मैं बैंक से मॉर्गेज लूंगा, वी नेवर नो साल डेढ़ साल बाद उस घर की वैल्यू क्या होगी, क्या पता होगा आपको 8.5 लाख का मिले। तो यू हैव टू लुक, शुड आई पे 1% एक्स्ट्रा टूवर्ड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज $8,000, या मैं एक साल बाद डेढ़ साल बाद

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Sarab Sabarwal on Filmi Nukkad. जी हाँ, teamsabarwal.com वेबसाइट है, आप वहाँ जा सकते हैं. और नंबर तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 647-864-8844. दिस इज़ द नंबर. आप सौरभ जी से डायरेक्ट इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. आपके जो भी सवाल मन में उठते हैं व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट बाइंग और सेलिंग ऑफ होम्स, या फिर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, तो भी आप एक बार इन्हें कॉल करें. इतना लंबा अनुभव खुद का है और एक लेगेसी फॉलो करते हैं. और यहाँ पे इस सेगमेंट में तो हमें इतनी सारे टॉपिक्स पे इतनी क्लैरिटी देते हैं, तो मुझे लगता है आपको इस सेगमेंट भी ध्यान से सुनना चाहिए. और सवाल और होते हैं तो ड्यूरिंग द सेगमेंट भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आफ्टर द सेगमेंट उनको उनके डायरेक्ट लाइन पे कनेक्ट कर सकते हैं. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 फॉर योर क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेगमेंट एंड आफ्टर द सेगमेंट उनकी डायरेक्ट लाइन 647-864-8844. सौरभ जी, वेलकम.
4: जी, थैंक यू वेरी मच स्वाति जी. और इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो कि घर खरीदना हो या बेचना हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो. आजकल मोर इम्पोर्टेंट देन एवर इज द राइट एडवाइस, क्योंकि
3: वेरी ट्रू,
4: यू नो द वे द मार्केट इज, द वे द इकोनॉमी इज, इट्स वेरी हार्ड टू यू नो
3: मेक अ डिसीजन,
4: कम अप विद द राइट आंसर्स. काफी सारी सिचुएशंस हो रही है इन्वेस्टर्स के साथ, बायर्स के साथ, सेलर्स के साथ. तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि दे गेट द राइट एडवाइस, और दैट इज समथिंग वी डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन. और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हमारी ये होती हैं कि यू नो पीपल आर नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट द राइट स्टेप इज मूविंग फॉरवर्ड.
3: I'm so sure.
4: मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि टॉक टू द राइट पीपल और मेक श्योर यू नो द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पीपल यू आर टॉकिंग टू, क्योंकि एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर्स मोस्ट. बहुत सारे एजेंट्स जब मार्केट हॉट थी, जब मार्केट में आए थे, यू नो लॉट ऑफ देम हैव डिसअपीयर्ड नाउ. तो यू नो यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर हमने तो किसी से खरीद लिया था मगर उनका यू नो पता नहीं है कि कहाँ है, क्या नहीं है, अभी है, दे स्टिल प्रैक्टिसिंग और नॉट. सो स्टिक विद द टीम दैट हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक्सपीरियंस, जैसे मैं कहता हूँ, इट ऑलवेज डज मैटर एंड इट पेज ऑफ.
3: और प्रूवन रिकॉर्ड होता है एक.
4: हाँ जी, बिल्कुल. और यू नो फॉर दिस वीक्स रेडियो शो, आई विश आई हैड सम बेटर न्यूज, मगर overall jo jaise you know the way the market is I wanted to highlight a few topics as well. रेडियो से पहले हम थोड़ा सा जो बात कर रहे थे इंसॉल्वेंसीज के बारे में.
3: जी जी, मैं पूछने ही वाली थी. प्लीज गो अहेड.
4: जी, तो बेसिकली क्या ऐसी हम एज अ नेशन वी आर फीलिंग एक किस्म से द वार्निंग, फाइनेंशियल वार्निंग साइंस की, you know, and something like this is getting harder and harder to ignore every day, ki bankruptcies jo hain, in fact jo canadian

0: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. जी हाँ, ये मेरी कोशिश है कि मैं स्मार्ट बन पाऊँ थोड़ा सा ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट. और मेरी ये भी कोशिश है कि आपके कुछ सवालों के जवाब इस सेगमेंट के ज़रिए मिल पाए आपको व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट और इवन इफ नॉट रियल स्टेट, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं. इट कैन बी पॉलिसीज, इट कैन बी इकनॉमी कैसी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको सिंपल तरीके से हम समझ पाएँ और फिर अपने डिसीजंस राइट कर पाएँ, ये हमारी कोशिश है इस सेगमेंट के ज़रिए. सौरभ जी का नंबर है 6478648844. आप इस सेगमेंट के बाद डायरेक्ट उनसे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछने के लिए 4165930055 ये स्टूडियो का नंबर है. सौरभ जी, वेलकम बैक. हम बात कर रहे थे इनसॉल्वेंसी की अभी और जनरल इकोनॉमी की.
2: जी बिल्कुल. तो सेकेंडली मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि वी डिडंट हैव एनफ टाइम लास्ट सेगमेंट लास्ट ट्यूसडे, बट आई थिंक दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट. क्योंकि होता क्या है ना कि एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि इंटरेस्ट रेट गिरा है, कितना गिरा है, कितना गिरेगा, अगली न्यूज में क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस बिहाइंड जो इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करता है. तो अभी देखिए, रिसेंटली अभी जॉब मार्केट में एक और वार्निंग साइन आया था कि यू नो रिगार्डिंग इकोनॉमी, मेरे हिसाब से इट विल कॉम्प्लिकेट द नेक्स्ट रेट अनाउंसमेंट जो आई थिंक जून 10th को जो अनाउंसमेंट होने वाली है. तो बेसिकली क्या है, देखिए स्वाति जी, न्यू नंबर्स जो स्टेटिस्टिक्स कनाडा ने अभी रिलीज किए थे रिसेंटली, Canada as a nation, we lost nearly 18,000 jobs in April. And this was basically third continuous month of job losses in the last 4 months.
1: Yeah.
2: At the same time, basically, unemployment jo thi, wo increase hui hai by 6.9%. Highest we've seen last October, se, which is quite concerning actually.
1: Right.
2: Now, this is why it matters. कि देखो, इकोनॉमिस्ट जो थे, they were in fact expecting the opposite. They were expecting Canada to add jobs last month. Roughly, I think 8 से 10 हजार की expectation थी. But instead, like you know, the prediction was wrong, and then we instead lost jobs, and we went the other way. Now, basically, क्या है कि you know, we've seen a lot of cracks lately. And we have felt this to a certain degree, because since the start of the year, Canada has lost, agar aap sab kuch dekhte raho, over 100,000 jobs, full-time jobs, not even part-time. Manufacturing alone, basically, kya hai ki 60,000 positions to manufacturing ki lose hui. Construction also took a hit, 16,000 jobs wahan par lose kiye gaye. So, you know, this is definitely getting hard to ignore. Youth unemployment, jo hai, it is also climbing again. And it is roughly around, I think, 12 to 14% at this time. But interestingly, kya hai ki economists say ki this is not a story of, you know, massive layoffs. At least not yet. Basically, ye kaha ja raha hai. Kyunki more Canadians are actually trying to enter the workforce. जायज है बात, क्योंकि यू नो पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बट द प्रॉब्लम लाइज कि इकोनॉमी इज नॉट क्रिएटिंग जॉब्स फास्ट इनफ. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. तो बिकॉज जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे जितने मांगे जाने लोग चाहते हैं, तो इट इज वेरी हार्ड टू ऑब्जॉर्ब यू नो ऑल ऑफ दिस. तो इन अ वे एक किस्म से ये है कि दिस इज लेस अबाउट अ कोलैप्स एक किस्म से. And it is more about the labor market. To be dekha jaye to, it's not able to find its balance.
1: Okay.
2: So इसलिए you know that is where things get complicated for the Bank of Canada come June 10th कि
1: तो क्या होगा आपके हिसाब से क्या होने वाला है?
2: देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि going by the state of the economy and making sure everyday Canadians are you know they are able to afford things rates should come down make things more affordable at the end of the day
1: okay
2: देखिए जब government makes money people should make money as well
1: True.
2: When the government's not making money people should not
1: people cannot
2: they should be in a position to you know live their lives
1: yeah mushkil hoga
2: level because at the end of the day we are a developed nation So we should make sure our citizens are comfortable when the times are tough as well.
1: जी चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है सौरभ जी आज इंसॉल्वेंसीज के बारे में हमने बात की जनरल इकोनॉमी के बारे में बात करी और इस वक्त आपने ये भी बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का या जो जॉब्स खोई हैं ये भी कैसे वार्निंग साइन है इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के इम्पैक्ट तो हमारी लिविंग पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डालती ही है अगर आपको लगता है कि मैं अपने श्रोताओं से यही कहूँगी कि आपको लगता है कि रियल स्टेट में इस इन चीज़ों को लेके आप कैसे यू नो मैनूवर कर सकते हैं क्या सवाल उठ रहे हैं आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं मैं क्विकली एक कॉलर लूँगी क्विकली हेलो जी
3: हेलो
1: हाय डू यू हैव अ क्वेश्चन
3: Hello? Hello?
1: Yeah. Do you have a question, Saurabh ji? Se puchna chahte hain kuch?
3: Yes, I do.
1: Please.
3: So I'm listening to Saurabh ji. He's telling ki jobs lose ho gayi hai, bahut logon ki economy ka, jobs lose ho gayi hai and log ghar nahi le pa rahe hai. I understand. Lekin jaise main us din mall mein gayi, right? Square one mein, aap mall mein chale jao, Toronto, premium mall mein bhi.
1: So bheed.
3: फुल है तो लोगों के पास पैसे कहाँ से हैं कि वो शॉपिंग कर रहे हैं अगर पैसे ही नहीं है उनके पास एंड मैं गई मैं स्क्वायर वन में गई थी डे टाइम में मंडे को गई थी डे टाइम तो इतनी भीड़ कैसे है लोगों के पास जॉब नहीं है तो फिर कैसे शॉपिंग कर रहे हैं
1: वो इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहे हैं फिर सर
3: घर लेने की बात आई तो बोलते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं है ये नहीं है वो नहीं है
1: क्यों भीड़ है शॉपिंग सेंटर्स पे
2: मैंने आपका I didn't get your name.
1: आपका नाम बताएंगी मैम
2: आपने पैसे दिए खरीदा कुछ खरीदा नहीं खरीदा क्या किया आपने सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल जोक्स अपार्ट See, regardless of whatever the economy is, people are still going to go around do their
1: window shopping.
2: ये तो है नहीं कि भैया पैसे नहीं है तो घर में ही बैठ के basement में या कहीं भी हम you know we're gonna become sad. So people still go around, but you're right. एक किसान से अगर आप दूसरी तरफ से देखो, तो a lot of people don't have their priorities straight as well.
3: Yeah.
1: See, ये मुझे लगता है ये भी एक psychological thing है.
2: सेगमेंट से अगो हमने जैसे डिस्कशन करी थी कि इज इट बेटर टू रेंट या इज इट बेटर टू बाय रेंट इन दिस मार्केट रेंट कैन बी अ फैंटास्टिक चॉइस गिवन कि आप रेंट जितने लोग हुए हुए हैं अभी उसका फायदा उठाओ और डिफरेंस अपने बैंक के अंदर डालो तो $300-$400 आपके बच रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई यू नो हाई मार्केट हाई यू नो रेंटल प्रॉपर्टीज दैट आर आउट देयर मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है हम $400-$500 रफली बचा भी रहे हैं रेंट में मगर वो खर्च कर रहे हैं तो फिर डाउन द रोड हमारे पास जब घर खरीदने का टाइम आता है बोलते हैं यार रेंटल तो हमने बड़े अच्छे से गुड वैल्यू में ले लिया था मगर जो हमने पैसे बचाए वो तो खर्च हो गए
1: हाँ ये इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है
2: तो इसलिए यू नो इट कुड बी एनीथिंग बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे रिगार्डलेस पीपल स्टिल डोंट हैव देयर प्रायोरिटीज स्ट्रेट चाहे वो अच्छी इकोनॉमी हो या बुरी इकोनॉमी हो स्लो इकोनॉमी हो या फास्ट इकोनॉमी तो इसलिए एंड इट्स नॉट लाइक पीपल विल स्टॉप लिविंग देयर लाइफ एंड यू आर राइट कि अगर आप यॉर्कडेल भी चले जाओ ईटन सेंटर भी चले जाओ पीपल विल स्टिल बी अराउंड डूइंग देयर थिंग्स
1: मेला आपको हर जगह मिल जाएगा अब मेले में पेंटर्स की बिक्री हो रही है नहीं हो रही, वो दूसरा सवाल है. चले, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड थैंक यू सौरभ जी फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. ऑलराइट, अगले हफ्ते फिर आपसे करेंगे मुलाकात सौरभ जी नए सवालों के साथ.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू.
1: थैंक यू.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
1: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
2: वाओ मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे। व्हाट इज द रीजन?
3: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
2: आई नो दिस प्लेस, दे आर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।
4: नेविगेटर्स कैफे लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट ईस्ट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। दे आर कन्वीनिएंटली ओपन 24/7।
0: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
5: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। आज ही विजिट करें wensautogroup.com।
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: यही है राइट चॉइस कनाडा,
0: CMR at 5 PM। प्ले करना तो बनता है।

एंड अ क्विक रिमाइंडर कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी फॉर अ सेगमेंट नंबर टू वंडर्स. ठीक 6:15 वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट सेगमेंट. आपके अगर हैं सवाल हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट सर से पूछने के लिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे 4165930055. 6:15 के बाद हम हमारे साथ वो जुड़ जाएंगे. स्टूडियो में आ चुके हैं बट वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद दैट सेगमेंट एट 6:15. तो स्टूडियो का नंबर याद रखें for your questions 4165930055.

दैट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाना फ्रॉम केसरी, जिसमें अक्षय के साथ थी परिणीति एंड रोमांटिक ट्रैक की गुंजाइश वैसे तो फिल्म में कम थी एज पर द थीम, पर ये जो गाना लिया ना ये अच्छा सा भी लिया है. फिल्म कैसी भी चली हो गाना ये हिट हुआ है. इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ परिणीति की मेरी प्यारी बिंदु, जिसे परिणीति ने एक्चुअली सिंगिंग डेब्यू भी किया था और वो गाना हिट भी बहुत हुआ है. इनफैक्ट फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे, बस फिल्म ही लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं की. इट वॉज वेन फ्लॉप मेट हिट्स आप कह सकते हैं, आज ही के दिन इट वॉज रिलीज. कहानी वो है कि जहां दोस्ती और प्यार दोनों होते हैं एक साथ, वो भी ना सफल इश्क बट विदाउट अफेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप. पर अब ये फिल्म ना तो ऐदिल मुश्किल सी निकली और ना ही देवदास सा कोई असर छोड़ पाई. मेरी प्यारी बिंदु सबकी प्यारी नहीं बन पाई, बट म्यूजिक well it found a place in the playlist of many including that of mine, so here we go with one of my favorites from the film, a Feemi Sa Gaana.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट myrealco.com.
2: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। Sunday, मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave or Denison Street.
3: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353.
0: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit markville.com ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: All right, Filmy Nukar, CMR 101.3 FM par, you are with Swati and Harry and hamare Mr. Numerologist jud chuke hain hamare saath, as I just announced, Numbers Do Wonders. Ye hai segment ka naam and also jis baat mein karte hain vishwas, Mr. Numerologist Anuj Oberoi ji ki baat kar rahi hoon main yahan. Aur itna vishwas karte hain ki kitne hi logo ki ye zindagi is vishwas ke saath badal bhi chuke hain ki Numbers Do Wonders. Hum sab ki zindagi ye kehte hain ki numbers ka khel hai kahin na kahin. Aur agar jo number ka khel aapko jita nahi pa raha, तो ये ज़रूर मदद करते हैं कि कैसे वो उस चीज़ में टर्न अप करें कि वो नंबर का खेल आपको जिता पाए. और साथ में एक चीज़ और बताते हैं, क्या कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं ये न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है, आप खुद भी जान सकते हैं अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा. इसका एक मिक्स्ड कोर्स इनके पास तैयार है, उसके बारे में भी बात करेंगे. अगर आपके हैं सवाल नंबर से रिलेटेड, आपके नंबर से रिलेटेड, तो भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपके करियर में, रिलेशनशिप में, या जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कि नंबर्स कैन प्ले अ बेटर रोल और उसमें क्या करना चाहिए, वो भी आपको जवाब मिल सकता है क्विकली. तो स्टूडियो का नंबर फॉर योर क्वेश्चंस 4165930055. एक अच्छा सा मौका है आपके लिए, आप ज़रूर पूछें सवाल इफ़ यू हैव एनी. तो करती हूँ स्वागत आपका सर, वेलकम.
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू सो मच, एंड सारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैम स्वाति मैम, कुछ भी नहीं है, नंबर्स अपने आप में एक लैंग्वेज है. कोई चाइनीज समझता है, कोई स्पैनिश समझता है, मैं नंबर्स की भाषा समझता हूँ.
1: अरे वाह, बड़े इंटरेस्टिंग है नंबर्स की भाषा. मैथ वाले लोग तो बहुत डरते हैं.
2: बिल्कुल, कोई आपको ग्रेड 4-5 का मैथ चाहिए उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं.
1: अच्छा?
2: है और बहुत सहजता से महज एक महीने में आप इसकी सारे बेसिक सीख जाएंगे और तड़ सारी बातों का जवाब एक साल के अंदर अंदर आपको खुद मिल जाएगा विदाउट इवन थिंकिंग.
1: अच्छा, मतलब आप अपने सवालों के जवाब तो ढूंढ ही सकते हैं और आप अनुज जी की तरह भी मदद कर सकते हैं और लोगों की, अगर आप एक महीने में इतना कुछ सीख जाएंगे तो. वैसे मैं यहाँ पे अनुज जी का एक बार नंबर ज़रूर बता देती हूँ आपको, 6473308555 उनका नंबर है. इस सेगमेंट के बाद आप इस नंबर पे उनसे बात कर सकते हैं, 6473308555. अच्छा, नंबर्स की बात आ रही है, पिछली बार मुझे याद है हमने 5 नंबर की बात करी थी जिनका
2: पिछली बार नंबर 5 की बात करी थी, जो भी लोग 5 तारीख 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं. मगर हम ज्यादा बात कर ही नहीं पाए थे, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, नॉन स्टॉप कॉल्स आती गई.
1: जी
2: चले, उम्मीद करते हैं आज भी ऐसा ही हो. और आज हम बात करेंगे नंबर 6 की.
1: जी.
2: नंबर 6 से मेरा मतलब है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी साल में, सिर्फ डेट की बात हो रही है, 6, 15 या 24 तारीख को होता है, तो अपने आप को बहुत ब्लेस समझिए आप. ये शुक्र प्रधान युग में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होता है 6, वीनस का नंबर होता है. तो वीनस की बात करें या शुक्र की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है ब्यूटी.
1: ब्यूटी, अच्छा.
2: अगर 2 नंबर वाले लोग सुंदर होते हैं तो 6 नंबर वाले कंप्लीट पैकेज होते हैं.
1: अच्छा.
2: सजना सवरना इनका मिडिल नेम होता है और इन पे सजता भी बहुत है.
1: हैरी का नाम आज से मैं हैरी सजना सवरना हो गया तुम्हारा.
2: हैरी नंबर 6 है. तो इनके ऊपर कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है, कंप्लीट पैकेज होते हैं, साथ ही साथ में इनको कपड़े पहनने का भी बहुत शौक होता है. थोड़े महंगे बच्चे होते हैं.
1: अच्छा.
2: इनके शौक जो है, इनको हल्की चीज, आप ऐसा समझिए कि अगर कहीं पर सेल लगी है एंड 99 थिंग्स आर ऑन सेल, दे विल पिक अप दैट 100 थिंग व्हिच इज नॉट ऑन सेल. इनकी नजर ही कुछ ऐसी होती है. कनाडा की वैल्यू भी 15 से 6 ही होती है, इसीलिए कनाडा भी इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है.
1: अच्छा, ओके.
2: बहुत ज्यादा नेचर लवर्स होते हैं, बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, फैमिली और हाउस को लेके, होम को लेके बहुत ज्यादा पोसेसिव होते हैं. इतने ज्यादा पोसेसिव होते हैं कि कहीं ना कहीं ये इतना प्रेशर डाल देते हैं अपने बच्चों पे कि उनको भी कंफर्टेबल नहीं रहने देते. घर को लेके, फैमिली को लेके, स्पेशली बच्चों को लेके एक्स्ट्रा भावुक हो जाते हैं.
1: राइट.
2: ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है. अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं. और जब तक किसी रिलेशनशिप में नहीं होते, ये दिलफेंक आशिक होते हैं. इनको ऑपोजिट सेक्स के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं.
1: जी जी जी.
2: और ऐसा नहीं है कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं
1: जी,
2: बट इनके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज ही कुछ इस तरह की होती है कि सामने वाला सब एक्स्ट्रा कंफर्टेबल कर देते हैं किसी को भी ना, तो वो कहीं ना कहीं फ्लर्ट की तरफ भी दिखता है.
1: ओके.
2: बट ऐसा नहीं है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं.
1: अच्छा.
2: तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
1: जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं.
2: एक नंबर से बात करें तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, ग्लैमर, मीडिया, एवरीथिंग फॉल्स अंडर शुक्र. तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है और इस शुक्र प्रधान युग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है. साथ ही साथ में डिप्लोमेसी का नंबर है, अपनी मीठी बातों में कैसे फंसाना है किसी को.
1: अरे
2: वो उस चीज के मास्टर होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं. पैसा कैसे बनाना है, पैसा कैसे संभालना है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं. तो इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बोलूं तो काफी लकी नंबर होता है.
1: लकी होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं.
2: ब्लेस्ड होते हैं. शुक्र है ना, शुक्र एक्चुअली है क्या, असुरों के गुरु हैं.
1: असुरों के.
2: सारी उम्र शुक्राचार्य ने क्या किया, देवताओं की नाक में दम डर करके रखा अपनी स्ट्रेटजी से, राइट. तो यही सब गुण इनके अंदर भी होते हैं, इसलिए ही डिप्लोमेटिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं. चीजों को कैसे घुमाना है, सामने वाले को अपनी बातों में कैसे उलझाना है, मास्टर्स हैं.
1: ओके. चलें, ये तो हुए कुछ ट्रेट्स ऑफ नंबर सिक्स. हम अभी और बात करते रहेंगे नंबर सिक्स के बारे में. अगर आप नंबर सिक्स हैं और आप इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप भी खुल के कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अनुज जी बोलते हैं कि ही इज़ ओपन टू चैलेंजेस, तो आप अपना चैलेंज थ्रो कर सकते हैं. पिछली बार आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंज थ्रो करे एंड ही लव्ड देम, तो आप इस बार भी चैलेंज थ्रो कर सकते हैं. नंबर टू कॉल इन द स्टूडियो इज़ 4165930055. पर अगर आपके कोई सवाल है, आपका नंबर 6 नहीं भी है बट कोई और नंबर है और आप पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो भी स्टूडियो का नंबर 4165930055. हम चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ. विल बी बैक विद मोर.

0: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Studio ka number 416-593-0055 for your questions. In case you want to have any answers to your questions, numerologist sir, humare saath jude mein, Mr. Numerologist Anuj Oberoi ji, jo mante hain numbers can do wonders in your life. Ab numbers to humari zindagi se jude hi hain, par unko kaise hum apne anukool bana sakte hain, iski bhi ek science hoti hai. Filhal aap apne sawal pooch sakte hain. If you have any questions, mere ko aap text bhi kar sakte hain. Mere paas kuch sawal aaye hain Anuj ji. ये पूछना चाह रहे हैं कि नंबर सिक्स के बारे में जो आपने बातें बताई, उसे आपने कहा कि बहुत खूबसूरत होते हैं लोग, और उनकी जो लाइफ में लग्जरी बहुत अच्छी होती है, तो ये सारे के सारे अमीर होते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी पैसे की?
2: मैम, अमीर होना, देखिए, हर एक नंबर के पीछे एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है
1: जी.
2: अगर आप अमीर नहीं हो रहे तो इसमें आपकी गलती है.
1: अच्छा, ओके.
2: कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका नाम बैलेंस नहीं है, या आपका प्रोफेशन जो है वो आपको सूट नहीं करता.
1: तो वो बैलेंस आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप कुछ करवा पाते हैं?
2: वो तो की है इसकी. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत सिंपल सा कारण होगा और छोटी सी बात होगी. वरना मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि नंबर सिक्स वाले, दे आर बाउंड टू गेट सक्सेसफुल.
1: ओके.
2: नाम गिनाऊं? अब फिल्मी नुक्कड़ है तो फिल्मी बात करते हैं
1: ना.
2: हम सबसे पहले आजकल की हार्ट थ्रो आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित, ये सब के सब नंबर सिक्स है
1: जी.
2: ए आर रहमान साहब,
1: ओके,
2: नंबर सिक्स है, राइट. एपीजे अब्दुल कलाम नंबर सिक्स है.
1: नाइस.
2: तो कितने भी नाम आप देखेंगे नंबर सिक्स से जुड़े, कपिल देव नंबर सिक्स, और सबसे बड़ा नाम एसआरटी सचिन रमेश तेंदुलकर, बॉर्न 24th April, ही इज अ बॉर्न सिक्स.
1: वाओ.
2: तो कितने आप देखेंगे नंबर सिक्स वाले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टीव जॉब्स इज 24th February.
1: अच्छा, मुझे याद नहीं, बट
2: रियो डी कैप्रियो नंबर सिक्स है.
1: ओके.
2: कोई अंत ही नहीं है इस लिस्ट का, कितने भी नाम बोलूंगा वो कम पड़े.
1: मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि न्यूमरोलॉजिस्ट सर की जो नॉलेज है, मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट की, हमारे वो यहाँ तक सीमित नहीं. उन्हें ये भी पता है कौन कौन सी सेलिब्रिटीज कौन से नंबर की हैं, ये भी एक अध्ययन आपका पूरा हो रखा है.
2: हमको भी इतनी डेट ऑफ बर्थ स्टडी, 25,000 से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ स्टडी कर चुका हूँ.
1: वाओ.
2: तो फिर कुछ तो याद रह ही जाता है.
1: कुछ तो याद रहते हैं. चले, मेरे पास लास्ट वीक तो हमारे पास बहुत रैपिड फायर राउंड था. देखते हैं अभी हमारे पास कॉलर हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं. हेलो जी. हेलो.
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यायली मदद
1: जी. आपको भी बहुत बहुत नमस्कार. मुझे बताएं आपका क्या है सवाल.
3: जी, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अलीसा एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी व्हेन आई वाज इन कॉलेज. मैंने बस अपने बारे में पूछना है रिगार्डिंग माई आगे की लाइफ, हाउ इट्स गोना बी.
1: ओके, जस्ट अ सेकेंड, हमें थोड़ा समय दें, हम कागज निकाल लें आपकी वो नोट करने के लिए.
2: अपना नाम अलीजा बताया, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अलीजा जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज.
3: जी, मई 26 जून 1979.
2: थोड़ा स्ट्रगल तो है लाइफ में,
3: वो मैं कह रही हूँ, मैं हाईवे पर हूँ.
2: मैम, थोड़े से ज्यादा स्ट्रगल है,
1: थोड़े से थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल है,
3: कोई बात नहीं है.
1: ये देखिए, ये एटीट्यूड स्ट्रगल ठीक कर देता है.
2: अगर अगर ऊपर वाले ने आपको स्ट्रगल दिया है ना, तो उससे लड़ने की कैपेबिलिटी भी दी है. आप इतनी जल्दी हिलती नहीं है अपनी जगह से, बहुत डिटरमिंड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हार्ड वर्क, और आपको सक्सेस भी वहीं से मिलेगी. जितना हार्ड वर्क करेंगी, जितना पसीना बहाएंगी ना, पसीना बहाने से मेरा मतलब है फिजिकल लेबर, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा. हाँ, ठीक है, ऊपर वाले ने कुछ कमियाँ दी हैं डेट ऑफ बर्थ में, कुछ की नंबर्स मिसिंग है, बट बहुत कुछ दिया भी है. 66 दिया है आपको, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है. आप है?
1: जी जी,
3: मैं बिल्कुल हूँ मैं, और बहुत इत्मीनान से आपको सुन रही हूँ.
2: अच्छा, नहीं, अभी इत्मीनान से तो नहीं हो सकता. आपके पास मेरा नंबर है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए 647-330-8555, और फिर इत्मीनान से बातें करेंगे.
3: बिल्कुल मैं आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर. इट वाज अ प्लेजर कि आप दोनों से मेरी बात हुई है. और जहाँ तक आपने बताया बिल्कुल ऐसा है. आई हैव स्ट्रगल इन माई लाइफ, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, बट आई बिलीव कि इस दुनिया में अगर स्ट्रगल है तो उस दुनिया में आसानी है फिर.
2: बिल्कुल है मैम. अब उस दुनिया की तो हम बात नहीं करेंगे, हम इसी दुनिया की बात करेंगे. और देखिए बोलते हैं हर रात के बाद सुबह आती है, हर स्ट्रगल के बाद में सक्सेस आता है. देखिए आपको मैं बात हो ही रही है तो एक मिनट और लूँगा आपका. देखिए सोने को जब आप कोई ऑर्नामेंट बनाते हैं तो उससे पहले वो कितने स्ट्रगल से गुजरता है.
1: सोना तपता है,
2: सोना तपता है, फिर उसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों चोटें पड़ती हैं. तो आप शनि से ड्राइव होती है, नंबर 26 है ना, जो 8 नंबर है, ये थोड़े से स्ट्रगल देता है, मगर एक बार जब सक्सेस मिलता है देन देर इज़ नो लुकिंग बैक. आप उन उस्मान की ऊंचाइयों को छुएंगी जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, मगर थोड़ा डिलेड है.
3: थैंक यू, यू मेड माय डे. थैंक यू सो मच.
2: यू वेरी वेलकम. आई एम हैप्पी आई मेड यू, मेड योर डे.
3: यू डिड, यू डिड. थैंक यू, टेक केयर एवरीवन.
2: थैंक्स, बाय.
1: थैंक यू. और मैं जैसे कि अभी एलिजा ने कहा कि वो न्यूमरोलॉजी पढ़ती रही है, इससे मैं फिर से याद दिला दूं सबको कि अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, जानना चाहते हैं साइंस को और गहराई से, तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा का मिला के कोर्स डिज़ाइन कर रहा है बहुत अच्छा सा. अपनी सारी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कितना सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ उसमें डाला है उस कोर्स प्लान में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो शुरू कब से हो रहा है वो?
2: मैम सबसे पहले तो इसमें दो चीजें ऐड कर दीजिए.
1: हाँ,
2: सबसे पहले वास्तु.
1: वास्तु भी है, ओहो.
2: और दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं कि हम अक्षरों की बनावट.
1: अच्छा, तो
2: उससे भी आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. ये छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरी वास्तु या एस्ट्रोलॉजी आपको डिटेल में समझेंगे, मगर जैसे अमजद खान बोलते हैं या वो बोलते हैं ये हाथ मुझको दे दे ठाकुर, वैसे मैं आपको बोलता हूँ ये 30 दिन मेरे को दे दे ठाकुर.
1: अच्छा ठीक है,
2: 30 दिन के बाद आपकी काया पलट हो जाएगी.
1: इवन इफ यू आर नॉट ठाकुर, आप अपने 30 दिन इन्हें दे सकते हैं.
2: 30 दिन में 2 घंटे, सिर्फ 60 घंटे मुझे दे दे ठाकुर. हाँ. उसके बाद में आपकी जिंदगी देखिए कैसे पलटती है.
1: तो जहाँ पे आप अक्षरों की बनावट की बात कर रहे थे, तो द वे आई राइट माय नेम द अल्फाबेट्स, इसकी बात हो रही है यहाँ पे?
2: हर अल्फाबेट की वैल्यू है. आप कितने प्रेशर से लिखते हैं उसकी वैल्यू है, आप किस शेप से लिखते हैं उसकी वैल्यू है, यहाँ तक कि आप सिग्नेचर में कहाँ फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कहाँ हाइफन लगा रहे हैं, उस चीज़ की भी वैल्यू है.
1: टेढ़ा है, सीधा है.
2: अभी मैम आप एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर देखिए, कभी नमो के सिग्नेचर देखिए, ऐसे कैपिटल एन लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी और उसके ऊपर सर्कल कर देते हैं, राइट. इसीलिए शाम को 8 बजे रेडियो पे आते हैं और कहते हैं मित्रों तो समझे कोई ना कोई गाज गिरने वाली है.
1: अच्छा.
2: मतलब कहने का कि सीक्रेटिव है
1: जी. चले एक और कॉल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन दे वांट टू आस्क. हेलो जी.
4: हेलो.
1: हेलो, आप अपना नाम बताना चाहेंगे सर?
4: मेरा नाम समित है मैम. मैं ऑफ द एयर पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, आप आंसर ऑन द एयर देने चाहे?

0: इनका क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं इतने।
1: और जी मैं सर, अपना क्वेश्चन बताइए, आप ऑफ एयर है।
0: तो जो सवाल आप लोग भी पूछ सकते हैं ऑफ एयर और ऑन एयर, नंबर स्टूडियो का रहेगा 4165930055। जो मन में आ रहा है पूछें। आपकी बर्थडे चाहिए होती है बस हमारे अनुज ओब्रॉय जी को, और आपका एक सवाल चाहिए होता है। इट कैन बी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर मे बी, पर डेट ऑफ बर्थ से आसानी होती है इस वक्त फ़ोन पे। तो आप अपना बस डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन इज़ सफिशियंट फॉर आंसर टू योर क्वेश्चन। स्टूडियो का नंबर 4165930055। मैं आंसर जो समित जी ने पूछा है वो ऑन एयर ही लूंगी
2: सर। फिर थोड़ा सा ना इसके लिए टाइम लगेगा, आप मेरे को ऑफ एयर फोन कर लीजिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। 6473308555। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। समित जी का आंसर उन्हें ऑफ एयर पूछा है तो ऑफ एयर ही मिलेगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हेलो जी। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, आपका सवाल पूछेंगे सर।
3: हाय, मैंने हम अली है, मैंने पूछना है अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में
0: जी।
3: मेरा फ्यूचर कैसा है? 26 अप्रैल 1993।
0: ठीक है सर, बताते हैं। लेकिन मैं बाकी कॉलर्स को ये कहूँगी प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, एक के बाद एक मैं कोशिश करती रहूँगी सबके कॉल्स लेने का। तो स्टे विद अस, हैव पेशेंस। तो अली जी की डेट ऑफ बर्थ हम सबने सुन ली। पर ठीक है, सवाल है करियर का इस वक्त।
1: सर थोड़ा स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद में अच्छी आपको स्टार्ट मिलेगी। और आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं और बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, दूर की सोचते हैं। और हार्ड वर्क अगेन इज़ योर सेकेंड नेचर। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है। आपको एक सलाह देता हूँ सर, कभी भी अपने पैसे चाहे चारा ने भी हो, किसी को एक सेंट भी उधार मत दीजिए। और कभी भी पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ट्रस्टिंग, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट जल्दी करते हैं और फिर धोखा पड़ता है।
3: जबरदस्त जबरदस्त, ऐसा ही है बिल्कुल सारा कुछ।
1: तो थोड़ा सा आप ये पैसों के मामले में थोड़े चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, किसी को पैसे उधार मत दीजिए और पार्टनरशिप में कभी काम, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, क्योंकि आपकी फितरत है बहुत जल्दी ट्रस्ट करने की, वहीं धोखे पड़ेंगे।
3: सर व्हाट अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में?
1: हेल्थ ठीक है सर, आप बस पसीना बहाइए। आप भी वो पहले कॉलर के जैसे 26 बौनी है और थोड़ा मेहनत करिए, आपके लिए सकून मिलता होगा आपको। जिस दिन पसीना बहाए या जिम जाएंगे या थोड़ी फिजिकल मेहनत करेंगे ना, उस दिन दिमाग भी बड़ा टिकाने रहता होगा।
3: जी जी ऐसे ही है,
1: बस वही आपकी हेल्थ भी और आपकी अर्निंग की भी की है।
3: ठीक, वैसे मेहनत तो बहुत ज्यादा, बस वेट कर रहा हूं सक्सेस की। बात
1: सर सक्सेस थोड़ा डिलेड है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा।
0: थैंक यू जी, मैं एक एक करके कॉलर्स लेती रहूंगी। प्लीज हैव पेशेंस विद अस, क्योंकि नंबर आपका आएगा जरूर आज, लेकिन कितनी जल्दी आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हेलो जी। जी आप प्लीज क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक ऑल द कॉलर्स। जी हेलो।
4: हेलो।
0: हाँ जी, आप जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं।
4: जी मैं अनिल बोल रहा हूँ।
0: जी
4: 30th May 1962। क्वेश्चन बस यही है कि मेरे को मेहनत सब कुछ करते हुए भी अभी तक सक्सेस क्यों नहीं मिली लाइफ में?
0: नंबर्स में
1: ऐसा तो नहीं है, नंबर्स आपके ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। पूरा नाम बताइए।
4: अनिल भारद्वाज।
1: जी
4: अनिल भारद्वाज।
1: अनिल भारद्वाज जी, अनिल जी आप मुझे जानते हैं, मैं आपको शो के बाद में कॉल करता हूँ, मेरे पास आपका नंबर है।
4: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक
1: है मैं आपसे बात करता हूँ फिर।
0: चले चले, यहाँ पे तो हमें एक कनेक्शन मिल गया है, तो आपका जवाब मिल जाएगा अनिल जी। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी।
5: हेलो।
0: हेलो, आप अपना सवाल बताएंगी मैम एंड डेट ऑफ बर्थ?
5: 30th August 1972। हेल्थ एंड करियर इज माई क्वेश्चन।
0: हेल्थ एंड करियर,
1: वेरी गुड मैम, ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। 30th आपने 30th अगस्त बताया ना?
5: हाँ।

0: 29 नाइट टू 25 AM. सो आई सेड 30th अगस्त.
1: 30th अगस्त. साल बताइए एक मिनट जल्दी से.
0: 72 1972.
1: 30
0: अगस्त.
2: मैम फोमो
1: है.
2: फोमो.
0: हेलो.
1: बिग टाइम फोमो है. फियर ऑफ मिसिंग आउट. ठीक है मैम. थोड़ा देखिए, एक जबान या एक वर्ड हम बोलते हैं ना, उसमें 72 मसल्स होते हैं. ठीक है, उसको थोड़ा आराम दीजिए.
2: अरे बाप रे. ये मम्मी की तरह बता रहे हैं.
1: नहीं, 72 मसल्स में बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत कैलोरी सड़ जाती हैं, तो थोड़ा जबान को कम यूज़ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. कहने का मतलब है कि थोड़ा कोशिश करिए, कम बोलिए.
2: साइलेंस रिट्रीट पे जा सकती हैं, ये सिग्नल है आपके लिए कि आपको आनंद आएगा.
1: मैम, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, यू नॉट एवरी टाइम यू हैव टू हैव द लास्ट वर्ड इन अ कन्वर्सेशन. दैट इज अ की टू योर सक्सेस.
2: तो देयर इज अ सजेशन.
1: ठीक है मैम, अगर कुछ डिटेल में जाना है तो आप ऑफ एयर बात कीजिए. एंड मुझे आपका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल और द वे यू पुट इट अप वाज वेरी वेरी गुड.
0: ओके, थैंक यू.
1: थैंक यू मैम.
2: ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो, आपका सवाल सर एंड योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज.
3: हेलो.
2: हाँ जी, आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ प्लीज.
3: ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1957, और हेल्थ एंड केयर के बारे में पूछना था कि मेरा फ्यूचर क्या है.
1: सर 15 मई 1967.
2: जी.
3: यस, जी.
1: सर थोड़ा काउच को छोड़ के उठिए ना, थोड़ा चलिए फिरिए, थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी सैर किया करें, अच्छा है आपके लिए.
3: अच्छा, सैर क्या
1: करें? मतलब
2: बेसिकली कह रहे हैं थोड़ा सा मेहनत.
3: अच्छा, हेल्थ और जो मेरा जो करियर है उसके बारे में पूछना था.
1: एक मिनट सर.
2: बाकी मैं बाकी लोगों को बता दूं जो कॉल कर रहे हैं, प्लीज स्टे विद अस. आपका नंबर आएगा एंड स्टूडियो का नंबर इज 416-593-0055.
1: स्टे ट्यून्ड. बढ़िया सर, आपका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ी लेजीनेस है बस, उसको दूर कीजिए. इसलिए कहा था थोड़ा काउच से उठिए. बहुत अच्छा है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. पीछे भी अच्छा ही था, आगे भी अच्छा ही रहेगा. हेल्थ वाइज ओके है आपको, कोई मेजर वो नहीं दिख रहा है, बट इतनी जल्दी में मैं इतनी इससे ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता. आपका शुक्रिया सर कॉल करने के लिए.
2: चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी.
4: हेलो.
2: हाँ जी, आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ क्विकली बताएं सो दैट हम लोग 20 मिनट्स में सारे कॉलर्स ले लें.
4: जी, अलीसा अगेन. माय नेम इज अलीसा. 26 जून 1979. मैंने पूछा था शादी की, कितनी शादियाँ हैं.
1: वो मैम अभी तो आपने कॉल किया ही था थोड़ी.
2: नहीं, वो दूसरा नंबर, वो डेट ऑफ बर्थ ही फर्क थी.
4: 26 जून 1979.
1: ओके ओके. मैम आप ऑफ एयर बात कर लीजिए, मैं बाकियों को भी चांस देना चाहता हूँ. आपसे तो बात हो चुकी है मेरी, आप मेरे को फोन कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में बात कर लूंगी.
2: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हाँ हेलो जी. हाँ जी, आपका सवाल एंड योर डेट ऑफ बर्थ. एक चीज बहुत कॉमन निकल के आती है, जैसे हम लोग देखते हैं जिंदगी में लोगों का सवाल किस तरफ है या परेशानी उन्हें किस तरफ है, उनके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है. हेल्थ इज डेफिनेटली, ये तो हमें समझ में आ रहा है.
1: मैम हेल्थ इज़ ओके, आई डोंट सी एनीथिंग मेजर क्विकली एट अ ग्लांस. जहाँ तक करियर का बात है मैम, अभी आप क्या करती हैं?
4: आई एम द सुपरवाइजर राइट
1: नाउ. मैम आपके लिए कोई लिक्विड रिलेटेड या वाटर रिलेटेड काम कुछ भी किसी तरह से भी करेंगे ना, ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी या मतलब कुछ भी वाटर रिलेटेड जहाँ पर लिक्विड्स इन्वॉल्व हो, वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा.
4: राइट नाउ आई एम इन द फार्मास्यूटिकल.
1: दैट सूट्स यू मैम. आप देखिए, यू आर अ डबल टू कॉम्बिनेशन, दोनों तरफ से चंद्रमा है राइट. इसलिए बोला चंद्रमा कंट्रोल्स वाटर, वाटर आपके लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ केयर सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है. जहाँ पर केयर गिविंग होती है वो आपके लिए अच्छा है. तो यू आर इन द राइट फील्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम.
4: ओके, थैंक यू.
1: थैंक यू मैम.
2: थैंक यू. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी.
5: हेलो
2: जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन क्विकली।
5: मेरा ये सवाल है कि जो हमारे हाथ में जो दो लकीरें होती है ना, जो अपने घड़ी पहनते हैं यहाँ पे जो चेक करते, तो मेरे हाथों में दोनों हाथ में दो दो लकीर है, तो इसका मतलब क्या होता है?
1: सर मैं पार्मिस्ट्री नहीं जानता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नंबर्स की भाषा जानता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताऊंगा।
5: नहीं नहीं, वो मेरे को मैंने बताया था तो वो बोलते तेरी दो शादी होगी।
1: अच्छा, नहीं सर ऐसा ये मिथ है, या मैं नहीं मानता हूँ इसलिए मैं मिथ बोल रहा हूँ। कोई मानता हो तो या उनकी साइंस और स्टडी हो तो जरूर कुछ होगा। सर मैं माफी चाहता हूँ, इस मामले में मेरे को नॉलेज नहीं है,
5: हो गया इसलिए मैं कह रहा।
2: अच्छा नहीं, चलिए इस वक्त तो न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, हेलो जी, आपका जी क्वेश्चन एंड क्विकली योर डेट ऑफ बर्थ। हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर अस?
6: हेलो।
2: हाँ जी, मुझे क्विकली बताएं प्लीज, मुझे बहुत सारे कॉल्स लेने हैं। अपना आप डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन।
6: जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1974। मेरा नाम आमिर है और मुझे अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है, और अगर फ्यूचर के बारे में बता सकें।
1: सर अच्छा है, ऐसा कोई इशू मेजर नहीं दिख रहा है। आप कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन के भी लॉर्ड जो होते हैं वो शनिदेव ही होते हैं, और आपकी डेट भी शनि पे ही आती है। कुछ जहाँ तक हो सके कुछ मशीन्स एंड एजुकेशन को रिलेटेड, प्रिंटिंग जैसे कुछ किताबें, इस तरह का काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है।
6: मशीन्स किस टाइप का?
1: प्रिंटिंग,
6: प्रिंटिंग मशीनरी। ओके,
1: वो आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि देखिए शनि मतलब मशीन, तीन नंबर मतलब एजुकेशन, तो दोनों को मिला के जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई है वो
2: किताबें
1: छापने का, इस तरह के काम आपके लिए सूटेबल है। वरना किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए सूटेबल है, फाइनेंस आपके लिए सूटेबल है, रियल एस्टेट आपके लिए अच्छी है।
6: ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच सर,
1: यू वेरी वेलकम। थैंक
2: यू जी। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज क्विकली। हाँ ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज।
7: माय नेम इज श्रेनिक, माय डेट ऑफ बर्थ इज मार्च 19 1969। व्हाट प्रोफेशन और बिजनेस इज गुड फॉर?
1: You said 1969?
7: Yes, March 19th.
2: 69 year of birth.
7: Yeah, what profession or business is good for me? Yeah.
1: Sir, any leadership role, anything related to water is your, any caregiving, healthcare sector is very, very good for you. And bas gusse pe kabu rakhiye sir, thoda gussa jaldi aata hai.
7: Yeah.
1: Us pe kabu rakhiye, wo sabse badi problem hai.
2: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम ट्राइंग टू पिक योर कॉल अगेन। हेलो जी,
8: हाय, कैन यू हियर
2: मी? यस, नाउ आई कैन। सो आप क्विकली डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन बताएं।
8: हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ इज 10/11/1983, और क्वेश्चन है प्रोफेशन को लेकर के।
1: यू सेड 10/11/19?
8: February 11, 1983।
2: February 11th, 1983।
8: Yeah.
1: Sir, anything to do with education, anything to do with artistic touch, anything to do with even anything to do with religion, spirituality, you can become probably the best religious leader or a spiritual leader.
2: आप discourse दे सकते हैं।
1: ज्ञानी आदमी है सर, you're a blessed soul.
2: अरे वाह,
1: आप ये आजकल के materialistic time के लिए नहीं बने हुए। You're a altogether a different person. आपकी vibes बहुत अच्छी हैं।
2: अरे फिर तो मुलाकात जरूर करिएगा सर।
1: You are absolutely, you know, you're a blessed soul. I can just say that. पंकज जी, आप मेरे को ऑफ एयर जरूर बात कीजिएगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा।
8: आई डोंट हैव योर नंबर।
2: ओह, आई एम अनाउंसिंग इट ऑफ्टन, बट आप मेरे से भी ले सकते हैं।
1: जस्ट स्टे ऑनलाइन फॉर 2 मिनट्स, यू विल गेट इट। 6473308555।
2: वरना आप मुझसे भी ले सकते हैं, वेबसाइट है नंबर्स डू वंडर्स, वहां से ले सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, हेलो, आपका सवाल एंड योर डेट ऑफ बर्थ सर।
9: हेलो,
2: हाँ जी, आपका सवाल है डेट ऑफ बर्थ।
9: 7th अक्टूबर 75।
2: 7th अक्टूबर 75।
9: क्वेश्चन, शुड आई मूव टू यूएस?
2: अच्छा, जगह बदल दें क्या, दूसरी कंट्री चले जाएं? यूएस जाने की बात कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, कौन यूएस जाने की बात कर रहा है? यूएस वाले सोचते हैं कनाडा आ जाए।
9: और का करियर क्या है लाइक?
2: जी, करियर एंड शुड ही मूव टू यूएस?
1: सर, कंफ्यूजन इज योर मिडिल नेम।
9: सॉरी,
1: कंफ्यूजन इज योर मिडिल नेम। 1975 बताया ना आपने साथ में?
9: 75,
1: yeah. सर, आप भी इनसे पहले वाले कॉलर पंकज जी के जैसे, आप भी थोड़े से दिन दुनिया से अलग ही रहने वाले इंसान हैं। यू आर ऑल्सो वेरी वेरी, जिसको बोले, प्योर सोल। आपके लिए कनाडा भी, कनाडा से यूएस ज़्यादा अच्छा है। यस, यूएस आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के रिसर्च वर्क में जाइए, जहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड काम हो वो करिए। आप बेहतरीन CID, डिडक्टिव एजेंसी, इस तरह के काम आपके
2: लिए, बाप रे,
1: यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं ना, वहाँ पर आप एक्सेल करते हैं।
9: ओके,
2: सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती है सर की,
1: बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच है।
2: चलें, थैंक यू सो मच। यूएस आपको आंसर मिल गया है, यूएस इज द गुड प्लेस फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, हेलो जी, आप जी, हेलो मैम, रेडियो बंद करेंगे प्लीज।
10: या हेलो,
2: हेलो प्लीज, मे आई हैव योर बर्थडे एंड क्वेश्चन?
10: या सो इट इज 30th July 1964। आई वांटेड टू नो अबाउट माय हेल्थ एंड करियर।
2: हेल्थ एंड करियर, आज मैं सोच रही हूँ कि हमने जितने क्वेश्चंस देखे अधिकतर वही रहे हमारे पास।
1: मैम, हेल्थ में कोई इशू नहीं है आपका, टचवुड अच्छी रहे, आगे भी, पीछे भी अच्छी थी, आगे भी अच्छी रहेगी। थोड़ा वेट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा वेट हो सकते हैं, मैंने कहा आई एम नॉट टू श्योर, बट यस, थोड़ा वेट के अलावा आपको कोई इशू नहीं है। करियर तो अच्छा ही है आपका मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे बनाए हैं आपने?
2: पैसे बनाए हैं मैम।
10: So it's a good soul or what is it?
1: No, you made your money. ऐसा नहीं है कि, okay, ups and downs सबके साथ होते हैं, but overall the balance sheet is in positive.
10: Okay, everything is going good.
1: Yeah, yes. yeah. Touch wood, even in the future it will go well.
10: Thank you, sir. I'll call you later.
2: Thank you, जी. And let's चलते हैं next caller की तरफ. Hello, जी. हेलो जी, मैं आपका क्विक क्वेश्चन प्लीज बताएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी थोड़ा सा टाइम रह गया। आई वांट टू टेक ऑल द कॉलर्स, तो क्वेश्चन एंड योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आई हैव टू जंप ऑन। जी प्लीज क्विकली बोले।
11: हाँ जी,
2: आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन।
11: 18 सितंबर 2001।
2: ये तो मुझे लगता है अब तक जितने लोगों ने पूछा सबसे यंग ये हैं। और सवाल क्या है सर?
11: एजुकेशन,
2: एजुकेशन,
11: लाइफ, और ये मेरे बच्चे के लिए।
2: अरे वाह, बच्चे की एजुकेशन।
1: मेल है कि फीमेल है ये बच्चे?
11: बच्चा, बच्चा।
1: मेल है, बॉय है?
11: हाँ सर, बॉय है सर।
1: सर कड़वी बात बोलूंगा, एजुकेशन में ही इसको अपने से दूर रखेंगे उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा जन्मभूमि से दूर रहेगा ये बच्चा ना, तो इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
2: तो अपने से दूर रहना है, जन्मभूमि से दूर रहना है,
1: मतलब हॉस्टल में पढ़ाइए।
2: अच्छा, हॉस्टल
1: वो इसके लिए ज्यादा अच्छा है, या कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी कर रहा है तो घर से दूर करे।
11: घर से दूर करे,
1: जी
11: ठीक है सर।
1: थैंक यू सर।
2: चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, क्विकली प्लीज आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल बताएं। हेलो,
12: हेलो,
2: हाँ जी, क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल बताएं।
12: 21 जनवरी 1970।
2: जी आपकी आवाज़ कट रही है, फिर से एक बार बोलें। 21 जनवरी 1970। व्हाट्स योर क्वेश्चन सर?
12: मेरे लक बताएं।
2: हाँ,
12: लक के बारे में।
2: जी आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे समझ नहीं आया।
1: पूछ रहे हैं या ओवरऑल पूछ रहे हैं?
12: ओवरऑल,
2: ओवरऑल।
1: सर जी जहाँ तक लक की बात है ना, पढ़ाई से ही आपको तरक्की है और थोड़ा ज़्यादा बोलने का शौक़ है। लक इज़ आई वुड कॉल इट 60%, एक एवरेज आदमी से ज़्यादा अच्छी लक है आपकी। जो 50% चांस होता है, जहाँ पर 50-50 चांस है, आपका वो काम बन जाता होगा।
2: बिल्कुल चले, तो कहते हैं ना तसल्ली करें। चले, थैंक यू फॉर आस्किंग। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी।
13: हेलो,
2: क्विकली अपना क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ बताएं।
13: मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8th of September 1987 और मेरा क्वेश्चन है करियर के रिगार्डिंग।
2: अच्छा,
1: 1987। सर एक मिनट, 8th of September 1987 बताया ना आपने?
2: जी।
13: यस यस।
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है बिल्कुल। टूर, ट्रैवलिंग, ग्लैमर, मीडिया, फैशन, इसमें से किसी भी लेडीज फैशन में जाइए, लेडीज ज्वेलरी में जाइए, बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी।
2: और टूरिंग में आपने कहा?
1: हाँ, टूर, ट्रैवलिंग, एनीथिंग टू डू विद ग्लैमर, मीडिया, फैशन, मटेरियलिस्टिक काम करिए सर। कैसीनो, बार, 6 नंबर वाले ही हैं आप।
2: अच्छा अच्छा।
13: फाइनेंस पे जाओ तो
1: फाइनेंस आपके लिए 75% सूटेबल है, लेडीज़ फैशन आपके लिए 100% सूटेबल है। फाइनेंस आपके लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं है, मगर लेडीज़ फैशन ज़्यादा अच्छा है।
13: ओके ओके, थैंक यू सो मच।
2: चलो फैशन शो करेंगे तो प्लीज़ फिल्मी नुक्कड़ पे एडवर्टाइज करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। जी सर, आपका क्विकली डेट ऑफ बर्थ एंड सवाल। हमें बहुत सारी आवाज़ आ रही है पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक बार और पूछती हूँ वरना मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ एंड सवाल। आई थिंक आई एम नॉट एबल, आई हैव टू पास दिस कॉल, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। हेलो जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन सर। 12th, 1980। ठीक है।
14: हाँ जी, या हेल्थ का और शादी का पूछना है।
2: हेल्थ का और शादी का,
14: या
1: मैम आप मेरे से ऑफ एयर बात कीजिएगा, इसमें मेरे को थोड़ा सा हर साल पे चेहरा पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, अभी बहुत वेटिंग है।
2: क्योंकि पर आप जी 6473308555
1: आप मेरे से ऑफ एयर बात कर लीजिएगा प्लीज़। तो आपका सवाल बहुत वो पिक्यूलियर है, नॉर्मल नहीं है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी
2: आपसे। कुछ क्रॉस
14: 3308555
2: जी, क्योंकि बोले।
14: अच्छा एक सेकेंड, दूसरा बता दीजिए। एक है 20/2/84। हाँ जी, इसका भी हेल्थ एंड शादी का।
2: हेल्थ एंड शादी। अच्छा
1: मैम, सच्ची बोलूँ यहाँ पे स्ट्रगल है शादी में,
2: यहाँ पे स्ट्रगल है इस नंबर में जो आपने दूसरी डेट ऑफ बर्थ दी है। पर मैं सजेस्ट यही करूँगी मैम, ये इस नंबर पे एक बार कॉल कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करने होते हैं अनु जी को, तो उसमें आसान रहता है आपके लिए।
1: मैम ये रैपिड फायर में अभी नहीं कर सकते ना, उसके लिए कैलकुलेट अलग से करना पड़ता है। अभी कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, आप मेरे से ऑफ एयर बात कर लीजिएगा।
2: ठीक है, मैं एक लास्ट कॉल जी।
14: ठीक है, मेरी फिर सिस्टर की हेल्थ का बता दीजिए। 23rd 11।
1: मैं बाकियों को ले लेता हूँ आपसे, तो मैं ऑफ एयर बात करूंगा।
2: आपसे ऑफ एयर वो बात करेंगे तब आप पूछ लीजिएगा। मैं एक और कॉलर लेती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट कॉल।
14: पर थैंक यू।
2: और मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लीज इस कॉल के बाद अगर मैं और कॉल नहीं ले पाती, क्योंकि 7 बजे शो खत्म होता है, तो आप प्लीज अगले हफ्ते फिर से जब सेगमेंट होगा उसका इंतजार जरूर करिएगा, आपके सवाल फिर लेंगे। हेलो जी, दिस इज द लास्ट कॉल, बताएं आपका क्या सवाल है, क्विकली विद द बर्थ डेट।
15: हाय, मेरा सवाल एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए है, और उनका उनका डेट ऑफ बर्थ है December 14th 1973। और मेरा सवाल ये है कि भाई कोई भी जॉब पे वो 10 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पा रहे पिछले कई सालों से, तो क्या एक स्टडी जॉब मिल सकता है उन्हें?
1: मैम वो दुनिया में सबसे बड़े चेंज लवर है, वो स्टडी वो जॉब के लिए बने ही नहीं है।
15: Oh.
1: He was not made for a job. कभी उनको बिजनेस कराइए। ये तो ऐसे इंसान है जो एक रूट से ऑफिस भी नहीं जाते होंगे, जहाँ रेड लाइट दिखी दूसरी तरफ मुड़ जाते होंगे। वेरी वेरी रेस्टलेस बाय नेचर, यू नो ही कैन नॉट सिट, ही इज नॉट मेड फॉर 9 to 5।
15: अच्छा,
1: इट इज लाइक यू नो यू फीडिंग अ लायन विद घास, विद ग्रास, ही इज नॉट एबल टू ईट इट, ही इज नॉट, ही विल नेवर डू इट।
15: अच्छा
2: देखिए आपके पति को लाइन तो बता ही दिया है इन्होंने यहाँ पे,
1: है लाइन है वो, इसमें कोई शक नहीं है।

0: 3FM
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले उनका कहना था कि उनको ईरान के मामले में चीन की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर का कहना था कि मुझे यकीन है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 100% रोक देगा। उधर ईरानी इदारा बराए एटमी तवनाई के सरबरा ने कहा है कि ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान की खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी हमले की सूरत में 90% यूरेनियम अफजूदगी ऑप्शन हो सकता है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी जंग पर अब तक तकरीबन 29 अरब डॉलर की रकम खर्च हो चुकी है। दूसरी जानिब ईरान जंग से रूस को फ़ायदा हुआ है और अप्रैल 2026 में रूस की तेल और गैस से हासिल होने वाली आमदनी में 39% इजाफा हुआ। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुरमुज की हदूद में इजाफे का ऐलान कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान जंग में यूएई भी शामिल था। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले लकी मरवत में होने वाले एक धमाके के नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर्रहमान की मुल्की सूरतहाल के हवाले से मुलाकात हुई है, जिसमें आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी धरना ख़त्म करते हुए हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बआसानी 104 रन से हरा दिया और आज रात से गैस की कीमत में 2 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
3: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 202.20 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफ़र के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अकाउंट नहीं है, कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कीजिए। gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 202.20 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000। ट्यूसडे है आज। ऑल द सॉल्यूशन सेम सिद्दीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। राइट विंडो फोर्सेस भानुजी साहब की मुलाकात कराएंगे। शम्स रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे। इनाम घर ईद फेस्टिवल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे प्यारे सामिन, अल्लाह ताला ने इंसानों ही की दुनिया में अपने जलवे दिखाए हैं। इंसान खामोशी से दुआ मांगता है, अल्लाह खामोश दुआओं को सुनता है, मंजूर फरमाता है। अल्लाह के जलवे इंसान के रूप में हर हर जगह नज़र आते हैं, जहाँ पूरा का पूरा अल्लाह रब्बे करीम की निशानियों से भरा पड़ा है। अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की याद के चिराग जला दिए। इन चिरागों की रोशनी में आने वाले इंसानों को नई मंजिलों पर चलने की तौफीक दी। अल्लाह की तलाश बहुत आसान है, वो इंसानी शहरक से भी करीब है, बहुत करीब, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। जिस तरह हम अपनी बिनाई खुद नहीं देख सकते, लेकिन बिनाई हमारे करीब रहती है। हमारी रूह हमारे पास है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हमारी ज़ात हर वक्त हमारे साथ है, लेकिन अपनी ज़ात का दीदार मुमकिन नहीं। और अल्लाह की मोहब्बत की इंतहाई अमली शक्ल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात में है। इरशाद बारी ताला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी अतात करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत इंसान के हवाले के बग़ैर मंजूर ही नहीं हो सकती। हम अल्लाह से मोहब्बत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़ी, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। राबते के लिए इंसान और इंसान का कामिल होना शर्त अव्वल है, और इस इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह की याद में और इंसानों की खिदमत में गुजरी। आप आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: अभी कॉल करें 416-710-6777. इट्स 416-710-6777.
1: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. 444 it's 647-321-7444.
2: अलकरम ज्वेलर्स. अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए. अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
3: Apne pyar

0: and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्स रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
3: जी हाँ, 416-671-0577 सदीक साहब के राबते का नंबर है। ऑल दैट सॉल्यूशंस। खुदा खास आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हों, आप इनसे रब्ता कीजिए। फतवाई लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में है और बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं और मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे, आसान उसके एक साथ बनवा देंगे। नंबर अपने पास महफूज करें 416-671-0577। खुश आमदीद कहेंगे सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम अरशद भाई, कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कुछ कन्फ्यूजन लोगों के जहन में रहती है, थोड़ा सा हम चाहेंगे ये बताइए कि कौन से कर्जे ऐसे हैं जो माफ़ हो सकते हैं और कौन से हैं जो किसी सूरत माफ़ नहीं हो सकते।
4: भाई जो अनसिक्योर्ड कर्जे हैं वो तो सेटल हो सकते हैं, उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड।

0: लाइन ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, पेडे लोन्स, बिजनेस के लोन्स, या कोई इनकम टैक्स का मामला हो अगर सीआरए के साथ, चाहे वो इनकम टैक्स पर्सनल आउटस्टैंडिंग है,
1: सही
0: बिजनेस का जीएसटी, पेरोल, वेज सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है,
1: जी
0: या अगर कोई आपने गाड़ी या ट्रैक्टर फाइनेंस किया था, पेमेंट नहीं कर सके, वापस ले उठा के ले गए वो, या पेमेंट नहीं कर सकते, वापस करना चाहते हैं, जब आप वापस कर देते हैं गाड़ी या ट्रक ट्रेलर, तो वो जो बाकी बचता है लोन वो अनसिक्योर्ड हो जाता है। लेकिन अगर गाड़ी रखना चाहते हैं
1: तो फिर
0: तो जो उसपे है वो सिक्योर लोन है, वो माफ नहीं होता। इस तरह घर की मॉर्गेज है, अगर घर रखना चाहते हैं तो वो माफ नहीं होता। इस तरह कोई चाइल्ड सपोर्ट है, वो बिल्कुल माफ नहीं होती। स्पाउसल सपोर्ट है, बिल्कुल माफ नहीं होती। बाकी अनसिक्योर्ड कर्जे जितने भी हैं वो सेटल हो सकते हैं, उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल है।
1: 416-671-0577 सिद्दीक साहब के रब्ते का नंबर है। अच्छा सिद्दीक साहब, कैसे वर्क कैसे करता है? मतलब मिसाल के तौर पे 50,000 किसी का कर्ज है, तो किस हद तक वो माफ़ हो सकता है और क्या तरीक़ेकार है? कितनी देर लगती है? इंस्टॉलमेंट्स कितने अरसे की होती हैं?
0: भाई अब डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन वो चूज करते हैं।
1: अच्छा।
0: और कौन सा ऑप्शन उनको सूट करता है। अगर 50,000 है, कुछ सूरतों में पूरा पे करना पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट फ्रीज करते हैं हम।
1: ओके।
0: कुछ सूरतों में जो है वो माफ हो जाता है काफी सारा कर्ज, और बाकी पेमेंट मंथली पेमेंट होती है बगैर इंटरेस्ट के।
1: अच्छा।
0: और मेरे पास जब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद अराउंड एक वीक लगता है मुझे उस फाइल को तैयार करने में, और उसके बाद हम उसको फाइल कर देते हैं।
1: ठीक।
0: जब फाइल करते हैं तो क्रेडिट फिर कालियाना बंद हो जाती है।
1: ठीक। और मतलब मैक्सिमम कर्ज भी माफ हो सकता है, मतलब 70-80% 90% भी, और मुमकिन है बाद का 30-40 भी ना, मतलब डिपेंड करता है हर शख्स के अपने केस के ऊपर।
0: जी बिल्कुल, ये केस टू केस वेरी करता है। आपके एसेट्स कितने हैं, इनकम क्या है, और आपके क्रेडिटर्स कौन से हैं।
1: अच्छा, नंबर नोट करें मदम सामिन, 416-671-0577 416-671-0577 सिद्दीक साहब के रब्त का नंबर। एसेट्स की आपने बात की, लोगों के जहन में ये भी रहता है कि अगर कर्ज माफ़ करवा लिया तो पता नहीं हमारे एसेट्स बचेंगे नहीं, घर बचेगा, गाड़ी बचेगी कि नहीं, RRSPs हैं, RESPs हैं, ये चीज़ें जो हैं जब आप ये उनका ये बनाते हैं केस का, तो ये बच जाती हैं, रहती हैं उनके पास?
0: जी बिल्कुल अर्शद भाई, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो RRSP, RESP, बिजनेसेस, घर, गाड़ियां, जो भी उनके TFSA, जो चीजें भी हैं, ये एज इट इज उनके पास रहती हैं।
1: अच्छा।
0: लीगल तरीके से उनको हम सेव करते हुए डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी घर बैठे ये डिसाइड ना करें, क्योंकि लोग आपको इतना डरा देते हैं लोगों को कि वो हमारे पास उस वक्त आते हैं जब कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो आप इनिशियल स्टेज में इसको सीरियस लें और देखें, ऑप्शन एक्सप्लोर करें, और उसके बाद घर जाके आप डिसाइड कर लें कि आपको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना।
1: नंबर कॉलेज को इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, मशवरा ले लीजिए, देर मत कीजिए। इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे तो कभी भी आप पूरा नहीं कर सकेंगे, कर्ज तो वहीं रहेगा, इंटरेस्ट ही सिर्फ बढ़ते रह जाएंगे। तो आपको हुकूमत कानूनी तौर पर ये मदद फराहम कर रही है कि आप अपने कर्ज को माफ़ करवा सकते हैं। उसके लिए कॉल कर लीजिए 416-671-0577। सदी साहब, कुछ और ऐड करना चाहें आप?
0: अच्छा, तो यही कहूंगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं
1: जी,
0: या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, कर्जा चाहे आप 10,000 का है, 20,000 का, 50 का, लाख का, जो भी आपकी सिचुएशन है, जितना जल्दी हो सके ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, अपना पैसा इंटरेस्ट में जाया ना करें। मेरा नंबर है 416-671-0577। और एक चीज की मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में, उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा। और अगर इसमें आपका क्रेडिट खराब होता है या ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो याद रखें क्रेडिट को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, उसके लिए ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता। हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में, और आपका क्रेडिट बहुत जल्द वापस आपको मिल सकता है अगर आप मेरी एडवाइस पे अमल करते हैं। तो अगर लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्काबो में है मार्कम एंड अलेक्जेंडर के पास, इटोबिको में हमारा हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सडेल के पास, मिसिसागा में है डिक्सी 401 के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रेमली बुवेड के पास। नंबर 416-671-0577 पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: 416-671-0577 पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। खुदाफिज़। नंबर नोट कीजिए, 416-671-0577 416-671-0577। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। अमरीकी सदर चाइना जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ईरान या तो दुरुस्त फैसला करे या फिर हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। चीन रवानगी से पहले वाशिंगटन में साफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, इस पर आगे चल के बात करेंगे। इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं हम आज की शायरी।
2: दयार दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया। पुकारती हैं फुर्सतें कहाँ गईं वो सोहबतें, जिंदगी निकल गई उन्हें कि आसमान खा गया। ये सुबह की सफेदियां ये दोपहर की जर्दियां, अब आईने में देखता हूं मैं कहाँ चला गया। ये किस खुशी की रीत पर गमों को नींद आ गई, वो लहर किस तरफ गई ये मैं कहाँ समा गया। गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, अलम कशो उठो के आफताब सर पे आ गया। दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया।

0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003 7:30 हमारे स्टूडियोज की घड़ी का वक्त लिए चलेंगे आपको कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ जो आपके लिए पेश करती हैं वानी
1: न्यूज के लिए दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meivani with local updates. A woman dies after being struck by a vehicle in shop at Don Mills parking lot. The Victoria Day long weekend is shaping up to be one of the best weekends of the spring in the Greater Toronto area as temperatures are forecasted to finally warm up. The Canadian NBA Brandon Clark died at the age of 29. Durham Regional Police creating new Ajax Station Division. Oakville Dental Office employee accused of redirecting thousands of dollars in business funds over nearly 2 years. Canada-wide warrant issued for Mississauga man in February Plaza shoot that injured 2 people. Commercial trucker training and licensing problematic in Ontario as per the report finds private career colleges cutting corners on training hours and skills. James Dan makes his pitch for Toronto City Council. A motorcyclist killed in 2-vehicle crash in Vaughan. 3 male youth are facing charges after a shooting incident in Scarborough last month. Liberal MP Nate Erskine-Smith has filed a notice of appeal with the Ontario Liberal Party after losing the provincial nomination race for the Scarborough Southwest by-election on Saturday. The number of Ontario students with special education need is growing faster than overall enrollment and some schools do not have enough education assistance either full-time or on a daily basis. Ontario Premier Doug Ford defended Toronto's bid to host a multinational defense bank saying he did not believe in attacking rival campaign by other Canadian cities. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस आपके लिए वानी पेश कर रही थी आप सुन रहे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सी एम आर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003 अमरीकी सदर चीन जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट ये उनका ये दौरा है और वाशिंगटन में साफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चीनी सदर के साथ ईरान जंग के बारे में तवील बात करेंगे ताहम वो नहीं समझते कि ईरान के मामले में चीनी सदर की मदद की उन्हें ज़रूरत है उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं समझता कि ईरान मामले पर चीनी सदर जो है कुछ आई उन्होंने अब जा भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है और उनसे तफसीली बात भी करूँगा उन्होंने ये भी कहा कि ईरान या तो दुरुस्त फैसला करे या फिर अपना काम जो है हम मुकम्मल कर देंगे उन्होंने एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरत अमर में शानदार रहा है फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत हैं उनका कहना था कि ईरान को जौहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती वेनेजुएला के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हम वेनेजुएला से तमाम सियासी कैदियों को बाहर निकाल लेंगे अब चीन में क्या सूरतयाल बनती है बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी देखना होगा क्योंकि अमेरिका जो है हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है और चीन का अपना एक तरीक़ेकार है नुक्ता नज़र भी है तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनका दौरा होगा और इसकी आउटकम क्या निकलती है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में और स्टॉल्स बुकिंग के लिए इन्होंने स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स दिए हैं अगर आप रेडियो पाकिस्तान का हवाला देंगे इनको जो मेहंदी के स्टॉल्स हैं हिना आर्टिस्ट जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबिलिटी हैं और आप कोई भी बिज़नेस करते हो उसके लिए आप इनसे रब्ता कर लीजिए आप शम्स रहमान साहब को कॉल करें 416-710-6777 416-710-6777 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सी एम आर 101.3 एफएम रिकॉर्डेड कमर्शियल ब्रेक सुनते हैं प्रोग्राम में वापस आएंगे स्टे ट्यून्ड
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663 Village Taste 4141 Dixie Road Mississauga

0: फाइनेंशियल इंक के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।

0: ग्लोबल ट्रेवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। IATA अप्रूव HN तमाम मेजर एयरलाइन से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Yeah.